आदाब समीन, यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 288 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समीन आज बुधवार है, शक संवत 1948 के जय

ज्येष्ठ महीने की 27 तारीख मुताबिक 17 जून 2024 ईस्वी सुबह के 6:33 और 40 सेकंड हुए हैं। आज की नशरियात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: इस आकाशवाणी श्रीनगर 92.5 FM मघर्षण पेट पेश खिदमत प्रोग्राम सुबह का ही।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिने मोहतरम, प्रोग्राम सुबह का ही अजुक शुमार हेत छे तुहंदिस खिदमतस अंदर हाजिर। अल्लाह ताला सुन इरशाद चु कुरान करीमस अंदर जी येल ते तोही ब्रोह कने कुरान करीम चन आयत मुबारकन हिज तिलावत करने यी तुह रूज खामोश कन दिथ बूजू ताकि तुह पे सपद रहम। अस करो ये बाबरकत मजलिस सुन आगाज तिलावत कलाम पाक तो अमुक तर्जम बोजन सलू कन दिथ बोजो खामोशी सान ताकि अस पे सपद रहम।

Git haz nimaz hazret İki sucudes ikis kıyamız İkisi koran

0: त्वम् अधोरेखितम्। सभायां प्रधानमन्त्रिणा अधोरेखितं यत् भारतं सर्वदा मानवतायै प्रथमम् इति दृष्टिकोणम् अनुसरति। सः अग्रे अकथयत् यत् भारतस्य अन्ताराष्ट्रियसहभागित्वस्य दूरदृष्टिः वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य कालातीतदर्शनस्य आधारेण अस्ति, विश्वमेकः परिवारः अस्तीति। फुट्बाल् क्रीडायां गतरात्रौ न्यूजर्सी क्रीडाङ्गणे प्रथमसमूहस्य आरम्भिकक्रीडायां फ्रांसदेशेन सेनेगलदेशं 3-1 इति अङ्कैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वायदा किया है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक भी करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ भी बैठक करेंगे। कल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठकें की थी। यमुना नदी के जीर्णोद्धार के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर कुछ ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को क्यों फिलहाल बंद किया गया है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। फ्रांस की ओर से किलियन मबापे ने 2 गोल किए और वे अब 58 गोल के साथ अपने देश के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। एक अन्य गोल ब्रैडली बारकोला ने दागा। सेनेगल के लिए एकमात्र गोल मबाय ने किया। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक

0: The Kishwa project will be placed before the Union Cabinet for approval. In football, France defeated Senegal 3-1 in the opening game of Group 1 of FIFA World Cup 2026 at New Jersey Stadium last night. In men's cricket, India will take on Afghanistan in the second ODI of three-match series in Lucknow today. The match is scheduled to begin at 1:30 p.m. In women's hockey, India defeated Japan 2-1 in their second Pool A match of the FIH Hockey Women's Nation Cup New Zealand 2026 at the North Harbour National Hockey Centre. And that is the end of this news bulletin.
1: आज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है मीडियम के अलावा एफएम 103.5 पर समयन समाप्त करो लाइव प्रोग्राम पैम सुबह इस वक्त के बाद
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर
3: अरे यार तू कहाँ ले आया मुझे
4: अम्मा तेरी भाभी ने घर का सामान मंगाया है नहीं ले गया तो शामत है सुना यहाँ ऑफर्स भी है सॉस एक में एक फ्री कुकिंग ऑयल 40% ऑफ 5 किलो आटा 70 रुपए
3: भाई ऑफर्स तो ठीक है लेकिन क्वालिटी और लेवल का क्या
4: अम्मा लेवल लेवल छोड़ ऑफर्स देख
3: ओए ऑफर किंग ऑफर के चक्कर में अपनी आंखें मत ऑफ कर क्वालिटी पर रखने के लिए लेबल पे गौर कर किसी भी खाद्य उत्पाद की प्रामाणिकता की पहचान उसका लेबल है खरीदने से पहले लेबल की जांच अवश्य करें
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जेएनके
6: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में अरे वाह
7: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए RBI कहता है
8: जानकार बनिए सतर्क रहिए
9: सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में 2026-27 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज और प्रोग्रामों में दाखिले के लिए दरख्वास्तें जमा कराने की तारीख में तौसी की गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों के लिए फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 23 जून 2026 मुकर्रर की गई है मजीद तफसीलात www.cukashmir.ac.in से हासिल करें वाज़ह रहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तमाम दाखिले सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट 2026 की बुनियाद पर ही दिए जाएंगे
10: अस्सलाम वालेकुम लाइव शो पयाम सुब के साथ मैं हूं सकीना और मेरे साथ हैं जहूर अहमद कंट्रोल रूम में आज हमारे साथ हैं नसीर अहमद और इरशाद अहमद नाइको
1: जी समीन आज मुहर्रम अल हराम की यकुम तारीख है मुहर्रम अल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है और इस महीने की इस्लाम में एक खास अजमत हासिल है
10: जी समीन मोहतरम कुरानी मजीद में इस महीने के खास हुर्मत और इज्जत का जिक्र मौजूद है मुहर्रम अल हराम असमत कुर्बानी और सबर का पैगाम है
1: जी सकीना जी इस महीने में इस्लामी तारीख का एक अजीम याद और यादगार दिन है
10: जी
1: इस दिन हजरत इमाम हुसैन रदिल्लाहु तआला अन्हा नवासे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले खाना और जानिसार साथियों के साथ एक मैदान मैदानी करबला में हक व सदाकत की खातिर शहीद हुए
10: मुहर्रम अल हराम हमें ये दर्स देता है कि हक और इंसाफ के लिए हर किस्म की कुर्बानी दी जा सकती है और बातिल और जुल्म के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता
1: यह महीना हमें इस चीज की बिदावत देता है कि हमें अपने किरदार का जायजा लेने सब्र बर्दाश्त को अपनाने और दीन इस्लाम की आला तालीमात पर अमल करने की दावत भी देता है
10: बिल्कुल सही

0: कहानी बस इतनी सी है, यजीद था, हुसैन है,
1: अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का।
0: एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है, जमाना हुसैन का।

0: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है। सुबह के 7:45 हुए हैं। अब कश्मीरी खबरों का बुलेटिन नाश्र होगा।
1: आदाब, ये छे आकाशवाणी सुबह दून 8 मुबशिर रुफाइन जेवि बूजू खबर। गोड़ खास खास खबरन हुन खुलास। वजीर अजम नरेंद्र मोदी करन आज फ्रांसस मज G7 इजलास के अक पास अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सीट मीटिंग पानवन मफाद तो आलमी अहमियत कन मामलन पे करन तबोदल ख्याल। फ्रांस

0: क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।

0: श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
1: एनटीए इज कमिटेड,
2: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
1: एंड वी विल इंश्योर दैट द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्य की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है।

0: गरूर टूट गया कोई मर्तबा न मिला, गरूर टूट गया कोई मर्तबा न मिला, सितम के बाद भी कुछ हासिल जफा न मिला।
1: सरे हुसैन मिला है यजीद को लेकिन

आप सुबह आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। समीन अब वक्त हो चला है दिल्ली से उर्दू खबरों का बुलेटिन सुनते हैं।

0: मंदिर को गंगा नदी से मिलाया गया है। हमारे नामानिकार से बात करते हुए वाराणसी के एक शहरी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ राहदारी से मंदिर आने वाले अकीदतमंदों को काफी सहूलत मुहैया हुई है।
1: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: इन बड़ी तब्दीलियों से मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने के साथ साथ सकाफती जड़ों को मजबूत करने की जानिब मुल्क के अहद की अक्कासी होती है।
2: भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में कुछ मकामात पर शदीद बारिश की पेशगोई की है। आसाम, मेघालय, बिहार, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। IMD के मुताबिक राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज चमक का इम्कान है। इधर छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के हालात का इम्कान है। साहिली आंध्र प्रदेश, गंगाई मगरबी बंगाल, कोंकण, गोवा और उड़ीसा में आज गर्मी और हब्स का मौसम रह सकता है। मर्दों के क्रिकेट में आज लखनऊ में 3 मैचों की सीरीज के दूसरे ODI में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। यह मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम इस सीरीज में 1-0 से आगे है और वो आज का मैच जीतकर इस सीरीज को अपने नाम करने की कोशिश करेगी। खवातीन क्रिकेट में आज लीड्स के हेडिंगले में ICC खवातीन T20 आलमी कप में भारत और नेदरलैंड्स आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर की क्यादत में भारतीय टीम इतवार को बर्मिंगम में खेले गए पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से शिकस्त देने के बाद अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने की कोशिश करेगी। फुटबॉल में नॉर्वे ने फीफा आलमी कप में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में ग्रुप 1 के अपने पहले मैच में इराक पर 4-1 से जीत हासिल करके वापसी की है। अब नॉर्वे ग्रुप 1 में सरफहरिस्त आ गया है। इससे पहले फ्रांस ने न्यू जर्सी स्टेडियम में फीफा आलमी कप 2026 के ग्रुप 1 के पहले मैच में सेनेगाल को 3-1 से हराया था। इस मैच में काइलियन मैप्पे ने अपने करियर का 58वां गोल करके एक रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने आलमी कप में लियोनेल मेस्सी का भी अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कोनैन हैदर।
0: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने फ्रांस के शहर एवियान में मुनाकिदा G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शिरकत से मुतालिक खबर को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब और कई दीगर अखबारात ने NEET UG दोबारा इम्तहान से कबल टेलीग्राम ऐप पर पाबंदी की खबर को अपने सफ़े अव्वल पर शाय किया है। खांसी के सिरप सिर्फ लाइसेंस याफ्ता फार्मेसियों को इजाजत। खांसी के सिरप फरोख्त की सिर्फ लाइसेंस याफ्ता फार्मेसियों को इजाजत, इस खबर को बेशतर अखबारात ने अहमियत के साथ शाय किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को रोजनामा प्रताप ने अपने पहले सफ़े पर नुमाया किया है कि आने वाली नस्ल के पास मुल्क में तब्दीली लाने के लिए दरकार मुनफरिद तवानाई और नया अज़्म मौजूद है। इसके अलावा आज के अखबारात की अहम बैन-अल-अक़वामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं। अमरीका का B-52 बमबार तैयारा परवाज के फौरन बाद गिरकर तबाह, हादसे में 8 अफराद की मौत।
2: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि आलमी बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और मल्लाहों को टकराव से वाबस्ता खतरात के तनाजुर में तहफ्फुज फराहम किया जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियां में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। दरियाए जमुना के अहया के लिए तवील अरसे से जेर इल्तवा किशाऊ डैम प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के बारे में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के माबैन इत्तेफाक राय हो गया है। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने उम्मीदवारों से नीट के दोबारा इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों से होशियार रहने को कहा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: आकाशवाणी श्रीनगर मीटरवेव अलावा FM 71.5 MHz पेट।

0: निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर कश्मीर मोटर्स मौलाना आजाद रोड श्रीनगर।
1: आदाब समईन, आज बुधवार है, मुहर्रम अल हराम 1448 हिजरी की युकम तारीख मुताबिक 17 जून 2024 ईस्वी। श्रीनगर से शाया होने वाले आज के अंग्रेजी और उर्दू रोजनामों की सुर्खियां लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं जहूर अहमद और मेरे साथ हैं
2: जी सकीना। आज की पहली शह सुर्खी अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। वजीर अजम नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के आला तरीन कौमी एजाज से नवाजा गया। एजाज भारत और स्लोवाकिया की मजबूत दोस्ती का एतराफ करार। विकसित भारत के लिए जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का ख्वाब पूरा किया जाएगा। वजीर अजम नरेंद्र मोदी
1: जी। मेरे अखबार में जो अखबार मेरे हाथ में जो अखबार है सुर्खी है G7 सरबराही इजलास, वजीर अजम मोदी की अमरीकी सदर के साथ मुख्तसर बातचीत।
2: एक उर्दू रोजनामे की शह सुर्खी है कि अमरनाथ यात्रा 2024 के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी ग्रिड कायम, यात्रा रूट 19 सेक्टरों में तकसीम, खसूसी फोर्सेज और जदीद निगरानी निजाम तैनात, CRPF की 140 कंपनियां तैनात, 400 CCTV कैमरे नस्ब, 28 वॉच टावर भी कायम।
1: अफरवट की पहाड़ियों पर एक बार फिर बर्फबारी, शुमाली कश्मीर में चालाबारी से तबाही, आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जख्मी, शहरी श्रीनगर और जनूबी कश्मीर में तेज आंधी और बारिशें।
2: एक उर्दू रोजनामे की शह सुर्खी है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 84वीं मीटिंग की सदारत की। श्रीनगर के लिए शहरी तरक्याती इकदाम, हाउसिंग और मुतलका बुनियादी ढांचे के मनसूबों का भी जायजा लिया।
1: शहरी श्रीनगर में भीख मांगने पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान, मरकजी मावनत स्कीम स्माइल के निफाद को तेज करने का फैसला।
2: यकुम अप्रैल 2026 गांधरबल एनकाउंटर, राशिद अहमद मुगल की लाश कब्र से निकालकर अहले खाना के हवाले, बाकियात आबाई कब्रिस्तान में तदफीन की गई, खानदानी जराए।
1: बगैर उसका बोतल बंद अद्वियात मुल्क भर में फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद।
2: एक उर्दू रोजनामे की शह सुर्खी है कि राजौरी के नौशेरा सेक्टर में हद मुतारिका के करीब धमाका, जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत 4 फौजी एहलकार जख्मी, इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल, वाकये की तहकीकात जारी।
1: एक उर्दू अखबार की सुर्खी है, जम्मू कश्मीर में जहेज की अमवात के केसों में सजा की शरह कम, खवातीन के खिलाफ जराइम और कमसिन बच्चों की गुमशुदगी बहुत बड़े समाजी मसाइल।
2: शह सुर्खी है उर्दू रोजनामे की, पुलवामा और श्रीनगर में NDPS एक्ट के तहत इंसदादी मनशियात कार्रवाइयां, 5 करोड़ मालियत की गैर मनकुला जायदाद दे कुर्क, 3 रिहायशी मकानात और 7 कनाल 18 मरला अराजी शामिल, पुलिस तर्जमान।
1: निजी अस्पतालों के 275 करोड़ रुपए वाजिबल अदा, माली चैलेंजेस का सामना, फंड्स का हसूल आसान नहीं, हुकूमत।
2: एक उर्दू रोजनामे की शह सुर्खी है, गुलमर्ग अराजी मामला, ईडी ने मशहूर होटल मालिकान को तलब कर लिया, मनी लॉन्ड्रिंग जाविये से तहकीकात जारी।
1: एयरपोर्ट की तामीर तजदीद, तरक्की और सियाहत को साथ साथ चलना चाहिए, बुखारी।
2: डीसी श्रीनगर ने यात्रा एनजेड कैप पंथ चौक का दौरा किया, आइंदा सालाना यात्रा के हमवार इनेकाद के इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी।
1: आधार का सिर्फ शिनाख्ती सबूत के तौर पर इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट का मरकज और रियासतों से जवाब तलब।
2: एक उर्दू रोजनामे की शह सुर्खी है कि राजौरी में LOC के नजदीक मुशतबे पाकिस्तानी ड्रोन की नकलो हरकत, सिक्योरिटी फोर्सेज की तलाशी कार्रवाई।
1: समय सुर्खियां जारी है, आप हमारे साथ बने रहिए।
3: ژٕ چھُکھ سا وۄنۍ یہِ برٛش کٹر نقسٕے پٮ۪ٹھ نژناوان، یہِ گوٚو نا ٹھیٖک؟
4: اہن سا ییٚلہِ ٹھیٖک گژھِ تیٚلہِ کَتہِ آسہِ ہم نقسٕے پٮ۪ٹھ۔
3: انن وِزی ونیومو ہونڈا کمپنی ہُنٛد برٛش کٹر أنۍ تو، تتھ ووٚنوم سٲری برٛش کٹر چھِ ہِوی آسان۔
4: یہ بوزُن تی ووٚنمے ژےٚ تہِ۔
3: ہونڈا کمپنی ہُنٛد برٛش کٹر چھُ مضبوط، پایدار تہٕ گارنٹی سان میلان، اتھ چھُ بلیڈ تہٕ راڈ تہِ کمپنی ہٕنٛزٕے آسان، پیٹرول خرچہِ باقیو

0: बहरहाल शहर च तमाम सड़क तो कोच सजाव तो पराव न पता आव त्रे दुई त्रेश होत तो बच होत वड़नें तो परछें सिंजर खारदार करित असीरान करबलाहन हुंद ये मजलूम कारवार ब्रो ब्रो शोदाई करबलाहन हिंद सर अधर नेजन सवार करित शाम किन कोचन तो बाजरन फिरवित दरबार यजीदस कुन रवान करन वत्य वत्य हजरत सैनब अलैह सलाम बराबर लुकन इनकलाब अंगेज खुतबवदिस फलसफे शहादत इमाम बाबा तो पन्न हकानियत सीत महल महल तो अलाक अलाक फतह करा
1: बिलाख राव असीरन हुंद कारवां यमिश कयादत हजरत जैनब अलैहि सलाम करानस ते शहीदन हिंद सर हाय अथर हेत रसन बस्त दरबारी यजीदस मंज हाजिर करने दरबार उस अमीरव रईसव फजीरव गैर मुल्की सफीर ते शहर के बुजुर्गव सिद भरत
0: यजीद पलीदोस फिरौनी गुरूरस मंज बदमस्त तख्तस पेट बिहित शराबिक जामस पेट जाम जवा पानस ब्रोकन ओसन अख तश्त थोवस तथ मज थावनोवन सर इमाम हुसैन अलैह सलाम तो ओड शराब ओस तिथ मज त्रावा बे अदबी करार तो यम गुमराह कुन शारवनित दीन इस्लामस टर्न टेप चटा
2: काश सान कबील तिम बुजुर्ग यम जंगे बंदरस मंज कतलाई कर गछान जिंद तो वछान खजर जमात कित पर छ सान नेजन तलवारन तल आहु जरी करा यकीनन यकीनन चल है तिमन खुशी सुई क्रख नीर ए यजी चाय नत गिस शिल सबदे अश कर बनी हाशमन हिं बुजुर्ग कतल तो जंगे पूर पूर कसा
0: यजीद सिंधियम हरकात सकनात तो नारवात गैर शैस्त कलिमात बूजित पूर्ण दरबारस मज मौजूद कंसि शख्सस उफ्ते मगर शेर दिल खातून हजरत जैनब अलैहिस्सलाम यम सजन रगन मज हजरत फातिमा अलैहिस्सलामन हुंद शीर हैदर करार करमुल्लाह तआला वजह सुंद खून रवान दबाउस तो यम ताजदार अंबिया अलैहिस्सलाम सिंस जबान मुबारक चुमचस दस कित गछ है बर्दाश
1: तेहंद रोए मुबारक पेट सपुद जलाल मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त दबदबे अलवी अलैहिस्सलाम नुमाया त पन्निस वालिद माजिद हजरत अली अलैहिस्सलाम सिंदिस लहजस मस्कुरुन सठई फसीह बलीग खतब शुरू
3: ऐ यजीद सकरत अश जमीनो आसमान तंग अहले बैत अतहार असीर करत फिरनाय थक दयार बदयार अमकी छुक से समझान से अश छ खुदायस नजदीक जलील खार त सछ तस ज नजरन मज मुकरम क्या सछ गुमान से यम जुल्म किन बड़े ये खुदाय से बारगाय मज चन कदरो मंजिल तवै छुक से मगरूर बनत डकस द्रख खाला दशन खोवर तकबुरान अंदाज मज बुछान त शानन यल दिवान
4: ओ यजीद तुछ खुश जि चोन दुनिया गो आबाद तो चाने मर्जी मुताबिक प्रत कह काम अंजाम सपदान तो चेचाई आख बेखारो खलिश हुकूमत हासिल बांबर म हना का सबर क्या चशी मुश्ती गोमत जि खुदा च परान शरीफ अस मज फरमावा
5: ये मौलको कुफर इख्तियार को तिम करन हरगिज जि गुमान जि मे यस मोहल्लत फारबुल बली तिमन दिस सच तिंद खतर बेहतर बल्कि अस छी ये मोहल्लत तिमन अमे मखदस मज युत तुम ज्यादा गुनाह कर तो अखरस छ तिंद बापत रुसवा कुन अजाब

0: और ये भी है कि ये जो खेल है आइस स्टॉक, ये बेवेरियन या स्पोर्ट्स कर्लिंग का एक रवायती खेल है और सरमाई खेल है जो काफी कर्लिंग से मिलता जुलता है और इसे सर्दियों में जमी हुई झीलों या बर्फ के मैदानों पर खेला जाता है, जबकि गर्मियों में इसे स्फॉल्ट या तारकोल पर भी खेला जा सकता है। अब चूंकि सरफराज साहब स्टूडियो में आ चुके हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे, पहले ही मैंने कहा कि कश्मीर के जो यंगस्टर्स है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल वगैरह इन खेलों की तरफ जाते हैं, आपका ये जो रुख है, आपने कैसे इस गेम की तरफ किया, आइस स्टॉक गेम की तरफ, और थोड़ी सी जानकारी और इन दोस्तों को दीजिए कि आप पहले किस खेल से मुंसलिक थे और इस गेम की तरफ कैसे आए।
1: जी, मैंने जो स्टार्ट किया था वो मैंने पहले रग्बी से स्टार्ट किया था
0: जी।
1: मैंने काफी टाइम रग्बी खेला है और मैं 2 साल जेएनके रग्बी का कैप्टन भी रह चुका हूँ
0: जी।
1: और 2014 में जो ऑल इंडिया कैलागान कप हुआ था इंडिया, तो वो उसमें पूरी इंडिया की जो स्टेट टीम्स होती है वो उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो
0: आप जब रग्बी खेल रहे थे, ये किस सन की बात आप कर रहे हैं?
1: ये मैंने स्टार्ट किया था 2009
0: से। आप रग्बी खेल रहे थे, अब आप 2014 पे आ गए, आपने टर्न लिया
1: जी 2014।
0: तो वजह क्या थी ये गेम अडॉप्ट करने की?
1: जी मैम, जैसा ये मतलब कोई भी स्पोर्ट विंटर में, जो जब यहाँ पे कश्मीर में विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो आप मानिए कि यहाँ पे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है वो कम्प्लीटली मतलब या तो कम हो जाती है, बहुत कम, या तो बंद ही हो जाती है। बहुत सारे स्पोर्ट्स तो नहीं खेल पाते हम। तो जैसे मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, तो मुझे पूरे साल में एक्टिव रहना चाहिए। अगर एक्टिव नहीं रहता है इंसान, तो आप ना वो बहुत स्लो पड़ जाते हो
0: जी।
1: तो क्या बोलते हैं उसको, मैं 2014 में हमारा एक मैच था, इवेंट था यहाँ पे गुलमर्ग में
0: जी।
1: तो वहां पे मैं इस स्पोर्ट की ओर ये इंट्रोड्यूस हो गया। वहां पे एक कैंप चल रहा था उस टाइम पे, आइस स्टॉक पहला कैंप चल रहा था वो
0: आइस स्टॉक का।
1: तो वहां पे मैनफ्रेड शेफर जो जर्मनी से हैं, तो वो उन्होंने वहां पे, वो कोच थे, तो उन्होंने वहां पे कैंप कराया था ठीक है। तो उस कैंप का मैं पार्ट हो गया, क्योंकि मैंने वहां पे देखा था ये खेल रहे, तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि और मुझे लगा कि विंटर्स में मैं एज ए पार्ट टाइम इसको खेल भी सकता हूँ। तो उस टाइम पे मैंने इसके साथ वाबस्तगी की इस स्पोर्ट्स
0: के। अब जो रग्बी आपने खेली 2009 से 14 तक
1: जी,
0: इसमें भी कुछ साल आते हैं, रग्बी में आपकी कुछ अगर अचीवमेंट्स है तो वो भी अपने दोस्तों को बताइए।
1: जी मैम, सबसे बड़ी अचीवमेंट जो थी, मैं जैसे मैंने बताया 2014 में हम ऑल इंडिया में हम सेकंड सिल्वर मेडल पे हम आ गए
0: जी,
1: वो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है अभी तक। जी बिल्कुल।
0: अब चूंकि अब आप वर्ल्ड चैंपियन है आइस स्टॉक स्पोर्ट्स के और कैप्टन भी है इंडियन इस आइस स्टॉक टीम के
1: जी जी,
0: इस लिसनर विंकनेस जो
1: जी,
0: تمس کیا ونو کی آئس ٹاک گیم کت پر چی وان گندی یہ چھ کیا ونکنس میں عام لسنر چھ بوزان آئس ٹاک
1: جی
0: کت پر کرون تو یہ کیا یہ گیم کیا چھ ہوت من چھ کرکٹس مس بیٹ تل اتس کیت گیم بیڈمنٹن چھ جال بیٹ تل اتس کیت چھ گندان مطلب تران چھ لسنر اس فکری کی چھ آئس ٹاک کت پر کرو تو ونکنس ایتے یہ چھ گیم کیا چھ
1: یہ چھ آسان گول ڈسک کا آسان اس اچھا ہینڈل سٹاک باڈی اتس ونا چھ تو یہ چھ اس پہ من سلائیڈ کرون آئس اس پہ یہ بیسکلی اس گیم چیز اصلی آئسس پہ گند
0: چھ
1: سمرس مجھے مگر اس اصلی اوریجن
0: آئسس
1: پہ سو آئس تر پہ پہ سلائڈ کرنا 30 میٹر اتھ ملان تک کی پریسیشن مطلب یہ رکاون
0: سٹاک باڈی ون یہ ہکو عام لسنرس ون درمٹ ہوں دباؤنے
1: تیتھان تو تل پلاسٹک پلیٹ تو تم ہکان چینج تک تہوار کہ ڈسائڈ کرن کہ میرے کس شاٹ سے گند تر خطر پہ گالفس مجھے الگ الگ شاٹن خطرہ الگ الگ اتھے پہ ہر کن چیز خطر پلیٹ آسان کہ تہوار کس شاٹ تہو تیز شاٹ گند تہو سلو شاٹ گند تر خطر الگ الگ پلیٹ تو یہ تھی سلائڈ کرنا یا اگر ٹیم گیم چھو تھی گند تین کوئین اخس تک وا ڈوبے جرمنی میں ڈوبے یہ تک سی نزدیک رکاون تو کوشش کیا کر پہ نزدیک تھان تو اپوزیشن ہٹان
0: کوشش یعنی کہ اپنے پوائنٹ لینے کے لیے ان کا وہ ہٹانا اپنا یہ ضروری ہے اور دم ون تھی تھی گیم کور سلیکٹ
1: بالکل
0: ات مز تہذ اچیومنٹ تھی بنے ورلڈ چیمپئن سو تھی کرو کت انڈین ٹیم کیپٹن کت پہ بنو ات گیم مز آئس اسٹاک گیم مز تمچ تھی کرو کت فی الحال اخ من کبت کرو اس پیش مزن آج مرم الحرام گوڈنک تاریخ
1: بوزن

0: दिल में सजाया हुआ नूरी दरबार है, मेरे आसपास मेरा अली सरकार है। जैसा हूँ जहाँ भी हूँ अली ही संग संग है, इश्क अली ने किया मुझे रंग रंग है। अली
1: जी दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर, शुरू जारी है पयाम सुबह। और आज के गेस्ट हमारे स्पोर्ट्स का थीम आज का होता है, और आज के गेस्ट हैं वर्ल्ड चैंपियन इन आइस स्टॉक स्पोर्ट्स, या ये भी है कि कैप्टन ऑफ इंडियन आइस स्टॉक टीम के मोहम्मद सरफराज। कुछ बातें हो गई कि आइस स्टॉक गेम की तरफ मोहम्मद सरफराज साहब कैसे आए, वो इन्होंने बता दिया। अब ये है कि वर्ल्ड चैंपियन हैं आप आइस स्टॉक गेम के, सरफराज साहब कैसे इस लेवल तक आप पहुंचे?
2: मैम, ये इसका हर साल ना नेशनल टूर्नामेंट होता है गुलमर्ग में
1: जी।
2: इस साल उत्तराखंड में हुआ, लेकिन पिछले कई सालों से जो भी टूर्नामेंट हुए वो गुलमर्ग में हो रहे थे
1: जी।
2: और मैं कंटिन्यूसली परफॉर्म अच्छा कर रहा था
1: जी।
2: 2015 से मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा था
1: जी।
2: तो आप मानिए, हर साल मेरा गोल्ड मेडल आ ही रहा था इसमें टीम गेम में
1: जी।
2: तो जब मेरी परफॉर्मेंस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होगी तो फिर

0: में इंडियन आइस हॉकी फेडरेशन ने जो डिसाइड किया कि हम 2018 में हम वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने बोला
1: जी
0: कि ये सबसे बेस्ट चॉइस है अभी कैप्टन के लिए, क्योंकि मैं प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर पा रहा था और मेरा जो प्रिसिशन था शॉट्स का वो बहुत बेटर हो गया था। तो तब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इनको कैप्टन बनाते हैं हम टीम गेम का।
1: देखिए, रग्बी भी में आपने वो मेडल हासिल किया
0: जी
1: है,
0: जी
1: तो इसमें आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, तो इसकी अचीवमेंट अपने दोस्तों को बताएंगे?
0: हाँ, तो जब 2018 में हमने स्टार्ट किया तो हमारी रैंक जो थी वो ऑलमोस्ट 31 पे थे हम
1: जी
0: वर्ल्ड पे,
1: जी
0: ठीक है।
1: जी
0: तो जब हमने वर्ल्ड चैम्पियनशिप स्टार्ट किया तो फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऐसा था जिसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत बहुत अच्छा, और तब जाके हमारी रैंक जो गई थी वो 11 हो गई वर्ल्ड में, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, जिसको कोई भी दुनिया में आप कोई नहीं जानता था हमें, क्योंकि वो हमारा पहला ये टूर्नामेंट था।
1: जी
0: तो फिर उसके बाद अक्टूबर 2019 में, जो मेरी अब तक की सबसे बेस्ट ये है अचीवमेंट है, मैंने 154 स्कोर किया टारगेट कंपटीशन में, इंडिविजुअल टारगेट कंपटीशन 154, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है एशिया में,
1: जी
0: एशिया के लिए वो, और उस टाइम पे मैं एशिया का नंबर वन प्लेयर बन गया,
1: जी
0: तो वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है।
1: बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से। हम यही चाहते हैं कि जो अननोन गेम्स हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे खिलाड़ी जैसे आप हैं, तो उनको यहाँ पे लाके बाकी जो बच्चे आपको सुन रहे हैं जो स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं, क्रिकेट हॉकी वो तो सभी यूजुअली पसंद
0: जी
1: करते हैं, लेकिन जो बाकी गेम्स हैं उनकी तरफ अगर विंटर्स में खेला जाता है तो वो भी इस तरफ जा सकते हैं। अब आते हैं, आप इंडियन टीम के कैप्टन बन गए, आप आइस हॉकी,
0: जी
1: ये कब की बात है?
0: ये मैम 2018 में मैं इंडियन टीम का कैप्टन बन गया
1: जी
0: वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो मेरा पहला ये एज ए कैप्टन रोल था वहाँ पे।
1: जी
0: उसके बाद मतलब मुझे कंटिन्यूसली अभी तक मैं इंडियन टीम का कैप्टन हूँ, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस सबसे, खाली मेरी परफॉर्मेंस ये नहीं होता कि खाली मैं, टीम में एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता,
1: जी
0: मेरी वजह से टीम का भी थोड़ा फायदा हो गया, तो उसकी वजह से मुझे अभी तक रिटेन किया गया है इंडियन टीम का कैप्टन।
1: कश्मीर से कितने बच्चे इस वक्त, अगर हम आइस हॉकी गेम की बात करेंगे, तो इस ग्रुप में या इस गेम में आपके सुपुर्द, या आप इस वक्त कोचिंग भी करते हैं बच्चों
0: जी
1: की,
0: जी जी
1: सिखाते भी हैं, तो कितने बच्चे कश्मीर से हैं?
0: मैम अभी जो हमारी एक्टिव प्लेयर्स है ना, वो 300 बच्चे कम से कम एक्टिव प्लेयर्स होंगे,
1: जी
0: रजिस्टर तो बहुत सारे हैं वो
1: जी
0: तो, लेकिन अभी जो एक्टिव प्लेयर्स हैं ये करीबन 300 के करीब होंगे।
1: आपने कहा कि एक्टिव प्लेयर 300 से ज्यादा भी हो सकते हैं,
0: जी जी ज़्यादा
1: रजिस्टर
0: भी हो
1: बहुत
0: सकते हैं।
1: सारे,
0: हाँ
1: लेकिन आपको क्या लगता है मोहम्मद सरफराज साहब पर्सनली,
0: जी
1: इस गेम की तरफ बच्चे आ रहे हैं,
0: जी आ रहे हैं,
1: मतलब बढ़ रहा है
0: हाँ
1: तादाद?
0: ये बढ़ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि इसमें ना और ज़्यादा लोग भी आए, क्योंकि कैसा है कि इसमें अभी आपको बच्चे को बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स बहुत सारे हैं,
1: जी
0: क्रिकेट फुटबॉल हॉकी है, लेकिन उसमें कंपटीशन भी बहुत है।
1: बहुत ज्यादा
0: अगर आप हमारे बच्चे अभी इस स्पोर्ट को अडॉप्ट करते हैं ना, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेल, नेशनल लेवल पे भी आ सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी आ सकते हैं,
1: सही
0: और वो भी कम कॉम्पिटिशन पे,
1: जी
0: ठीक है।
1: बिल्कुल। और इस इक्विपमेंट, इस खेम में जो कुछ इक्विपमेंट्स है वो तीन है, एक तो स्टॉक बॉडी है,
0: जी
1: स्टॉक हैंडल है और
0: जी
1: डॉब है,
0: जी
1: उस बारे में थोड़ी सी और आप जानकारी देंगे, लेकिन पहले एक नातिया कलाम पेश करेंगे, क्योंकि एक मैसेज मुझ तक पहुंचा है, ये जो गेम है आइस स्टॉक स्पोर्ट पूरी अभी तक हमारी समझ में नहीं आ रहा है,
0: जी
1: क्योंकि सरफराज साहब आ चुके हैं स्टूडियो में,
0: जी
1: इनसे डिटेल में पूछिए, जो स्टॉक बॉडी है, स्टॉक हैंडल है और जॉब है, ये क्या है, कैसे खेला जाता है, उस बारे में आप थोड़ी सी जानकारी देंगे, पहले ये नाच सुनते हैं।
0: ठीक है।

0: जी दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर और शो जारी है पयामे सुप। आज पयामे सुप के गेस्ट हैं वर्ल्ड चैंपियन इन आइस स्टॉक स्पोर्ट्स, कैप्टन ऑफ इंडियन आइस स्टॉक टीम मोहम्मद सरफराज। कई बातों पे उन्होंने रोशनी डाली जो इस गेम के बारे में आपको, मुझे लगता है कि जानना जरूरी है। आपने कहा सरफराज साहब, 300 बच्चे इस वक्त हमारे इसमें एसोसिएशन में हैं जो सीख रहे हैं, जो आगे बढ़ेंगे माशाल्लाह। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि रिसेंटली कोई चैंपियनशिप ऐसी हुई जो बच्चों ने खेली?
1: जी मैम, हमारी एक रिसेंटली गुलमर्ग में 14th नेशनल आइस स्टॉक चैंपियनशिप होगी जिसमें जेएनके ने गोल्ड मेडल जीता
0: जी।
1: उसमें जो सबसे अच्छी कारकर्दगी थी वो हमारे बहुत सारे प्लेयर्स थे, फही मसूद शाह जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी
0: जी।
1: और आदिल मंजूर पीर जो हमारे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से हैं,
0: अच्छा,
1: तो उन्होंने भी बहुत बहुत अच्छी

0: मोहम्मद जी, उसके अलावा अरीद इम्तियाज़ मलिक है, तो
1: जी
0: उनकी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। ये प्लेयर जो कुछ थे जिन्होंने ना इस स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा एक्सेल किया है और इन्होंने इस स्पोर्ट को आगे बढ़ाया है,
1: जी तो
0: तो
1: आपको लगता है इनका फ्यूचर आगे चल के वो इसमें एक्सेल करेंगे, अब और आगे जाएंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल। इसमें से दो जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर ऑलरेडी रह चुके हैं।
1: जी
0: उन्होंने हमारी रिसेंटली एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी 2025 में,
1: जी
0: उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया ऑस्ट्रिया में, और उसमें हमारा ब्रॉन्ज मेडल आ गया है, तो
1: अच्छा,
0: ये भी एक हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
1: माशाल्लाह।
0: जी
1: हम दुआ करेंगे कि आगे चल के बहुत सारे बच्चे इस खेल को अडॉप्ट करें। अब फीमेल पार्टिसिपेंट्स की बात करेंगे।
0: जी
1: यूजुअली जब कोई गेम होता है तो जहन में आता है कि इस खेल की तरफ हो जाएगा, इस खेल की तरफ हो जाएगा, या लड़कियां बैडमिंटन की तरफ ज़्यादा आ जाती है। इस खेल में, आइस स्टॉक में, कोई लेडी या कोई बच्ची हमारी है जो ये खेल आइस स्टॉक खेल रही है इस
0: बिल्कुल,
1: वक्त?
0: आत्म अच्छी वारिया मस लड़की गिना क्या जी अख चीज़ कि आम तौर से कोरियन वनान ज गिंद हु चीज हम गिंद कह
1: बिल्कुल,
0: अमि
1: अपन
0: लगी पत ग चुन
1: बिल्कुल,
0: वारा यम चीज
1: हाँ, जो
0: वनान
1: आम ये होता है।
0: हाँ, तो अत चुन सह प्रॉब्लम कहें तो
1: कहीं
0: कोरियन अत मा कोर तिस गिंदा कि तम अगर तिमन प्रॉपरली चांस मिलना कि स्पॉन्सर्स बाकी चीज अगर तिमन मिलन तिम हकन मतलब दुनिया
1: मतलब
0: करित
1: खेल
0: फतेह
1: सकते
0: करित
1: हैं
0: आ
1: अहमियत।
0: तिम हकन वारे वारे तिम विंकस नेशनल लेवल्स पे अत महविश वानी सिमरन यम आरिफ आरिफात यम तुत असल गिंदान कि बह हक वनि तम हकन लड़कन त पथ त्रित
1: वर्ल्ड
0: गेम
1: लेवल पे भी खेल सकते हैं
0: यम
1: जो।
0: हकन वारे असल गिंदित क्या यूथ यम नेशनल्स मे परफॉर्म ना करा बस वनान कि इंटरनेशनल पे हकन अम खत बेटर अगर
1: बेटर
0: तिमन अ
1: खेल
0: चांस मिले,
1: जी।
0: तो अस चीज प्लेयरन चांसेस मिलान कहें अच्छा सो एक्सपोजर मिलान ये कहें अत मे जरूरत क्या इत पे तुम एप्रिशिएट करो आज आउस बो यो तुम
1: बिल्कुल
0: बुलवस बो योर मे
1: बिल्कुल
0: मिले अख एप्रिशिएशन इस अम
1: बिल्कुल
0: चीज
1: सही
0: सत्य
1: सही सही
0: ठीक है
1: जी
0: इथे पे अगर बाकिन प्लेयरन तक मिले अम गेम मुतलिक जानन
1: जी
0: क्या तुम मे बुलो अद हक लुकन वन ये गेम क्या
1: बिल्कुल।
0: अगर
1: तशहीर
0: मैं
1: एक हिसाब से होगी,
0: बिल्कुल
1: पब्लिसिटी होगी, बाकी
0: बिल्कुल
1: बच्चे भी इसकी तरफ आ सकते
0: आ
1: हैं
0: सकते हैं,
1: जी।
0: तो तीसान कि बच्चन कि बच्चन बसान कि अच्छा पृछान कहें
1: सही सही
0: तो यह चीज सारे खुद बोर्ड प्रॉब्लम गस कोर ये तम हकन वह गिंदा तम कह तमो पुन ये लोहा मनवाना
1: बिल्कुल
0: तमो गोल्ड मेडल हर किसी इवेंट में
1: जी
0: एक सी इवेंट में अच्छी त्रे इवेंट गसान टीम गेम टीम टारगेट तो लॉन्ग डिस्टेंस त्रेशवनी में चीज वारे असल
1: बहुत
0: गिंदा
1: एक्सेल कर रहे हैं। सरफराज साहब, आपने कहा कि कुछ शिकायतें हैं, कुछ आप चाहते हैं एसोसिएशन से या गवर्नमेंट इदारों से, वो क्या आप चाहते हैं वो भी आपसे जानेंगे। क्योंकि आपने कहा कि अप्रिसिएशन मिलती है, ये वाकई में जब कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी होती है पीठ थपथपाना जरूरी बनता है। बचस एनकरेज न करान पचु सुब दपा ना अम ब्रो तकब जरूरी कथा कि तुह के मुतालबा तुम तुव कह यहां गवर्नमेंटस नश तिथि हूँ तुम वनकस वन مگر گۄڈنٮ۪تھ یہِ کَرو أسۍ پیش یہِ چھُ محرم اَکھ وٕنکٮ۪نَس گۄڈنیُک تٲریٖخ أسۍ چھُ فرض بَنان کہِ مَنقبت تہِ کَرو پیش گۄڈنٮ۪تھ کَرو یہِ بوزَن والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ پیش پَتہٕ کٔرِو تُہۍ تۄہہِ تہِ یِم شِکایتہٕ چھِ باقٕیَن اٮ۪سوسیشنہِ سۭتۍ یا کٲنٛسہِ چھُ تۄہہِ کینٛہہ پِرٛژھُن تۄہہِ کیٛاہ چھُ ضٔروٗرت سُہ تہِ ہیٚکِو تُہۍ ؤنِتھ

0: लाइव शो पयाम सुबह जारी है आकाशवाणी श्रीनगर से। मैं हूं आपकी मेजबान सकीना और आज के गेस्ट हैं मोहम्मद सरफराज, वर्ल्ड चैंपियन इन आइस स्टॉक स्पोर्ट्स, कैप्टन ऑफ इंडियन आइस स्टॉक टीम। और इनसे बात हो रही थी इनके कारनामों के हवाले से, इन्होंने जो अचीव किया है इस खेल में या रग्बी खेल में, पहले ये खेला करते थे और रग्बी खेल जब इन्होंने ड्रॉप किया उसके बाद इन्होंने इस गेम में एक्सेल किया आइस स्टॉक स्पोर्ट्स में। और एकेडमी भी है, एसोसिएशन है इनकी, उसमें बच्चे भी सीख रहे हैं आइस स्टॉक गेम। लेकिन आपसे मैं सरफराज साहब ये जानना चाहूँगी कि ओलंपिक गेम चार्टर में ये जो आइस स्टॉक गेम है ये दर्ज थी या खेली गई 1936 में और 1964 में, उसके बाद ओलंपिक गेम चार्टर में ये नहीं है। इस गेम को और प्रमोट करने के लिए या ओलंपिक गेम चार्टर में लाने के लिए क्या कोशिशें हो रही है या आप पर्सनली एज ए चैंपियन क्या कुछ कर रहे हैं?
1: जैसे इंटरनेशनल लेवल पे अभी क्या है कि हर किसी गेम को ओलंपिक में आने के लिए वो एक पर्टिकुलर कंट्रीज में, सेट ऑफ कंट्रीज में ये खेली जानी
0: जरूरी
1: है। बिल्कुल
0: जी।
1: उसके बाद ये ग्रास रूट लेवल से अभी स्टार्ट हो रहा है। हमारी एफर्ट्स के हम अभी इसको इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया में हम अभी इसको ग्रास रूट लेवल पे ला रहे हैं। हम अभी हम एक्टिविटीज क्या करें, हम अब इसको स्कूल में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, उसके बाद कॉलेजेस में भी हम इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं ताकि ग्रास रूट लेवल पे आ जाए। ये हमारी एफर्ट है। और इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है कि वो इसको बाकी कंट्रीज में अभी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जैसे क्योंकि ये हर किसी कॉन्टिनेंट में होनी चाहिए। अभी क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में खाली अभी कनाडा में खेली जाती थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाकी कंट्रीज में भी इसको इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। और यूरोप में तो ये बहुत फेमस है, जैसे यहाँ पे क्रिकेट खेलते ना वैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, वहाँ पे एक
0: पहली प्रेफरेंस।
1: हाँ, ये वहाँ पे मतलब आप मानिए गली क्रिकेट जैसे यहाँ पे वैसे गली में खेली जाती है, तो वहाँ पे तो उसको बहुत इन्फ्लुएंस है। लेकिन अफ्रीका में अभी इसको बहुत कम है, एशिया में बहुत कम है। तो इंटरनेशनल बॉडी क्या कर रही है, वो अभी आपको अभी एशियन कंट्रीज, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में इसको इंट्रोड्यूस करा रही है ताकि ये ओलंपिक चार्टर में आ जाए,
0: वापस आ जाए।
1: जी जी, वापस आ जाए।
0: क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि 1936 में ये ओलंपिक में दर्ज थी या 1964 में भी खेली गई। तो पर्सनली आप देखिए, आप यंग है
1: जी,
0: एज ए यंगस्टर खिलाड़ी आइस स्पोर्ट के, या आप जो आइस स्टॉक से वापस था इस स्पोर्ट से, इस वक्त

0: उसको क्या कहना चाहेंगे जो कि पढ़ाई भी कर रहा है, बाकी स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी है, इस स्पोर्ट्स में आने के लिए क्या कहना चाहेंगे? या आप किसी ऐसे जो किसी खेल से वाबस्ता नहीं है, उनकी उनके लिए क्या मैसेज होगा?
1: देखिए, आप जो भी अभी बच्चे हमें सुन रहे हैं, ठीक है, तो मैं उनको कह रहा हूँ कि आप जुड़िए किसी न किसी स्पोर्ट्स, आयुष टॉक नहीं, किसी न किसी स्पोर्ट्स, किसी न किसी स्पोर्ट्स से आप जुड़ जाइए, क्योंकि इससे आपकी फिजिकल फिटनेस। अभी क्या हो रहा है कि बच्चों का जो शेड्यूल है ना, आप देखिए, वो स्कूल, उसके बाद ट्यूशंस, उसके बाद होमवर्क,
0: बिल्कुल
1: उनका शेड्यूल बहुत टाइट
0: है, यही प्रेशर,
1: हाँ, उनका प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। उसका नतीजा क्या हो रहा है कि बच्चे ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, बाकी चीजों की ओर जा रहे हैं।
0: छुटकारा
1: पाने के लिए आपको स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको सबसे पहले क्या सिखाता है? डिसिप्लिन, जी। और ये, और आपको मेंटल हेल्थ नहीं खाली, फिजिकल हेल्थ की ओर भी ले जा रहा है, ठीक है। तो आप जो जहां भी आप मुझे सुन रहे हैं, आप क्या कीजिए, आप किसी न किसी स्पोर्ट्स के साथ जुड़ जाइए। और अगर आप चाहते हैं आइस टॉक, तो आप मोस्ट वेलकम है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, हमारे फेसबुक पेजेस हैं हमारे एसोसिएशन के, आप उस पे हमें मैसेज कीजिए, हम आपको वहां पे जोड़ सकते हैं अपने साथ, और आगे आपको मतलब नेशनल, हाँ, आपको नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे हम, ये वो मेरा प्रॉमिस है आपके साथ, क्योंकि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप 5 महीने 6 महीने में मैं आपको रेडी कर दूंगा नेशनल के लिए। लेकिन आपको क्या है कि आपको हमारे साथ जुड़ना है, पहले एक पहला स्टेप आपको लेना है, बाकी आप हम तक छोड़ दीजिए, आप ये जो भी प्रैक्टिस का है, जो भी है, वो आप हम तक छोड़ दीजिए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज साहब आपका यहाँ पे आने के लिए, और आपकी जो शिकायतें थी या आप जो कुछ चाहते थे, आने वाले शोज में फिर से आपको कभी दावत देंगे। बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी रह गई, इंशाल्लाह आने वाले शोज में बात करेंगे। और जितने भी दोस्तों से आप मुखातिब रहे, आपने भी कहा कि किसी भी गेम को अडॉप्ट कीजिए, और जो इस वक्त ये अभियान एक हिसाब से चल रहा है, नशा मुक्त अभियान, आपने खुद कहा कि मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी बहुत जरूरी है, और ये वक्त ऐसा है किसी गेम के साथ जुड़ना ही जुड़ना है अगर आप फिट रहना चाहते हैं या सुकून पाना चाहते हैं। और पेरेंट्स के लिए भी एक बात है सरफराज साहब की, वो बच्चों को मोटिवेट करें और वो ये ना करें कि जो वो खुद ना बने, बच्चों से वो एक्सपेक्ट करें डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। यूजुअली यही होता है पढ़ाई में कि आप ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, इससे बच्चों पे प्रेशर
1: बहुत ज्यादा बढ़ जाता
0: है, जिस वजह से एक हिसाब से वो फरार चाहता है, फिर वो बाकी चीजों की तरफ जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो पॉजिटिविटी रहे बच्चों में, खेल की तरफ जाए, हमारा मकसद और मुद्दा यही है आकाशवाणी श्रीनगर का। और इसी वजह से हम चाहते हैं कि आप जैसे चैंपियंस को, आप जैसे यंगस्टर्स को जो खेल से वाबस्ते है, आज के दिन आपको बुलाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे।

सामने मोहतरम, आप समाप्त कर रहे थे लाइव मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का शो पयाम सुबह। हम आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11:30 होने वाले हैं। ज़मीन आपको बता दें कि आज यक्म मुहर्रमुल हराम है। इस सिलसिले में आइए समाप्त करते हैं मरसिया ख्वानी। मरसिया ख्वाँ हैं ज़ाकिर ग़ुलाम मुस्तफ़ा सूफ़ी और उनके साथी।

हम आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से आपसे मुखातिब है मीडियम वेव और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समय दिन के 12 बजने वाले हैं। चंदीला मुबाद आप आकाशवाणी दिल्ली से अंग्रेजी और हिंदी में खबरें समाप्त करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉर्डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़

रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजावेलु और VP शिव कोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNH राजशेखरन को उपराज्यपाल KK कैलाशनाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोनाको के शासक अल्बर्ट द्वितीय से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि इस दौरान नवाचार और उभरते प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत मोनाको साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इससे ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। ICC महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में 1:30 से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोन मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: शमीन आप समाप्त कर रहे थे नवा, आवाज़ थी बेगम अख्तर की। ठीक 12:30 हो रहे हैं। आइए अब खबरें समाप्त करते हैं, पहले उर्दू उसके फौरन बाद कश्मीरी में।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाज अख्तर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस में जारी G7 इजलास के हाशिए पर आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात कर रहे हैं। दोनों लीडर बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म ने कल इजलास के हाशिए पर कई आलमी लीडरों के साथ अलग अलग मीटिंग्स की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज जिला बांडीपोरा का दौरा कर रहे हैं, जहाँ वो कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। जम्मू कश्मीर हुकूमत जल जीवन मिशन के दूसरे मरहले के निफाज के लिए वजारत जल शक्ति के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत करेगी। इस सिलसिले में जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने कहा है कि काबीना ने इस मंसूबे को मंजूरी दे दी है, जिससे फ्लैगशिप स्कीम के दूसरे मरहले में जम्मू कश्मीर की बिला खलल शमूलियत यकीनी बनेगी। पर्सनल अवामी शिकायत और पेंशन के मरकजी वजीर मुमलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल SKICC श्रीनगर में 59वीं प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि DOPPW महकमा सुबकदोश होने वाले मुलाजमीन के लिए इस तरह के काउंसलिंग वर्कशॉप्स का एहतमाम करता है, ताकि इन पेंशनरों के मैयार हयात में बेहतरी लाई जा सके।
2: यूटी बनने के बाद गवर्नमेंट ऑफ JNK के जितने मुलाजिम तो स्टेट गवर्नमेंट के हुआ करते थे, आज वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और उनका रख रखाव भी इसी महकमे के पास है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन पेंशनर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसी बात को नुक्ते नजर रखते हुए जो हमारी डिस्पर्सिंग बैंक्स का पैनल है, जिनके मार्फत ये पेंशन दी जाती है इन रिटायर याफ्ता दोस्तों को, उसमें आज जम्मू कश्मीर बैंक भी शामिल किया गया। तो मुझे लगता है कि एक नया आगाज है और इससे जो प्लस 60 का तबका है इनको राहत मिलेगी।
1: आज से मुहर्रम अल हराम के मुकद्दस महीने की शुरुआत के साथ ही नए कमरी साल 1448 हिजरी का आगाज हो गया है। इस महीने की 10 तारीख को मैदान करबला में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी और अपने रुफका की जानों का नजराना पेश किया। आज से वादी भर में आजादारी और हुसैनी मजालिस का इनेकाद भी हो रहा है, जिस दौरान करबला के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। उमरी सार्फीन के वजीर सतीश शर्मा ने कल श्रीनगर के कई इलाकों का दौरा करके मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायजा लिया।

0: उन्होंने अजादारों के लिए तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने झील डल के अंदरूनी इलाकों का दौरा करके वहां पर जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। जरीबल के MLA तनवीर सादिक और जिला इंतजामिया के कई सीनियर अफसरान भी उनके हमराह थे। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने इंतजामिया के आला अफसरान की एक मीटिंग तलब करके 21 जून को मनाए जाने वाले बैनुल अक्वामी योगा डे के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने योगा के पैगाम को आम करने के साथ साथ इस मुनासिबत से जम्मू कश्मीर के कुदरती हुस्न और सियाहती वसत को भी फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने योगा डे की तकरीबात के अहसन इनेकाद के लिए मुख्तलिफ महकमों के दरमियान करीबी तालमेल पर जोर दिया। दरियासना चीफ सेक्रेटरी ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक जायजा मीटिंग में यूटी से टीबी के खात्मे की कोशिशों को मजीद आगे बढ़ाने की हिकमत अमली को उजागर किया। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुलरहीम राथर ने चाडोरा के निगो ब्रनवार इलाके में हाल ही में पेश आए सड़क हादसे में जान बहक हुए शख्स के लवाहकीन के साथ इजहार ताजियत और हमदर्दी करते हुए कहा कि इस मुश्किल वक्त में हुकूमत मुतासर कुंबे को हर मुमकिन ताउन देने की वादाबंद है। चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर और डायरेक्टर मर्दमशुमारी ऑपरेशन जम्मू कश्मीर और लद्दाख अमित शर्मा ने प्रिंसिपल मर्दमशुमारी ऑफिसर कुपवाड़ा श्रीकांत सूसी के साथ एक मीटिंग के दौरान कुपवाड़ा में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान अमित शर्मा ने साइबर फ्रॉड में मुलविस मुजरिमों के खिलाफ अवाम की बेदारी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर अक्षय लाबरू ने खरियार हबकदल में वाकई भगवान गोपीनाथ आश्रम में हाजिरी देकर सालाना महायज्ञ में शिरकत की। वाज रहे हर साल वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले सैकड़ों श्रद्धालु इस मजहबी तकरीब में शिरकत करते हैं। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल महिदीन भट्ट, जो कि पहलगाम एक्सिस के यात्रा ऑफिसर भी हैं, ने FCI गोदाम, मीर बाजार और वॉलनट फैक्ट्री काजीगुंड में कायम यात्रा ट्रांजिट कैंपों का दौरा करके आने वाली श्री अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए पीने के साफ पानी और तिबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। शोपियां के डिप्टी कमिश्नर शिशिर गुप्ता ने डिस्ट्रिक्ट लेवल टेलीकॉम कमेटी की एक मीटिंग के दौरान जिले में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्याती पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने शोपियां में टेलीकॉम के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और नेटवर्क कनेक्टिविटी को मजीद बढ़ाने से मुतलिक अहम उमूर पर गौरखोज किया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर। वन बोजनाई मुजम्मिल कम्बे खबर। वजीर अजम नरेंद्र मोदी करन आज फ्रांसस में जारी G7 इजलास के आके पास अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सीत मुलाकात। दुशवई लीडर करन पानवन तलुकात मजबूत बनान इलाकई क्यों आलमी मामलन पे ख्याल बावत। इम ब्रोह कर रात वजीर अजमन कैया आलमी लीडरन सीत ब्यून ब्यून मीटिंग त। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज बंडपुर जिलुक दौर करान ये तिम कैया तरकियती प्रोजेक्टन दस तुलन। जम्मू कश्मीरी सरकार करे जल जीवन मिशन के दोमी मरहल के नफाज बापत मरकजी जल शक्ति वजारत सीत इक्कीस महफामत नामस पे दस्खत। अत मुतलिक वन जल शक्ति वजीर जावेद अहमद रानहन काबीनान दिच अत मनसूबस मंजूरी। यह तहत फ्लैगशिप स्कीम हिंदिस दोमिस मरहलस मंज जम्मू कश्मीर कुनि ठहरि वर शमूलियत यकीनी बने। पर्सनल अवामी शिकायतन तो पेंशन मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह तुल रात SKICC श्रीनगर कुनहट मिस प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग वर्कशॉपस दस। तमो वन DOPPW महकम रिटायर सपदन वाल मुलजमन खात इथन हिवन काउंसलिंग वर्कशॉपन हन संज करान युथ इमन पेंशनरन हिंदिस मयार जिंदगी मज बेहतरी अन ये।
2: यूटी बनने के बाद गवर्नमेंट ऑफ JNK के जितने मुलाजिम तो स्टेट गवर्नमेंट के हुआ करते थे, आज वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और उनका रख रखाव भी इसी महकमे के पास है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन पेंशनर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसी बात को नुक्ते नजर रखते हुए जो हमारी डिस्पर्सिंग बैंक का पैनल है जिनके मार्फत ये पेंशन दी जाती है इन रिटायर याफ्ता दोस्तों को, उसमें आज जम्मू कश्मीर बैंक भी शामिल किया गया। तो मुझे लगता है कि एक नया आगाज है और इससे जो प्लस 60 का तबका है इनको राहत मिलेगी।
1: आज मुहर्रम अल हराम के मुकदस रेतुक गुडनुक तारीख तो अजकी पे सपुद नवे कमरी वरी 1448 हिजरी हुंद आगाज ते 68 हिजरी हिंदी मुहर्रम रेतने दहमी तारीख कुर नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमो हजरत इमाम हुसैन अलैहि सलामो करबला किस मैदानस मज

necessary. Hankurun yanipan garbar dut rahe khuda.

करबला सुगम हुसैन, यस अली मुश्किल कुशास बाब बे दद फातिमा, यस अली मुश्किल

सर चिट्ठी नाज़ुक।

0: हम आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय ठीक 1:10 हो रहे हैं। आइए समाप्त करते हैं एनसीईआरटी का तैयार करदा स्पॉन्सर तालीमी प्रोग्राम उमंग।
1: नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि यह दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओं। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहां गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय

0: के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहां तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है, मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओ, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियां भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहां तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी।
3: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।
3: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
2: अच्छा।
3: यानी आजादी, आजादी, आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े, सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के

0: खिलाफ उठ खड़े हुए।
1: ओ,
0: उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
2: अच्छा।
0: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
1: ओ, मंगल पांडे।
0: हाँ, मंगल पांडे 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
2: अच्छा।
0: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे, अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
1: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक

0: गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
1: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
0: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई।
3: ओ,
0: सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
3: फिर क्या हुआ दादी?
0: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
2: अच्छा?
0: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
4: हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसा चल नहीं सकता, नहीं ऐसा चल नहीं
3: सकता। उसके बाद क्या हुआ?
0: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
5: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे,
6: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
5: नहीं। भले ही हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े।
0: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
5: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
0: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
7: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
8: मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे
9: जिंदाबाद,
8: इंकलाब
9: जिंदाबाद,
8: इंकलाब
9: जिंदाबाद।
0: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉम आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
10: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
0: सारी छावनी में खलबली मच गई।
11: भारत माता की जय, भारत माता की जय।
2: उसके बाद क्या हुआ दादी?
0: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
5: अरेस्ट करो,
12: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे,
13: नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, कोई हाथ नहीं लगेगा।
2: दादी जी, फिर क्या हुआ?
0: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग

0: Hmm? Bande ko thi khona mangta hai. Durant hospital bhejo.
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूँ।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा।
2: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
4: ओ।
5: जब संतावनी के रारी भैली वीरन के वीर पुकार भईल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भईल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मशहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भईल, जननी के भेंट परान भईल, आजादी का बल बेदी पा मंगल पांडे बलिदान भेल, जब संतावनी के रारी भैली वीरन के वीर पुकार भैली।
4: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
2: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
4: अच्छा।
2: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तानकर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशी का।
7: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रम

0: कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
1: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
2: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
1: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
2: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
1: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
2: अच्छा माँ।
3: माँ, माँ।
2: लो, देवेंद्र भी आ गया।
3: दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
1: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
2: ठीक है माँ।
3: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
2: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
3: ये देखो दीदी, ये मारा।
2: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
3: अरे ये मारा।
2: अच्छा, तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
3: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
2: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
3: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
1: लगता है कोई आया है। काशु बेटी, देखो दरवाजे पर कौन है।
2: अच्छा माँ, कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है? अरे
4: हमें अंदर आने दो।
2: अरे क्यों?
5: ए लड़की, रास्ते से हट जा।
2: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
4: लड़की हट।
2: माँ,
4: ये चाकू देख रही है ना?
5: ज्यादा होशियारी मत दिखा।
2: अरे
5: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा।
2: माँ
5: हट रास्ते से।
2: माँ
6: क्या हुआ?
2: देखो जल्दी आओ।
6: ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
4: शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
2: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
4: ये चाकू देख रही है ना?
2: छोड़ दो।
6: मुझे मत मारो,
2: कुछ मत करो।
6: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम,
4: जल्दी,
6: याद नहीं कहाँ रखी है।
5: ये बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
6: अरे मेरे पास छोड़ो,
2: मेरी माँ को छोड़ो।
4: चुप चुप, आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
5: सुनो सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
6: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
2: देवेंद्र।
3: हाँ दीदी।
2: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
3: अच्छा, हाँ।
2: हाँ। पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
3: अच्छा।
2: हेलो।
7: हाँ बेटा बोलो।
2: पापा।
7: हाँ।
2: पापा।
7: हाँ, बोलो।
2: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
7: कौन घुसा है?
2: माँ को बहुत मार रहे हैं।
7: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
2: अब देवेंद्र, मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
3: अच्छा।
2: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुस आए हैं, बचाओ।
8: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
9: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको। कशिका को। हाँ वाह वाह वाह।

0: कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
1: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
2: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।

0: साइबर और खला के शोबों की तैयारियों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। वजीर दिफा ने खास तौर पर कहा कि पिछले 12 साल के सफर से एक मजबूत तर, महफूज तर, खुद कफील और मजीद पुरेतमाद भारत की अक्कासी होती है जो अपने कौमी मफादात की हिफाजत के लिए तैयार है और एक कायदाना आलमी ताकत के तौर पर उभरा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर कहा है कि पिछली दहाई के दौरान भारत की दिफाई सलाहियतों में खातिर खा इजाफा हुआ है। ये इजाफा खुद किफालत के नजरिए की रहनुमाई में हुआ है जिसे इख्तिरा टेक्नोलॉजी और साजो सामान को मुल्क ही में तैयार किए जाने से तकवियत मिली है। जनाब मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर माइक ऑफ के जरिए पैगाम भेजते हुए वजाहत की है कि मुल्क ने किस तरह फजा, जमीन और समंदर में अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत किया है, मुल्क ही में तैयार की गई टेक्नोलॉजीज को जदीद तरीन बनाया है और खुद इन्हिसारी और कौमी सलामती के लिए एक मजबूत तर बुनियाद की तामीर की है। उन्होंने कहा कि इससे भारत की तरक्की की एक झलक मिलती है जो उसने पिछले 12 साल में दिफा के शोबे में हासिल की है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ज़राती और डब्बा बंद ग़िज़ाई अशिया की बरामदात में इजाफे से मुतालिक तंजीम के चेयरपर्सन अभिषेक देव ने बताया कि अमरीका, ब्राज़ील, चीन और यूरोपीय यूनियन जैसे बड़े आलमी बरामदकारों से मुकाबले के बावजूद भारत की ज़रई बरामदात आज 5,000 मसनूआत पर मुश्तमिल हैं जो एक दहाई कबल तकरीबन 280 मसनूआत पर मुश्तमिल थी। जनाब देव ने बताया कि मुल्क की ज़राती बरामदात गुज़श्ता साल 53 अरब डॉलर तक पहुंच गई और भारत ज़राती मसनूआत बरामद करने वाले टॉप 10 मुल्कों में शामिल रहा। नशीली अशिया की रोकथाम से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की 8वीं ब्रिक्स मीटिंग भारत की ब्रिक्स सदारत के तहत वर्चुअल वसीले से मुनक्किद की गई। नशीली अशिया के कंट्रोल के ब्यूरो एनसीबी ने बताया कि भारत, चीन, इथियोपिया, इंडोनेशिया, रूस, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहदा अरब अमारात के मंदूबीन ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के दौरान मंदूबीन ने नशीली अशिया की कौमी सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट्स एक दूसरे के सुपुर्द की और नशीली अशिया से लाहिक खतरात पर बातचीत की। जमीन के बंजर होने और खुश्कसाली की रोकथाम का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन जमीन के बंजर होने की रोकथाम और खुश्कसाली के असरात से निमटने के लिए बैनुल अक्वामी तआवुन से मुतालिक बेदारी में इजाफे के मकसद से मनाया जाता है। इस साल का मौजू है सरसब्ज जंगलाती जमीन, तस्लीम कीजिए, एहतराम कीजिए और बहाली कीजिए। इस मौजू के तहत सरसब्ज जंगलाती जमीन की इक्तिसादी, माहौलियाती और सकाफती कदर को और ज्यादा तस्लीम किए जाने, इसके रिवायती फवायद की बुनियाद पर इसका एहतराम किए जाने और जो जमीन बंजर हो गई है उसकी बहाली में काफी ज्यादा सरमाया लगाए जाने की बात कही गई है। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा में तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने सभी से ये याद रखने को कहा है कि जमीन तमाम तर माहौलियाती निजाम की बुनियाद और हमारी ग़िज़ा नीज तवानाई का असल वसीला है।
1: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: भारत ने मजीद 5 टन जरूरी दवाइयां काबुल को भेजी हैं। वजारत खारजा ने कहा है कि अफगानिस्तान के लोगों की फलाह बहबूद के लिए इंसानी मदद फराहम करने के तई मुल्क के मुस्तकिल अज़्म की दोबारा तस्दीक होती है। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने कहा है कि आइंदा 4 से 5 दिन के दौरान जनूब मगरबी मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के हिस्सों में मजीद आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। क्रिकेट में लखनऊ में भारत ने 5 मैचों की सीरीज के दूसरे एक रोजा बैनुल अक्वामी मुकाबले में 6 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना लिए हैं। इससे कबल अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुभमन गिल की क्यादत में भारतीय टीम मस्कूरा सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है और आज का मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करने का इरादा रखती है। और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियो में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के

0: खाली
1: वाह वाह वाह वाह
0: है
1: वाह
0: अज्म
1: वाह
0: उनके बनेंगे फिदवी, हुसैनी हैं हम कहाँ मुखालिफ, हवा मुखालिफ फिजा मुखालिफ, जमी मुखालिफ जमा मुखालिफ, हुसैनियत को करेंगे कायम, हो चाहे सारा जहाँ मुखालिफ। हर एक तरफ दोस्तों की लाशें, हर एक तरफ दोस्तों की लाशें, हर एक जानिब उदासियाँ थी, सलाम तेरी शुजाअतों पे, यहाँ मुखालिफ वहाँ मुखालिफ।
2: जनाब कमरुल हसन कासमी साहब अपना उम्दा सलाम पेश फरमा रहे थे। अब मैं जनाब परवेज़ मानूस साहब से गुजारिश करूँगा कि शहीद करबला हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अंसार को अपनी मंजूम अकीदत में याद करें। जनाब परवेज़ मानूस साहब,
3: बारगाह इमामत में अकीदत के चंद फूल निछावर करने की जसारत करूँगा। तो मतला है कि जुल्मत की चली सर सर, जुल्मत की चली सर सर शब्बीर की बस्ती में, जुल्मत की चली सर सर शब्बीर की बस्ती में, महशर था बपा घर घर शब्बीर की बस्ती में, जुल्मत की चली सर सर शब्बीर की बस्ती में, महशर था बपा घर घर शब्बीर की बस्ती में, नरगे में लईनों के जब हजरत जैनब थी, नरगे में लईनों के जब हजरत जैनब थी, सहमी थी हर एक दुख्तर शब्बीर की बस्ती में, सहमी थी हर एक दुख्तर शब्बीर की बस्ती में। और ये देखें शेर के, लश्कर में यजीदों के, लश्कर में यजीदों के हलचल सी मची निकले, लश्कर में यजीदों के हलचल सी मची निकले, अब्बास अलम लेकर शब्बीर की बस्ती में, लश्कर में यजीदों के हलचल सी मची निकले, अब्बास अलम लेकर शब्बीर की बस्ती में। और ये शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि बेनूर हुआ आलम, बेनूर हुआ आलम इकदाम यजीदी पर, बेनूर हुआ आलम इकदाम यजीदी पर, सूरज का कटा जब सर शब्बीर की बस्ती में। शुक्रिया। बेनूर हुआ आलम इकदाम यजीदी पर, सूरज का कटा जब सर शब्बीर की बस्ती में। और असगर का दहन छूने मचली थी कई मौजें, असगर का दहन छूने मचली थी कई मौजें, पहरा था किनारे पर शब्बीर की बस्ती में।
2: फिर से पढ़ो।
3: शुक्रिया के असगर का दहन छूने मचली थी कई मौजें, असगर का दहन छूने मचली थी कई मौजें, पहरा था किनारे पर शब्बीर की बस्ती में। और हर फूल था अफसुरदा, हर फूल था अफसुरदा, लर्जा था फलक जिस दम, हर फूल था अफसुरदा, लर्जा था फलक जिस दम, कुर्बान हुए असगर शब्बीर की बस्ती में। हर फूल था अफसुरदा, लर्जा था फलक जिस दम, कुर्बान हुए असगर शब्बीर की बस्ती में। और देखें कि दी थी जो सदा तूने, दी थी जो सदा तूने ए इब्ने अली हक की, दी थी जो सदा तूने ए इब्ने अली हक की, गूंजे है वही अक्सर शब्बीर की बस्ती में, गूंजे है वही अक्सर शब्बीर की बस्ती में। और ये शेर के दावा तो हुसैनी का करते हैं सभी, लेकिन दावा तो हुसैनी का करते हैं सभी, लेकिन दावा तो हुसैनी का करते हैं सभी, लेकिन खुलता है फकत ये दर शब्बीर की बस्ती में।
2: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
3: शुक्रिया के दावा तो हुसैनी का करते हैं सभी, लेकिन खुलता है फकत ये दर शब्बीर की बस्ती में। उसका मकता अर्ज कर रहा हूँ कि मानूस यजीदों की बैयत न कभी करना, मानूस यजीदों की बैयत न कभी करना, ये जान भी जाए गर शब्बीर की बस्ती में, मानूस यजीदों की बैयत न कभी करना, ये जान भी जाए गर शब्बीर की बस्ती में। असगर का दहन छूने मचली थी कई मौजें,

0: राथ किनारे पर शब्बीर की बस्ती में।
1: सुभान अल्लाह, परवेज मानूस साहब ने बहुत खूबसूरत अपना सलाम शब्बीर की बस्ती में रदीफ में बहुत तो उम्दा मजमून तलाशे थे। तो अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब हसन अनजर आप साहब आपसे कि बारगाह शहादत में अपना नजराना गुजारें। जनाबी हसन अनजर साहब,
2: हक पर निसार असगरो अकबर हुसैन के, हक पर निसार असगरो अकबर हुसैन के, मक्तल में सब शरीक बराबर हुसैन के, मक्तल में सब शरीक बराबर हुसैन के। ये अहले कूफा आज कैसे हो गए दुश्मन, ये अहले कूफा आज कैसे हो गए दुश्मन, दुश्मन कल तक थे मेहरबान और जावर हुसैन के। ये अहले कूफा आज कैसे हो गए दुश्मन, कल तक थे मेहरबान और यावर हुसैन के। मालूम था सब लश्करे इब्ने ज़ियाद को,
1: मालूम
2: था सब लश्करे इब्ने ज़ियाद को, मरकब बने थे कौन पैगंबर हुसैन के। मालूम था सब लश्कर इब्ने ज़ियाद को, मरकब बने थे कौन पैगंबर हुसैन के। राह खुदा में दी गई हर चीज रोशन है, राह खुदा में दी गई हर चीज रोशन है। ताबिंद तर हैं लालू जवाहर हुसैन के, ताबिंद तर हैं लालू जवाहर हुसैन के। जिल्लत नसीब उस तरफ अब तक यजीद है, शादाब इधर सर्व सनोबर हुसैन के, शादाब इधर सर्व सनोबर हुसैन के। तागूत की मस्ती कहाँ इस दर्जे बढ़ जाती, तागूत की मस्ती कहाँ इस दर्जे बढ़ जाती। चलते अगर हम नक्श कदम पर हुसैन के, चलते तागूत की मस्ती कहाँ इस दर्जे बढ़ जाती। चलते अगर हम नक्श कदम पर हुसैन के, इज्ज़े बयान दरपेश है अंजर में क्या लिखूं, इज्ज़े बयान दरपेश है अंजर में क्या लिखूं। इतने बड़े एहसान हैं हम पर हुसैन के, इतने इज्ज़े बयान दरपेश है अंजर में क्या लिखूं। इतने बड़े एहसान हैं हम पर हुसैन के, हक पर निसार असगरो अकबर हुसैन के, मक्तल हैं सब शरीक बराबर हुसैन के।
1: जनाबी हसन अनजर साहब अपना आजिज़ाना और बहुत पुर इंकसार सलाम पेश कर रहे थे बारगाह शहादत में। अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ डॉक्टर शफक सोपोरी साहब।
3: सलाम के चंद अशार पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ।
1: इरशाद,

0: देने की वो रस्म निभाएंगे क्या?
1: सर देने की क्या रस्म
0: निभाएंगे वो,
2: निभाएंगे
1: निभाएंगे वो जिनसे दस्तार का एक पेच संभाला नहीं जाता। सर देने की क्या रस्म
0: निभाएंगे वो जिनसे,
1: निभाएंगे वो जिनसे
0: दस्तार का एक पेच संभाला नहीं जाता।
1: दस्तार का एक पेच
0: संभाला
1: नहीं जाता। हमसे गमे
0: शबीर संभाला नहीं जाता।
1: जब

0: जब सुलह के नियत से निकलता है बहादुर।
1: जब सुलह की नियत
0: निकलता है बहादुर।

0: हंजल सरो सामान में
1: डाला
0: नहीं जाता।
1: क्या बात है, क्या बात है,
0: शुक्रिया। जब सुल्तान की नियत से निकल

0: خنجر سر و سامان میں,
1: سر و سامان میں ڈالا نہیں جاتا, ہم سے غم شفیع.

0: से
1: निकाला बहुत
0: अच्छा,
1: नहीं कितना उम्दा सलाम है, बहुत ही बर्जस्ता
0: जाता
1: सलाम है,
0: फिर
1: तीर बहुत
0: भी सीने से
1: निकाला नहीं जाता,
0: निकाला नहीं जाता हमसे
1: गमे
0: शब्बीर,
1: संभाला नहीं जाता।
0: शेर अर्ज किया है कि तारीख बताती है के अजमत के उफुक पर,
1: तारीख बताती है कि अजमत के उफुक पर,
0: तारीख बताती है के अजमत के उफुक पर इस तरह से सर सब का उछाला नहीं जाता। और ये शेर सामीन हजरात भी और हाजरीन हजरात भी जरा गौर फरमाएं इस शेर पर कि हर घर की रिवायत नहीं है जुल्म से लड़ना,
1: सही सही,
0: हर घर की रिवायत नहीं है
1: जुल्म से लड़ना,
0: जुल्म से लड़ना हर घर में शहीदों को तो
1: बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। फिर से इनायत कीजिए
0: हर घर।

0: جس شخص کے ہو دل میں خدائی کا بھروسہ،
1: جس شخص کے ہو دل میں،
0: جس شخص

0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हर घर की रवायत नहीं है जुल्म से लड़ना, हर घर में शहीदों को तो पाला नहीं जाता। जब सुलह की नीयत से निकलता है बहादुर, खंजर सरो सामान में। बहुत खूबसूरत सलाम हमें इनायत कर रहे थे जनाबे डॉक्टर शफक सोपोरी साहब। अब अगर इजाज़त दो तो मैं अपने सलाम के कुछ अशार अर्ज़ किया है। एक सलाम के कुछ, ये जो सब हुस्न व हुनर हरफ व नवा रख

0: रखते हैं हम,
1: रखते हैं
2: बहुत अच्छे,
0: ये जो सब हुस्नो हुनर हर्फो नवा रखते हैं हम, ऐ शहीदे करबला तेरी अता रखते हैं। ये जो सब हुस्नो हुनर हर्फो हर्फो नवा रखते हैं हम, ऐ शहीदे करबला तेरी अता रखते हैं हम। ये शेर की मोजो गिरदाब बलाम है बादबानी के लिए, मोजो गिरदाब बलाम है बादबानी के लिए, आयत तथहीर जैनब की रिदा रखते हैं हम। मोजो गिरदाब बलाम है बादबानी के लिए, आयत तथहीर जैनब की रिदा रखते हैं हम। और बेनवाओं की कोई औकात ही क्या पूछना, बेनवाओं की कोई औकात ही क्या पूछना, हाँ बड़े हैं यूं कि दिल में गम भरा रखते हैं। बेनवाओं की कोई औकात ही क्या पूछना, हाँ बड़े हैं यूं कि दिल में गम भरा रखते हैं हम। और वक्त से कोई कहे जाकर कि हो अब बेनयाम, वक्त से कोई कहे जाकर कि हो अब बेनयाम, अपनी रग रग में लहू आशूर का रखते हैं। वक्त से कोई कहे जाकर कि हो अब बेनयाम, अपनी रग रग में लहू आशूर का रखते हैं हम। और एहतजाज जुल्म या तशहीर हक के वास्ते, एहतजाजे जुल्म या तशहीर हक के वास्ते, बेमुहाबा मजलिसो मातम रवा रखते हैं। एहतजाजे जुल्म या तशहीर हक के वास्ते, बेमुहाबा मजलिसो मातम रवा रखते हैं। एक और सलाम के कुछ अशआर। ए इब्ने अली जोत जला तेरे लहू की, ए इब्ने अली जोत जला जोत जला तेरे लहू की, महसूस हुई सबसे जुदा तेरे लहू। ए इब्ने अली जोत जला तेरे लहू की, महसूस हुई सबसे जुदा। और हर रोज लिए शबीब साहब, हर रोज लिए कश्मकशे तेगो गुलू सी, हर रोज लिए कश्मकशे रोज तेगो गुलू सी, खिलती है सरे शाम हिना तेरे लहू की। हर रोज लिए कश्मकशे तेगो गुलू सी, खिलती है सरे शाम हिना, हर याद हुई खत्म बजुज याद मुहर्रम, हर याद हुई खत्म बजुज याद मुहर्रम, कायम रहेगी गूंज सदा तेरे लहू की। और जिस समत में शफक साहब, जिस समत में पानी का तसव्वुर भी न होवे, जिस समत में पानी का तसव्वुर भी न होवे, अफसोस तरावीश है रवा तेरे लहू की। जिस समत में पानी का तसव्वुर भी न होवे, अफसोस तरावीश है रवा तेरे लहू की। और आखिरी शेर की, पुर नूर जबीनों में मचलते हुए सजदे, पुर नूर जबीनों में मचलते हुए है दादू दहिश और अता तेरे लहू की। ऐ इब्ने अली जोत जला तेरे लहू की, महसूस हुई सबसे जुदा। हमारे बुजुर्गानी अदब में जनाबी मोहम्मद अशरफ नाजिर साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, माशाल्लाह सआदत मंदी हासिल करते रहे हैं इन महफिलों में, तो आज भी तशरीफ़ रखते हैं। अब मैं इनसे गुजारिश करूँगा जनाबी मोहम्मद अशरफ नाजिर साहब आपसे कि अपना सलाम अकीदत बहुजूर सरकारी शहादत पेश करने की सआदत हासिल करें।
2: अरे कुर्बाई अर्ज़ है, हुक्म खुदा है उनकी मवद्दत करो बहाल, हुक्म खुदा है उनकी मवद्दत करो बहाल, अहकाम मुस्तफ़ा का रखो हर घड़ी ख्याल।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
2: अहकाम मुस्तफ़ा का रखो हर घड़ी ख्याल, अरफा है शान आले नबी दो जहान में, अरफा है शान आले नबी दो जहान में, मैं और मदह हजरत शब्बीर क्या मजा,
0: बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
2: मैं और मदह
0: फिर पढ़िए, ये कथा फिर पढ़िए, बहुत अच्छा।
2: हुक्मे खुदा है उनकी मवद्दत करो बहार,
0: उनकी मवद्दत करे,
2: अहकाम मुस्तफ़ा का रखो हर घड़ी ख्याल, अरफा है शान आले नबी

0: डूबा है आफ्ताब
1: आफ्ताब
0: दिन धारे करबला में यहाँ डूबा है आफ्ताब सजदे में चांद और सितारे तमाम थे।
2: चांद और सितारे तमाम थे।
0: फर्श नमनाक फर्श
2: नमनाक
0: अर्श भी नमनाक फर्श नमनाक अर्श भी नमनाक सीना हर दर्द मंद का है चाक। फर्श नमनाक अर्श भी नमनाक सीना हर दर्द मंद का है चाक। पाक मासूम खास हक वाले पाक मासूम खास हक वाले सामने उनके झुकते हैं अफलाक।
2: सामने उनके झुकते हैं अफलाक।
0: सदा बातिल हुआ है हक से बरहम सदा
3: बातिल हुआ है हक से बरहम
0: बातिल हुआ है हक से बरहम वो हक है जो नहीं होता है सरखम। वो हक है जो नहीं होता है सरखम। हुआ है जज्ब खूने पाक इसमें हुआ है जज्ब खूने पाक इसमें है खाके करबला जख्मों का मरहम। है खाके करबला जख्मों का मरहम। हुसैनी मदरसा कहते हैं इसको हुसैनी
2: मदरसा
0: मदरसा कहते हैं इसको जो दरसे दीस देता है जहां। हुसैनी मदरसा कहते हैं उसको जो दर से जीस देता है जहां को। सदाकत वो लहू की धार है धार सदाकत
1: वो
0: लहू की धार है धार गिरे धरती पे छूले आसमान को। सदाकत वो लहू की धार है धार गिरे धरती पे छूले आसमान को।
2: जज़ाकल्लाह जनाब सुल्तान हक शहीदी साहब। अब मैं एक और अपने बुजुर्ग दोस्त मशाक शायर जनाब हमदम कश्मीरी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो हुसैन अंसारी हुसैन की खिदमत में अपना सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। जनाब हमदम कश्मीरी
4: चंद अशआर नज़्र हुसैन अलैहिस्सलाम अर्ज किया है। पुर असर है बहुत बयान हुसैन पुर असर है बहुत
2: बयान
4: हुसैन है जुबान नबी जुबान हुसैन पुर असर है बहुत बयान हुसैन है जुबान नबी
2: जुबान
4: हुसैन। आओ जी जान से करें मातम
2: आओ जी जान
4: आओ जी जान से करें मातम और जमा हैं सारे आशिकाने हुसैन। आओ
2: जी
4: जान से करें मातम
2: और
4: जमा हैं सारे आशिकाने हुसैन। और जर्रा जर्रा लहू लहू खुशबू
2: जर्रा
4: जर्रा लहू लहू खुशबू और करबला है के गुल सितारे हुसैन।
2: फिर भी
4: लहू लहू खुशबू
2: करबला है
4: करबला है के गुल सितारे हुसैन। और गम नहीं है जमीन वालों का
1: गम नहीं है
4: जमीन वालों का और मेरे सर पर है
2: आसमान हुसैन। बहुत उम्दा बहुत उम्दा
4: गम नहीं है जमीन वालों का
2: क्या इशारा है
4: और मेरे सर पर है
2: आसमान
4: हुसैन। हुसैन और छाप छोड़ी हर एक जमाने पर
2: छाप
4: छोड़ी हर एक जमाने पर है तो छोटा सा कारवाने हुसैन।
2: बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा
4: जमाने
2: बहुत अच्छा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
4: छोटा सा कारवाने हुसैन।
5: ये शेर बहुत खूब
4: आसमानों में धूल उड़ती है
2: आसमानों
4: में धूल उड़ती है और कब से गुजरा है
1: कारवाने
4: आसमानों में
2: बहुत उम्दा है बहुत उम्दा है
4: कब से गुजरा है कारवाने हुसैन।
5: बहुत बेहतर शेर
4: आस चुकिया भूख और प्यास से निढाल मगर بھوک اور پیاس سے نال مال

0: या G7 लीडरों ने आलमी सतह पर दरपेश चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए कई डिक्लेरेशन की तैयार इख्तियार। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का दौरे बांडीपोरा, 100 करोड़ रुपए लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्ट कौम के नाम वक्फ। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क की सलामती के साथ कोई भी समझौता न करने का दोहराया अज्म। और जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमद से जारी। खबरें तफसील से। G7 लीडरों ने आलमी इस्तेकाम सलामती से मुतालिक इशराक को बढ़ावा देने, नीज मुनज़म जराइम का मुकाबला करने के लिए मुतअद्दिद डिक्लेरेशन इख्तियार की हैं। एक बयान में इन लीडरों ने अमरीका और ईरान के दरमियान हुए मुआहदे का खैर मकदम किया है। उन्होंने इस मुआहदे को इलाके में तनाव को कम करने का एक अहम मौका करार दिया। G7 एक और एलआईएम के जरिए ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के अज़्म को दोहराते हुए कहा कि यह बिद्दत कौमी सलामती, सेहत आमा और इक्तसादी इस्तेकाम के लिए एक बड़ा खतरा है। लीडरों ने आलमी सतह पर दरपेश कई दीगर चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए मुनज़्ज़म लाही अमल इख्तियार करने पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के शहर एवियन में जारी G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए अपने दौरे के दूसरे दिन आज आला सतह के कई आउटरीच प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं। अलबत्ता सबकी तवज्जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी दोतरफा मुलाकात पर है, जो आज शाम मुनाकिद होगी। बातचीत के दौरान उम्मीद है कि दोनों रहनुमा बहुत से शोबों में भारत अमरीका दोतरफा तआवुन को मजीद मुस्तहकम बनाने के तौर तरीकों और बाहमी मफाद के कलीदी नौवियत की इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बांडीपोरा का दौरा करके जिले में जारी तरक्याती सरगर्मियों और अवामी फलाह बहबूद के लिए जारी इकदाम का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने 100 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा और कई एक का इफ्तिताह किया। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक सड़क राबितों, तिब्बी निगहताश्त, तालीम, पानी और दही तरक्की के शोबों से है। एक अवामी इज्तम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर के तमाम खितों की मसावी तरक्की को यकीनी बनाने की वादबंद है। उन्होंने कहा कि दूर उफ्तादा इलाकों में लोगों के मियारी हयात में बेहतरी लाना हुकूमत की अवली तरजीहात में शामिल है। बाद में जिला इंतजामिया के अफसरों की एक मीटिंग के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोजेक्टों की पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि दहशत पसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से लेकर बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर, नील सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फैसलाकुन कार्रवाइयों से भारत ने यह पैगाम वाजह कर दिया कि मुल्क की सलामती के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दिफा ने कहा कि भारत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दानिशमंदाना क्यादत में कौमी सलामती के बुनियादी ढांचे में मजबूत तब्दीली लाई। उन्होंने कहा कि दिफा के शोबे में आत्मनिर्भरता लाने के मुल्क अज़्म ने घरेलू सलाहियतों को तकवियत बख्शने के साथ साथ फौज की तमाम शाखों में जदीदकारी लाने में भी मदद की है। उन्होंने पिछले 12 बरसों के दौरान दिफा के शोबे में मुल्क के सफर के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुलरहीम राथर ने चाडोरा के नेगू ब्रेनवार इलाके में हाल ही में पेश आए सड़क हादसे में जान भाग हुए शख्स के लवाकिन के साथ इजहार ताजियत और हमदर्दी करते हुए कहा कि इस मुश्किल वक्त में हुकूमत मुतासर कुंबे को हर मुमकिन ताउन देने की वादबंद है। जम्मू कश्मीर को मनुष्यात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमद से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मनुष्यात मुखालिफ प्रोग्रामों और इकदाम की निगरानी कर रहे हैं। मनुष्यात के खिलाफ LG का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदाम और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से वादी के एक सरकारी मुलाजिम गुलाम रसूल शाह ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: ये जो मनुष्यात की लात पड़ी है इसमें बेशुमार घराने तबाह हुए, यानी उनके जो अपने असासे थे, अटैचमेंट भी हुई, सजा भी हुई, खानदानों के खानदान तबाह बर्बाद हो गए। हमारी यही कोशिश रहती है कि नौजवान तबका पढ़ाई की तरफ रागिब हो जाए, कम से कम मनुष्यात से दूर रहे, अपने आप को भी, अपने खानदान को भी और अपने समाज को भी ये जो वबा है इससे बचाए।
0: پورے جموں کشمیر میں نشہ مکت ابھیان کے تحت ڈرگ سمگلروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے ساتھ ساتھ بیداری پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ کلگام ضلع میں پچھلے دو مہینوں کے دوران 100,000 سے زائد بیداری پروگرام منعقد کیے گئے اور 10 انہدامی کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ ہمارے کلگام کے نمائندے خورشید پڈرو نے ضلع کے ترقیاتی کمشنر کے حوالے سے خبر دی ہے کہ ضلع میں کارروائی کے دوران

0: 90 मनुष्यात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। आज से मुहर्रमुल हराम के मुकद्दस महीने की शुरुआत के साथ ही नए कमरी साल 1448 हिजरी का आगाज हो गया है। इस मुकद्दस महीने के दौरान मैदानी कर्बला के शहीदों ने इस्लाम की सरबुलंदी और हक व सदाकत के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। इस महीने की मुनासिबत से आजादारी और हुसैनी मजालिस का सिलसिला भी शुरू हुआ, जिनके दौरान नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शहदा को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मुहर्रमुल हराम की फजीलत और बरकात बयान करते हुए मौलाना मियां आदिल नूरानी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
1: मुहर्रमुल हराम का महीना सिर्फ इस्लामी साल का पहला महीना ही नहीं बल्कि तारीख के अजीम शान हक व बातिल के मौरके की निशानी भी है। यह महीना शहादत हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अनु के फलसफे को उजागर करता है। गम हुसैन और शहादत हुसैन रदी अल्लाह तआला अनु के मकसद व अहमियत का पैगाम भी आम करता है। दुनिया का हर मुसलमान नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का रंजो गम अपने दिल में रखता है, मगर कम ही ऐसे हैं जिन्होंने इस मौरके का असल मफहूम व मकसद समझा और फिर इस मकसद को जिंदा रखने की जिद्दोजहद की। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अनु ने यजीद से जंग अपनी जाती मुफाद के लिए या खानदान की बका के लिए नहीं की थी, बल्कि इस्लामी हुकूमत में बदलते रुझानात को रोकने के लिए की थी।
0: उमर सारफिन के वजीर सतीश शर्मा ने कल श्रीनगर के कई इलाकों का दौरा करके मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में किए गए इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने आजादारों के लिए तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने झीले डल के अंदरूनी इलाकों का दौरा करके वहां जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। जड़ी बल के MLA तनवीर सादिक और जिला इंतजामिया के कई सीनियर अफसरान भी उनके हमराह थे। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लो ने इंतजामिया के आला अफसरों की एक मीटिंग तलब करके 21 जून को मनाए जाने वाले बैनुल अक्वामी योगा डे के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने योगा के पैगाम को आम करने के साथ साथ इस मुनासिबत से जम्मू कश्मीर के कुदरती हुस्न और सियाहती वसत को भी फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने योगा डे की तकरीबात के ऐसे इनेकाद के लिए मुख्तलिफ महकमों के दरमियान करीबी तालमेल पर जोर दिया। दरी असना चीफ सेक्रेटरी ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक जायजा मीटिंग में यूटी से टीबी के खात्मे की कोशिशों को मजीद आगे बढ़ाने की हिकमत अमली को उजागर किया। शुपयां के डिप्टी कमिश्नर शशिर गुप्ता ने डिस्ट्रिक्ट लेवल टेलीकॉम कमेटी की एक मीटिंग के दौरान जिले में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्याती पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने शुपयां में टेलीकॉम के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और नेटवर्क कनेक्टिविटी को मजीद बढ़ाने से मुतालिक अहम अमूर पर गौरखाज किया। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट, जो कि पहलगाम एक्सिस के यात्रा ऑफिसर भी हैं, ने FCI गोदाम मीर बाजार और वॉलनट फैक्ट्री काजीगुंड में कायम यात्रा ट्रांजिट कैंपों का दौरा करके आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए पीने के साफ पानी और तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। डायरेक्टर सेरिकल्चर कश्मीर इजाज अहमद भट्ट ने आज श्रीनगर में सिल्क समग्रा के तहत 3 रोजा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, जिसमें काफी तादाद में श्रीनगर जिले के किरमकश हिस्सा ले रहे हैं। डायरेक्टर मौसूफ ने इस मौके पर किरमकशों पर जोर दिया कि वो अपने आप को रेशम साजी के जदीद तौर तरीकों से रोशनास कराएं ताकि रेशम की पैदावार और मियार में इजाफा हो सके। चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर और डायरेक्टर मर्दमशुमारी ऑपरेशन जम्मू कश्मीर और लद्दाख अमित शर्मा ने प्रिंसिपल मर्दमशुमारी ऑफिसर कुपवाड़ा श्रीकांत सूसी के साथ एक मीटिंग के दौरान कुपवाड़ा में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान अमित शर्मा ने साइबर फ्रॉड में मुलविस मुजरिमों के खिलाफ अवाम की बेदारी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म होता है। आकाशवाणी श्रीनगर से अगला खबरनामा सहफर 4:20 पर पहाड़ी में नश होगा। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
2: समय आप समाप्त कर रहे थे उर्दू खबरों का बुलेटिन। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर सहफर के ठीक 4 बज रहे हैं। आइए समाप्त करते हैं आज का पहाड़ी प्रोग्राम।

0: तत्त पेश आ रही मुश्किलों का चैलेंजा का मुकाबला करने वास्ते लड़ सारी डिकलेरेशन कीतियां इख्तियार वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला हुन अज कीता बांडीपुरा का दौरा 100 करोड़ रुपए लागत आए तरक्याती प्रोजेक्टों को किया कौम के नाम वक्फ वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह सो मुल्क की सलामती नाल कोई भी समझौता न करने का दोहराया अजम और जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मी चल रही जोरों तक हूँ पेश हैं इन्हों दूसरी खबरों की तफसील G7 लीडरों सुन आलमी इस्तेकाम सलामती के मुतालिक इश्तराक को बढ़ावा देने नेज मुनज़म जुर्मों का मुकाबला करने वास्ते लड़ सारी डिकलेरेशन इख्तियार कीतियां एक बयान भी इन्होंने लीडरों सुन अमरीका त ईरान के बशकार हुए मुआदे को जी आया को आख्या उन्होंने सुन इस मुआदे को इलाके बिच तनाव को काट करने का एक अहम मौका करार दिता G7 सुन एक और अलामिया के जरिए ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने के अजम को दोहरादे हुए आखिर जी ए बिदत कौमी सलामती सेहती आमा इकतसादी इस्तेकाम वास्ते बड़ा खतरा है लीडरों से आलमी सतह तक पेश आ रहे कुछ दुनिया चैलेंजा का मुकाबला करने वास्ते मुनज़म लाहे अमल इख्तियार करने का भी जोर दिता वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के शहर एवन बिच चल रही G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस बिच वास्ते अपने दौरे के दुए ध्याड़े अज उच्ची सतह दे लड़ सड़े आउटरीच प्रोग्रामों भी शिरकत कर रहे हैं अलबत् सभा की नज़र अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप नाल उनकी दो तरफा मुलाकात है जिड़ी अज सही आने वाली है गलबात के दौरान उम्मीद है दो रहनुमा लड़ सारे शोबों में भारत अमरीका दो तरफा तावन को और मुस्कम करने के तौर तरीकों का आपसी मफाद के कलीदी नोयत के इलाकाई आलमी मामलों का भी गलबात कर सन वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सुन अज बांडीपुरा का दौरा करका जिले में चल रही तरक्याती सरगर्मियों तो लोगों की फलाह बहबूद वास्ते किए जुड़ रहे इकदाम का जायजा किया दौरे के दौरान उन्होंने सुन 100 करोड़ रुपये लागत आए प्रोजेक्टों का बटा लाया तो कुछ एक इफ्तिताह भी किया इन्होंने प्रोजेक्टों का ताल्लुक सड़क राबतियां सेहत सहूलत तालीम पानी ग्राई तरक्की के शोबों नाल है लोगों के इजमा नाल खिताब करद वज़ीर आला सुन आखे जे मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर के सारे खितों की बराबर की तरक्की को यकीनी बनाने की वादाबंद है उन्होंने सुन आखे जे दूर दराड़े इलाकों में लोगों की जिंदगी भी बेहतरी आना हुकूमत की अवलीन तरजीहों में शामिल है बाद में जिला इंतजामिया के अफसर नाल एक मीटिंग के दौरान उन्होंने सुन लड़ सारिया स्कीम और प्रोजेक्टों की पेशरफ के बारे में जानकारी की दिफा के मरकजी वजीर राजनाथ सिंह आखिया जे दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी किनका बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर त सर्जिकल स्ट्राइक जिया फैसलाकुन कार्रवाइया थी भारत सुन इस सनेहा साफ कर दिता है जो मुल्क की सलामती नाल कोई भी समझौता ना किया गया सी एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दिफा सुन आखिया जे भारत सुन वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दानिशमंदाना क्यादत कौमी सलामती के बुनियादी ढांचे में मुस्बत तब्दीली आँधी उन्होंने सुन आखिया जे दिफा के शोबे में आत्म निर्भरता आने के मुल्क के अजम सुन घरेलू सलाहितों को वाधा देने के नाल नाल फौज दी सारी शाखा बिच जदीदकारी आने बिच मदद मिली है उन्होंने सुन पिछले 12 साल के दौरान दिफा के शोबे बिच मुल्क के सफर के लड़ सहरे पहलुओं को उजागर किया जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुलरहीम रासा सुन चाडूरा दे निंगू बरनवार इलाके बिच हाल ही हुए सड़क हादसे में हलाक हुए नफर के लवाहकीन के नाल ताजियत और हमदर्दी करद आखे जे इस मुश्किल वेले बिच हुकूमत मुतासर हुए कुंभे को हर मुमकिन तावन देने की वादाबंद है जम्मू कश्मीर को नशे की लानत थी छुटकारा दिलाने वास्ते 100 दिहाड़े का नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां जोरों नाल चल रही हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद मंशियात के खिलाफ प्रोग्रामों के इकदाम की निगरानी कर रहे हैं मंशियात के खिलाफ LG का स्नेहा
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट उसका ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड आधार नंबर उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा NDPS एक्ट के तहत उसकी चलाचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा
0: इस बिदत को जड़ों मुकाए वास्ते किए जुड़े इकदाम लोगों की जिम्मेदारियों के तालुक नाल वादी के एक सरकारी मुलाजम गुलाम रसूल शाह सुन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर नाल गल करदियां आख्या
2: ये जो मंशियात की लात पड़ी है इसमें बेशुमार घराने तबाह हुए यानी उनके जो अपने असाशे थे अटैचमेंट भी हुई सजा भी हुई खानदानों के खानदान तबाह बर्बाद हो गए हमारी यही कोशिश रहती है कि नौजवान तबका पढ़ाई की तरफ रागिब हो जाए कम से कम मंशियात से दूर रहे अपने आप को भी अपने खानदान को भी और अपने

0: समाज को भी ये जो वबा है इससे बचाए।
1: पूरे जम्मू कश्मीर भी नशा मुक्त अभियान के तहत ड्रग स्मगलर के खिलाफ डाढ़ी कार्रवाई करने के नाल नाल बेदारी प्रोग्रामों का सिलसिला भी चल रहा है। कुलगाम जिले में पिछले दो महीनों के दौरान 1 लाख से ज़्यादा बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद किए गए और 10 मकान चाड़ने की कार्रवाइयां भी की गई। अस्ते कुलगाम के नुमाइंदे खुर्शीद पटरू सुन जिले के तरक्याती कमिश्नर के हवाले नाल खबर दी है जो जिले में कार्रवाई के दौरान 90 नशा बेचने वाले नफरों को गिरफ्तार किया गया है। एक खबरनामा आकाशवाणी श्रीनगर थी पेश की जुड़ रहा है। खबरें तुसी आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH तक भी सुन सकते हो। आई थी महरमुल हराम के पाक महीने की शुरू होने के नाल ही नवे कमरी साल 1448 ईस्वी का आगाज होया। इस पाक महीने के दौरान करबला के मैदान में शहीदा सुन इस्लाम दी सरबुलंदी और हक सदाकत वास्ते अपनियां कीमती जाना दित्तियां सियां। इस महीने की मुनासबत नाल आज़ादारी ते हुसैनी मजलिसां दा सिलसिला भी शुरू होया, जिस दौरान नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दुए शहीदां को खराज अकीदत अदा किए जुल रहा है। महरूम हराम की फजीलत ते बरकत बयान करदियां मौलाना मियाँ आदल नूरानी सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर नाल गल करदियां आख्या,
2: मुहर्रम अल हराम का महीना सिर्फ इस्लामी साल का पहला महीना ही नहीं बल्कि तारीख के अजीम शान हक व बातिल के मौके की निशानी भी है। यह महीना शहादत हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के फलसफे को उजागर करता है। गमे हुसैन और शहादत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के मकसद व अहमियत का पैगाम भी आम करता है। दुनिया का हर मुसलमान नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का रंजो गम अपने दिल में रखता है, मगर कम ही ऐसे हैं जिन्होंने इस मौके का असल मफहूम व मकसद समझा और फिर इस मकसद को जिंदा रखने की जिद्दोजहद की। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद से जंग अपनी जाती मुफाद के लिए या खानदान की बका के लिए नहीं की थी बल्कि इस्लामी हुकूमत में बदलते रुझानात को रोकने के लिए की थी।
1: उमर सार्फीन के वजीर सतीश शर्मा सुन श्रीनगर दियाँ मुझ सारियाँ जाइयों का दौरा करका महरूम हराम के सिलसिले भी किए जुड़ रहे इंतजाम का जायजा किया। उन्होंने सुन आजादारा वास्ते बुनियादी सहूलत देने को यकीनी बनाने का जोर दिता। वजीर मसूफ सुन डल झील के अंदर के इलाकों का दौरा करका उत चल रहे तरक्याती कामों की पेशकश का भी जायजा किया। जड़ी बल के MLA तनवीर सादक और जिला इंतजामिया के कुछ और सीनियर अफसर भी उनके नाल आसे। चीफ सैकटरी अड्डू डल्लू सुन इंतजामिया के आला अफसर की एक मीटिंग टाका 21 जून को मनाए जुलने वाले बैन अवी योगा डे वास्ते की जुल दिन तैयारियों का जायजा किया। चीफ सैकटरी सुन योगा के सन्या को आम करने के नाल नाल इस मुनासबत नाल जम्मू कश्मीर के कुदरती हुसन और सियाती वसत को भी वाधा देने की जरूरत जोर दिता। उन्होंने सुन योगा ध्याड़े दिन तकरीबों को सोहने तरीके मनाए वास्ते लड़ सारे महकमे के बिशकार आपसी तालमेल का जोर दिता। इस बिशकार चीफ सैकटरी सुन प्रधानमंत्री TB मुक्त अभियान के तहत एक जायजा मीटिंग में UTB TB को जड़ों मकाए वास्ते कोशिशों को और अगा बधाने की हिकमत अमली को उजागर किया। शोपियां के डिप्टी कमिश्नर शिशिर गुप्ता सुन डिस्ट्रिक्ट लेवल टेलीकॉम कमेटी की एक मीटिंग के दौरान जिले में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के तरक्याती पेशरफ्त का जायजा किया। उन्होंने सुन शोपियां में टेलीकॉम के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और नेटवर्क कनेक्टिविटी को और बढ़ावा देने के मुतालिक अहम अमूर ता गलबात की थी। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मईदीन भट्ट जेडे के पहलगाम एक्सेस के यात्रा अफसर भी हैं सुन FCI गोदाम मीर बाजार और वालनट फैक्ट्री काजी गुंड के बिच बढ़ाई गई यात्रा ट्रांजेंट कैंपा का दौरा करके आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा सिलसिले में किए जुड़े इंतजामों का जायजा किया। इस बिचकार उन्होंने सुन श्रद्धालुओं वास्ते पीने के साफ पानी सहित सहूलत रखने को यकीनी बनाने का जोर दिता। जम्मू कश्मीर की हुकूमत जल जीवन मिशन को दुए मरहले को नाफज करने वास्ते जल शक्ति की वजारत न मिलकर इंफाम इनाम दस्खत कर सी। इस सिलसिले में जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना सुन आख्या जे काबीना सुन इस मनसूबे को मंजूरी दी है, जिसकी फ्लैगशिप स्कीम के दुए मरहले में जम्मू कश्मीर के बगैर किसी मुदाखलत के शमूलियत यकीनी बन सी। इस नाल ही पहाड़ी खबरनामा मुक गया। आकाशवाणी श्रीनगर थी अगला खबरनामा 5:50 का गोई जबान भी नश हो सी। दियो इजाजत, खुदा हाफिज।
3: یہ آکاشوانی سری نگر میڈیم ویو زہ تر 8.8 میٹر تو FM 103.5 میگا ہرٹزن پہ سمن ولو مرثیہ بوزو مضمون سوداگری پیش کرن علی محمد ڈار تو تہذی
4: برشان محمد و آل محمد صلوات.
5: اللہ.

0: Holy Muhammad.
1: Muhammad. Chunma.

0: поспалело.
1: Магомед болі.
0: Ах, два здоров! Ось ще ща!

0: मुहर्रम का महीना में बड़ा वाक्या हुआ है इस्लाम की तारीख में, उस बारे भी हम गलबात आने वाला प्रोग्राम में भी करेंगा। अगे हमारे कुल नवा है, प्रोग्राम का शुरू में आओ सुन लिया।
1: हको सबक सिखावे शहादत हुसैन की,

सच वास्ते सिर कटा देनो देखो कैड करामा तो सैन की है। दयालु का बाल कै शाद जगवा गई लंग बारा तो सैन की है। हक वास्ते

हक वास्ते जान कुर्बान करके गियो चाड़ तोड़ परीत नारे हुए लाख करोड़ सजा मारा सचा रब का यो सुमीत नारे आखर हक की हुए जीत मुड़के पुले कौन से।

0: के वो जुल्म से तुमको दूर हो सरकार मदीना के
1: सदके।
0: वे जाबर हाकम अरब का था जिड़ा जिंदा कोए था बचिया ना खत्म जग ते वो दस्तूर हो सरकार मदीना के सदके। नाज शरीफ का शेर है कि व धरती पाक मदीना की व धरती पाक मदीना की जड़ी धड़कन मेरा सीना की वे अर्ज सुने मस्कीना की है उम्मत का गमख्वार नबी कुल नबिया का सरदार नबी। व धरती देख प्यारा की बल होए जान बीमारा की उत बख्शिश ओ गुनहारा की गया अर्शा ते लंग पार नबी कुल नबिया का सरदार नबी। व धरती देख प्यारा की बल होए जान बीमारा की उत बख्शिश ओ गुनहारा की गया अर्शा ते लंग पार नबी कुल नबिया का सरदार नबी। रबा दसिए उन बहारा ना रबा दसिए उन बहारा ना उन रहमत का चमकारा ना उन सोना दीद निजारा ना मेरी मुक्के इंतजार नबी कुल नबिया का सरदार नबी। रबा सदको करबला शहीदा को रबा सदके करबला शहीदा को चन मदीने देखूं ईदा को देखूं जाके मेलो दीदा को मेरी सुन ले जार पुकार नबी कुल नबिया का सरदार नबी। उत है गम ख्वार गरीबा का उत है गम ख्वार गरीबा का है आकम आप तबीबा का उत मेला शाद नसीबा का मिन सदले उस दरबार नबी कुल नबिया का सरदार नबी। एक नाथ शरीफ का चंद शेर हो रहे हड्डी कान छोड़े ओ मुका मेरा आका मीना भी मदीने बुला मेरा आका

हूँ सब कुछ दियूं कुमा मेरा का हड्डी कान छोड़े हो मुका मेरा का मीना भी मदीने बोला मेरा का।

0: जो अल्लाह का नूर ना मेरे हाथ दियो, सल्लो अल्लाह का नूर ना मेरे हाथ दियो, सारी दुनिया मीमू नूरो नूर हुई, सारी दुनिया मीमू नूरो नूर हुई, चलो मके मदीने हिस्सो दौड़ लियो, चलो मके मदीने हिस्सो दौड़ लियो, जत्थो चंद आसमानो चोरी आन पियो, सारी दुनिया को अंधियारो दूर गयो, ते इसके नाली आज का इस मुशायरा नाम खत्म करा, इसके बीच जो जिन्होंने अपना कलाम सुनाया शायरा ने, वे है वाजिद कैफ, गुलाब दिन जजा, मोहम्मद अदरीस शाद, ते बंदो नाचीज नसीम पुंशी।
1: मोहम्मद इकबाल मलंगामी की आवाज में नात शरीफ सुन लिया।

हर एक चीज है उनकी है अरज़ो समाय उनको हर एक

0: समय आप गोजरी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। यह आकाशवाणी श्रीनगर है। अब गोजरी में खबरें नश्र होंगी।
1: सामीन आदाब, 5:50 हो गए। यो आकाशवाणी को श्रीनगर स्टेशन है। गोजरी खबरनामा नाल हूं रियाज अहमद बिजाट। पहला इस वक्त तक की खास खबरों पर एक नजर। G7 लीडर ने आलमी सतह पर दरपेश चैलेंजेस को मुकाबलो करने वास्ते कई डिक्लेरेशंस की इख्तियार। वजीर आला उमर अब्दुल्ला को दौरे बांडीपुरा, 100 करोड़ रुपया लागत आला तरक्याती प्रोजेक्टा न कियो कोम के ना वकफ। वजीर दिफा राज

0: ਊਰਜਾ ਚੈਲੰਜਸ ਕੋ ਮੁਕਾਬਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਨਜ਼ਮ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੋ। वजीर अजम नरेंद्र मोदी फ्रांस का शहर इवियान में जारी G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस वास्ते एक अपना दौरा का दूजे दिन आज आला सतह का कई आउटरीच प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं। अलबत्ता सबकी तवज्जा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नाल उनकी दो तरफा मुलाकात पर है जड़ी आज शाम होगी। गलबात के दौरान इन उम्मीद है जे दो रहनुमा मुझ सारा शोभा में भारत अमरीका दो तरफा ताउन और मजबूत बनाउन का तौर तरीका पर आपसी मफाद का कलीदी नोयत का अलाकाई और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल करेगा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बांडीपुरा को दौरों करके जिला में जारी तरक्याती सरगर्मियां और अवामी फलाह बहबूद वस्ते जारी इकदाम को जायजा लियो। दौरा के दौरान उन्होंने 100 करोड़ रुपया लागत आला प्रोजेक्टों की बुनियाद रखी और कई योजना शुरू की। इन प्रोजेक्टों को ताल्लुक सड़क राबता तिबी निगहदाश्त तैलीम पानी और ग्राई तरक्की का शोबा नाल है। एक अवामी इज्तिमा ना खिताब करता वजीर आला ने कहो जो मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर का तमाम खितना की बराबर तरक्की यकीनी बनाने की वादाबंद है। उन्होंने कहो जो दूर दूर इलाका में लोगों का मियारे हयात में बेहतरी आनो हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बाद में जिला इंतजामिया का अफसरों की एक मीटिंग के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोजेक्टों की पेशरफ्त बारे में जानकारी हासिल की।
1: कहाँ खामियां रही, कहाँ बेहतरी लाने की जरूरत थी, उस हवाले से बात हुई। और यहाँ पे जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, ऑनरेबल MLA गुरेज, ऑनरेबल MLA बांडीपुर, ऑनरेबल MLA सुंबल सोनवारी, उनके तरफ से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो डिमांड्स हैं, जहाँ कुछ ठीक करना है, ये सारी बातें रखी गई और इनको यकीन दिलाया गया है कि जितना हमसे हो सकेगा हम कर लेंगे। मिनिस्टर साहिबा भी जम्मू से इस मीटिंग में जुड़ी हुई थी, सकीना यत्तू साहिबा, उन्होंने ऑनरेबल MLA साहब को और बाकियों को यकीन दिलाया हुआ है कि जहाँ जहाँ अभी कुछ करना बाकी है उनके डिपार्टमेंट के तरफ से वो सारा हो जाए।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहो जो दहशत पसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी न लेकर बालाकोट और ऑपरेशन सिंधूर समेत सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फैसलाकुन कार्रवाइयों भारत ने यो पैगाम वाजह कर दिया है जे मुल्क की सलामती के नाल कोई भी समझौतो नहीं किया जा सकता। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दिफा ने कहो जो भारत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दानिशमंदाना क्यादत में कौमी सलामती का बुनियादी ढांचा में मस्बत तब्दीली आनी है। उन्होंने कहो जो दिफा के शोबा में आत्मनिर्भरता आनन का मुल्क का आजम ने घरेलू सलाहियतन तकवीयत बख्शन के नाल नाल फौज की तमाम शाखा में जदीदकारी अनन में भी रोल निभायो है। उन्होंने पिछला 12 साल के दौरान दिफा का शोबा में मुल्क का सफर का मुख्तलिफ पहलुओं ने उजागर कियो। जम्मू कश्मीर ना मुनशियात की लानत से छुटकारो दवाण वास्ते 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मी जोरों नाल जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को पैगाम।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: इस बिदत न काबू करने वास्ते जरूरी इकदमात और लोगों की जिम्मेदारियों का ताल्लुक थे वादी का एक सरकारी मुलाजम गुलाम रसूल शाह ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर नाल गल करता दस्यो।
3: ये जो मनशियात की लात पड़ी है इसमें बेशुमार घराने तबाह हुए, यानी उनके जो अपने असाशे थे अटैचमेंट भी हुई, सजा भी हुई, खानदानों के खानदान तबाह बर्बाद हो गए। हमारी यही कोशिश रहती है कि नौजवान तबका पढ़ाई की तरफ रागिब हो जाए, कम से कम मनशियात से दूर रहे, अपने आप को भी, अपने खानदान को भी और अपने समाज को भी ये जो वबा है इससे बचाए।
0: पूरा जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान के तहत ड्रग स्मगलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के नाल नाल बेदारी प्रोग्रामों को सिलसिलो जारी है। कुलगाम जिला में पिछला 2 महीने के दौरान 1 लाख से ज्यादा बेदारी प्रोग्राम किया गया और 10 इमारतों ना मुनहदम कियो गयो। मारा कुलगाम का नुमाइंदा खुर्शीद पढ़ू ने जिला का तरक्याती कमिश्नर का हवाला से खबर दी थी जिस जिला में कार्रवाई के दौरान 90 मुनशियात फरोशा ना गिरफ्तार कियो गयो है। ये खबर तम आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबर तम आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकें। आज दे महरमुल हराम को मुकद्दस महीना की शुरुआत के नाल ही 9 कमरी साल 1448 हिजरी की शुरुआत हो गई है। इसे मुकद्दस महीना के दौरान मैदान करबला

0: आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ड्स के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ड्स के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत बहुत लाभकारी रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के पर भी बातचीत की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें लगी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेट्टेबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेट्टेबेलो जहाज में हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई है और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी श्रीनगर शुभजीत 5 मिनट समेत पेश प्रोग्राम गर्मी बाई नीत खतर।
3: इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
3: इकबाल साहब तुशवज ठीक पे?
4: अल्हम्दुलिल्लाह मुनिक ताम छ ठीक तो यही उम्मीद करान जे सवेन सरी बोजन वेल गाम शहर यत आसी बोजन आसन तिम त आसन वार पट
3: तो आज छ سون اسلامی وری یعنی نئی وری گڈنک دو چھ از
4: 1448 ہجری یوزن نو اسلامی وری چھ تمک چھ از گڈنک دو تو یت چھ سیتی علم ز کیاز چھ اس ذکر کران ونکس محرم الحرام چھ تو کیاز چھ اس ذکر کران نئی وری چھ تہ کیاز نو وری چھ یتھی اس یت زین من دیوان ز اسلام یا سون مذہب یس اس تام ووت ات شو بنس تہ لو بنس اندازس مز یہ چھ ہنگ منگ ووتمت کی ات پت کن محنت ات پت کن سو قربانی یس تا قیام قیامت اس یاد روز
3: بالکل یم سیت اس ننان چھ یا یہ چین ونگ اس لگن یا یہ سبق پزک ہچن کہ دنیا مز کان تہ اصل چیز حاصل کرنے خاطر دنیا مز کن تہ کٹھن مشکلات مز نیرن پتے چھ اصل چیز حاصل گسان تہ قربانی چھ لگان
4: بالکل دپتو مقصد چھ ونو کی زِ کانٛہہ تہِ چیٖز چھُنہٕ محنتہٕ بغٲر تہٕ قۄربٲنی بغٲر حٲصِل گژھان کینٛہہ
3: ہرگز نہٕ
4: خاص کر یِم زَن دیٖنی معاملات چھِ آسان تِمن منٛز چھِ أکِس اِنسانَس خاص پَنٕنۍ کَتھ کٔرِتھ یا پوٗرٕ عالمی لیولہِ پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کُنہِ تہِ مذہبٕچ کَتھ کَرو اَتھ وۄتھواشر دِنہٕ باپتھ

0: आकाशवाणी श्रीनगर अपनी घड़ियां मिलाइए शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं।
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
0: शेरबीन के समय को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूद हैं, वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बांडीपुरा जिले का दौरा किया, पहलगाम में सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक, लोलाब कुपवाड़ा में आसमानी कहर, फसलें तबाह, और इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल सवालात के घेरे में। मौजूद की तफसील जरा देर बाद।
2: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
3: सुनो ना, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
4: तो रोका किसने है?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे?
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो,

0: क्या आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
2: 9018074333
3: 9018074333।
4: सेहत तक हर इंसान की पहुंच एक बुनियादी हक है, लेकिन आज भी कई लोगों के लिए ये एक मुश्किल सफर है। दूर दराज इलाकों में हॉस्पिटल, लंबी कतारें और सही जानकारी की कमी, ये सब रुकावटें बनती हैं। इन छोटी छोटी रुकावटों की वजह से जरूरी इलाज भी रह जाता है, लेकिन अब इसका हल है जेके सेहत ऐप। ये है आपका डिजिटल साथी जो आपकी सेहत से जुड़ी हर जरूरत का ख्याल रखता है। अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर खोलिए, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए जेके सेहत ऐप और इंस्टॉल करके रजिस्टर हो जाइए। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नजदीकी हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन सलाह और मेडिकल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, दवाइयों की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, ब्लड बैंक इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और सरकारी हेल्थ स्कीम्स के बारे में भी जान सकते हैं। और साथ ही साथ आप प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस भी बुक करवा सकते हैं। इस ऐप में AI सिम्टम चेकर चैटबॉट भी अवेलेबल है। चाहे आप मरीज हो, डॉक्टर, स्टूडेंट या एक आम शहरी, जेके सेहत ऐप सबके लिए है। इट्स सिंपल, सेफ और आपके लिए।
5: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन J&K।
6: होली का ना अलग ही मजा है। लोरी ना मिठाई खाओ, वाह इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है।
7: नहीं, मैं जो मिठाई लेके आई उसमें ऐसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा?
6: सावधान रहना रीना, त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावट की संभावना बहुत अधिक होती है, इससे हमारी और हमारी फैमिली की सेहत खराब हो सकती है।
7: अच्छा भाभी,
6: और हाँ, मिठाई खरीदने से पहले ये जरूर जांच ले कि दुकानदार के पास फूड लाइसेंस हो। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शंका हो तो राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत कर सकती हो। और अधिक जानकारी के लिए www.fssai.gov.in पे लॉगिन कर सकती हो। और हाँ, अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जांच के आसान से तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो।
7: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें खोल दी।
8: याद रहे, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
9: सेहत जो हर एक इंसान सुन बुनियादी हक, मगर आज तुम सफर वारियन लुकन खतर मुश्किल। दूर दराज इलाकन मज हॉस्पिटल तो सही मालूमात हिस कमी, यम चीज रुकावट बनान तो जरूरी इलाज चु इथी रोजान, मगर वन अत हल JK सेहत ऐप। यह तुहद डिजिटल साथी जो सेहतस मुताबिक कुन तो जरूरत तो ख्याल थावान। यह ऐप एंड्रॉइड तो आईफोन दोशवनी मज दस्तियाब। ऐप मज डॉक्टर सिंस अपॉइंटमेंट बुकिंग, नजदीकी हॉस्पिटल झांडन, ऑनलाइन सलाह तो मेडिकल रिपोर्ट्स हावन, AI सिम्टम चेकर चैटबॉट, एम्बुलेंस बुक करें, दवाहन इस अवेलेबिलिटी चेक करें, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स चेक करें, ब्लड बैंक की मालूमात तो सरकारी हेल्थ स्कीमन हिस जानकारी, बेचे अत सित प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस तो अवेलेबल। चाहे तुम मरीज, डॉक्टर, स्टूडेंट या अक साध शहरी छो, JK सेहत चु सारनी सूत, सिंपल, सेफ तो सिर्फ तुहे खतर।
4: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन J&K।
10: शर्बीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। आज इस्लामिक कैलेंडर यानी हिजरी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम और हराम की पहली तारीख है। आज से हिजरी साल 1448 का आगाज होता है। आज मुहर्रम के पहले दिन वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आजादारी के मजालिस का इनेकाद किया गया, जिनमें इमाम अली मकाम हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों को खिराज अकीदत पेश किया गया। याद रहे कि मुहर्रम के महीने में ही आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने कर्बला के मैदान में यजीदी फौज का मर्दानावार मुकाबला किया। सबनाज वजीर आलम अब्दुल्ला ने बांडीपुरा जिले का दौरा किया। दौरे के दौरान मौसूफ ने जिले में तामीर तरक्की के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का जायजा लिया और साथ ही जिले के तीनों अंतखाबी हलकों के नुमाइंदों की तरफ से पेश किए गए मुतालबात और तजावीज पर तवज्जो मबजूल की। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा इंदु कंवल चिब ने एक प्रेजेंटेशन के जरिए जिले का मजमूई तरक्याती खाका पेश किया। जायजा मीटिंग के दौरान उमर अब्दुल्ला ने अफसरान पर जोर दिया कि अवामी मुतालबात को पूरा करने के लिए संजीदगी से इकदाम किए जाएं। एक रिपोर्ट के साथ अंजुम फिरदौस।
11: जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज काबीना के वजरा, मुशीरों और आला सरकारी अफसरान के हमरा बांडीपोरा का दौरा किया, जहां उन्होंने जिला में जारी तरक्याती सरगर्मियों, अवामी फलाही मनसूबों और मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। दौरे के आगाज में वजीर आला ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से मिनी सेक्रेटरी बांडीपोरा में लगाए गए मालूमाती और नुमाइशी स्टॉल्स का मुआयना किया। इस दौरान मुतलका अफसरान ने अपने अपने महकमों की जानिब से जारी

0: अवामी खदमात और तरक्याती मंसूबों के बारे में तफसीली जानकारी फराहम की। वज़ीरे आला ने मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए अवामी खदमात को मजीद मुअस्सर और शफाफ बनाने पर जोर दिया। बाद अज़ां वज़ीरे आला ने जिला अफसरान के साथ एक आला सतही जायजा इजलास की सदारत की। इजलास के दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर इंदू कंवल चिब ने वज़ीरे आला को जिला बांडीपुरा में जारी और मुकम्मल शुदा तरक्याती मनसूबों, मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी, अवामी फलाही स्कीमों और मुस्तकबिल की तरक्याती तरजीहात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग पेश की। उन्होंने जिला में जारी तरक्याती सरगर्मियों, बुनियादी ढांचे की मजबूती, सेहत तालीम के शोबों में पेश रफ्त और अवामी खदमात की फराहमी से मुतलिक अहम आदाद शुमार और मालूमात भी फराहम की। इजलास में सड़कों, पीने के पानी, बिजली, सेहत तालीम, सयाह, देही तरक्की, ज़राअत और दीगर अहम शोबों में जारी मनसूबों की पेश रफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीरे आला ने मुतलिका अफसरान को हिदायत दी कि तरक्याती मनसूबों को मुकर्रा मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए और उनके मयार पर खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकें। इस मौके पर वज़ीरे आला उमर अब्दुल्ला ने 100 करोड़ रुपए से जिला में मुकम्मल हो चुके मुतअज्जिद तरक्याती मनसूबों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह भी किया और उन्हें अवाम के नाम वक्फ किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद अवाम को बेहतर बुनियादी सहूलियात फराहम करना और तरक्की के समरात हर इलाके तक पहुंचाना है। इन मंसूबों से अवामी खदमात में बेहतरी आएगी और जिला की मजमूई तरक्की को मजीद तकवीत मिलेगी। वज़ीरे आला ने अवामी नुमाइंदों और मुख्तलिफ वफूद से भी मुलाकात की और उनके मसाइल व मुतालबात भी सुने। उन्होंने यकीन दिलाया कि अवामी मसाइल के हल और तरक्याती कामों की रफ्तार को मजीद तेज करने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इकदाम जारी रखेगी।
1: बांडीपुर के पिछले साल के प्लान की डिलीवरी कितनी रही उसका जायजा लिया गया, कहाँ खामियां रही। ऑनरेबल MLA गुरेज, ऑनरेबल MLA बांडीपुर, ऑनरेबल MLA सुंबल सोनवारी, उनकी तरफ से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो डिमांड्स हैं, जहाँ कुछ ठीक करना है, ये सारी बातें रखी गई और इनको यकीन दिलाया गया है कि जितना हमसे हो सकेगा हम कर लेंगे। मिनिस्टर साहिबा भी जम्मू से इस मीटिंग में जुड़ी हुई थी, सकीना यत्तू साहिबा, उन्होंने ऑनरेबल MLA साहब को और बाकियों को यकीन दिलाया हुआ है कि जहां जहां अभी कुछ करना बाकी है उनके डिपार्टमेंट की तरफ से वो सारा हो जाए।
2: वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बानीपुरा जिले का दौरा, अंजुम फिरदौस की रिपोर्ट आपने सुनी। लोलाब कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में कल शाम अचानक बादल फटने के नतीजे में फसलें बड़े पैमाने पर नुकसान ज्यादा हुई, जबकि डूरू से लोलाब में एक शख्स जख्मी भी हुआ। इतलात के मुताबिक कल शाम लालपुरा, दारपुरा, टंगचक, कुलीगाम, खुरहामा, शाठ मकाम और मुल्ह के इलाकों में बादल फटने और मूसलाधार बारिश होने के नतीजे में एक तरफ धान की फसल बर्बाद हो गई और साथ ही महबूब बागात को भारी नुकसान पहुंचा। इसी असना में लोलाब के डूरूसा गांव में बादल फटने के वाकये में एक शख्स जख्मी हो गया। लोलाब के मुतासर देहात की आबादी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करती है कि नुकसान का तखमीना लगाकर उन्हें माकूल मुआवजा दिया जाए। फिलहाल एक रिपोर्ट के साथ फैयाज हमीद।
3: गुज़श्ता शाम जिले के मुख्तलिफ इलाकों, बिलखसूस वादी लोलाब के कई देहात में मौसम ने इस कदर करवट बदली कि चंद ही मिनटों में किसानों ने आहें भरनी शुरू कर दी। जो तफसीलात शहरबीन को मौसूल हुई उसके मुताबिक गुज़श्ता शाम वादी लोलाब के लालपोरा, कुलीगाम, खुरामा, छिपोरा, दारपोरा, टंगचक, गुलमाछड़ और दीगर इलाकों में इस कदर बादल फटे कि देखते ही देखते चंद ही मिनटों में हजारों किनार पर लगाई गई धान की पनीरी तेज पानी के बहाव में गुम हो गई। कई इलाकों में तेज बारिशों ने सड़कों को भी नुकसान पहुंचाया। उधर मच्छल से खबर है कि यहां भी इस कदर जालाबारी हुई कि यहां पर खास तौर पर काश्त किए जाने वाले आलू की फसल के साथ साथ राजमा और मकई की फसल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। मच्छल से एक शहरी ने शहरबीन को बताया कि जब तेज जालाबारी शुरू हुई तो चंद किसान जालाबारी रुकने के लिए दुआएं मांगते भी देखे गए। गाजियाबाद लंगेर से मिली इत्तला के मुताबिक यहाँ एक हफ्ते में गुज़श्ता शाम दूसरी बार इस कदर जालाबारी हुई कि कुछ बाग मालिकान अश्क बहाते नजर आए। वानी डोरोसा से खबर है कि यहाँ एक शख्स आसमानी बिजली गिरने के सबब जख्मी हुआ है। आपको बताते चले कि जून के इस महीने में शाम होने के साथ ही मौसम का रुख बदलना अब इस जिले में मामूल बन चुका है, जिसके नतीजे में किसानों में तशवीश बढ़ गई है। जून के इन 17 दिनों में शाम होने के साथ ही

0: मौसम बदल जाता है, जिसके नतीजे में अभी तक यहाँ के दर्जनों इलाकों में जालाबारी के सबब धान की पनीरी, मेवा बागात, अखरोट के दरख्तों और सब्जियों की क्यारियों को नुकसान पहुँचा है। इस वक्त भी पूरे जिले में मौसम का रुख देखकर किसानों के साथ साथ आम इंसान भी मौसम की बेहतरी के लिए दुआएं मांगते भी देखे जा सकते हैं।
1: कुवाड़ा से फैयाज हमीद की रिपोर्ट आपने सुनी। दरियासना पीडीपी के सीनियर लीडर और साबिक काबिनी वजीर एडवोकेट अब्दुल हक खान ने लोलाब में कल शाम बादल फटने के नतीजे में फसलों को हुए नुकसान पर तशवीश जाहिर करते हुए मुतासरीन को मुआवजा दिए जाने का पुरजोर मुतालबा किया है। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनो।
4: सेहत तक हर इंसान की पहुंच एक बुनियादी हक है, लेकिन आज भी कई लोगों के लिए ये एक मुश्किल सफर है। दूर दराज इलाकों में हॉस्पिटल, लंबी कतारें और सही जानकारी की कमी, ये सब रुकावटें बनती हैं। इन छोटी छोटी रुकावटों की वजह से जरूरी इलाज भी रह जाता है, लेकिन अब इसका हल है जेके सेहत ऐप। ये है आपका डिजिटल साथी जो आपकी सेहत से जुड़ी हर जरूरत का ख्याल रखता है। अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर खोलिए, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए जेके सेहत ऐप और इंस्टॉल करके रजिस्टर हो जाइए। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नजदीकी हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन सलाह और मेडिकल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, दवाइयों की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, ब्लड बैंक इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और सरकारी हेल्थ स्कीम्स के बारे में भी जान सकते हैं। और साथ ही साथ आप प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस भी बुक करवा सकते हैं। इस ऐप में AI सिम्टम चेकर चैटबॉट भी अवेलेबल है। चाहे आप मरीज हो, डॉक्टर, स्टूडेंट या एक आम शहरी, जेके सेहत ऐप सबके लिए है। इट्स सिंपल, सेफ और आपके लिए।
5: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन J&K।
6: सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में 2026-27 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज और प्रोग्रामों में दाखिले के लिए दरख्वास्तें जमा कराने की तारीख में तौसी की गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों के लिए फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 23 जून 2026 मुकर्रर की गई है। मजीद तफसीलात www.cukashmir.ac.in से हासिल करें। वाज़ह रहे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तमाम दाखिले सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट 2026 की बुनियाद पर ही दिए जाएंगे।
1: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। PDP के सीनियर लीडर जफर मीर लसजन ने अपने एक बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर में रोजगार के मौके की किल्लत, सार्फीन की कुव्वत खरीद में आई कमी और मजमूई माशी बदहाली ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना रखा है। उन्होंने सरकार, बिलखसूस मरकजी सरकार से पुरजोर मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर की कुली इकतसादी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए एक जामे पैकेज फराहम किया जाए ताकि लोगों का मयार जिंदगी बेहतर हो सके। अलावाजी जफर मीर लसजन ने आज वाथोरा चाडूरा जाकर नजीर अहमद सोफी के लवाहकीन से ताजियत का इजहार किया और सरकार से मजकूरा शख्स की पुरासरार मौत की तहकीकत का मुतालबा किया। सिर्फ पहलगाम के आड़ू इलाके में आज एक निजी गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में दो अफराद मौके पर ही जान बहक हुए, जबकि हादसे में मजीद 6 अफराद के जख्मी होने की इतला है। फौत होने वाले अफराद का ताल्लुक दयालगाम अनंतनाग से बताया जाता है। इतलात के मुताबिक यह हादसा गुजर सुंबल के नजदीक उस वक्त पेश आया जब गाड़ी मोड़ काटते हुए एक खाई में जा गिरी। तफसीलात के साथ एस तारिक।
7: जनूबी जिला अनंतनाग के मारूफ सियाती मकाम पहलगाम में आरो वैली रोड पर

0: खम के नजदीक एक दिलखराश सड़क हादसे में दो अपराध जांबाक हो गए, जबकि हुकाम इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि आया हादसे के वक्त गाड़ी में मजीद मुसाफिर सवार थे या नहीं। सरकारी जराये के मुताबिक रजिस्ट्रेशन नंबर JK03C6737 वाली एक अल्टो कार आरो वैली रोड पर एक खतरनाक मोड़ के करीब ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और सड़क से फिसल कर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के फौरन बाद पुलिस रेस्क्यू टीमें और मुकामी रजाकारों ने बड़े पैमाने पर इमदादी और तलाशी कार्रवाई शुरू की। जराये ने बताया कि हादसे गांव से अब तक दो लाशें बरामद की गई। जांबाक अफराद की शिनाख्त इमरान हुसैन गनाई साकिन पेटबुक दयालगाम और एक और खातून के तौर पे हुई। ताहम खातून की मुकम्मल शिनाख्त के हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार किया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक इस बात का तायुन किया जा रहा है कि गाड़ी में सिर्फ यही दो अफराद सवार थे या मजीद मुसाफिर भी मौजूद थे। इस सिलसिले में खाई और मुलिक इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया है ताकि किसी भी मुमकिन लापता या जख्मी शख्स की मौजूदगी को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद किया जा सके। पुलिस ने वाकये का नोटिस लेते हुए हादसे की वजूहत जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। वाजह रहे कि तकरीबन एक माह कबल भी इसी आरओ वैली रोड पर पेश आने वाले एक अलमनाक सड़क हादसे में दो सयाह जान की बाजी हार गए थे, जिसके बाद इस सड़क पर हिफाजत इकदाम और ट्रैफिक नज्म व नस्क के हवाले से सवाल दोबारा उठने लगे हैं। दरे असना इंतजामिया ने पहाड़ी और दुश्वार गुजार सड़कों पर सफर करने वाले ड्राइवरों से इंतहाई एहतियात बरतने की अपील करते हुए कहा है कि बिलखसूस खतरनाक मोड़ों और हसास मुकामात पर रफ्तार को काबू में रखा जाए और ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी की जाए। आखिरी इतलात मौसूल होने तक रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है।
1: आड़ू पहलगाम में सड़क हादसा दो अफराद जांबाक, एस तारिक की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर आज गुलमर्ग टंगमर्ग सड़क पर एक टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी को हादसा पेश आया। बताया जाता है कि इस हादसे में उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाले 8 सयाह जख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक गाड़ी में 11 सयाह सवार थे और वो गुलमर्ग से टंगमर्ग आ रहे थे कि रास्ते में गाड़ी हादसे का शिकार हुई। हादसे के फौरन बाद तमाम सयाहों को तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए सब जिले अस्पताल टंगमर्ग मुंतकिल किया गया, जहां पर बताया गया कि 8 सयाहों को चोटें आई हैं। समाजी कारकुन शेख कवामुद्दीन शिलवती ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सोनाबारी के शिया अक्सरियत वाले इलाका जात शादीपुरा, डांगरपुरा, नौगाम, इंद्रकूट, शिगनपुरा, गाड़खोड़, डब, मधवन और दीगर ऐसे इलाकों में मुहर्रम और हराम के पेश नजर तमाम बुनियादी जरूरियात की वाफिर फराहमी यकीनी बनाई जाए, बिलखसूस बिजली, पानी, रसोई गैस और ट्रांसपोर्ट की एहसन फराहमी पर तवज्जो दी जाए। आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में कैंसर की निस्बत से एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी ने यह सेमिनार द कश्मीर ऑनकोलॉजी फोरम के तआवुन से मुनक्किद किया था। सेमिनार के दौरान सरतान से बचाव के लिए मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर पर तवज्जो मरकूज रही और साथ ही तशखीस की अहमियत उजागर की गई। समूह जम्मू कश्मीर बिलखसूस वादी कश्मीर में पिछले चंद साल के दौरान सरतान यानी कैंसर के फैलाव की शरह में नुमाया इजाफा हुआ है। माहिरीन सेहत के मुताबिक वादी में पिछले 4-5 साल के अंदर कैंसर केसों की तादाद लगभग तिगुना हो चुकी है। सरतान के इस होशरुबा फैलाव की मुख्तलिफ वजूहत बताई जाती हैं, जिनमें हमारे खाने पीने की आदत, हद दर्जा जहनी दबाव और दीगर चंद वजूहत अहम हैं। जहां इन वजूहत या मुमकिन वजूहत पर खास तवज्जो देने की जरूरत है, वहीं ये बात भी गौरतलब है कि कैंसर के इलाज की खातिर जो रास्ते इख्तियार किए जाते हैं, क्या वो मुनासिब हैं, मुआफिक हैं या फिर ऐसे हैं कि जिन्हें इख्तियार करके कैंसर का इलाज तो दूर उल्टा दीगर अमराज लाहिक हो जाते हैं। इस सिलसिले में इम्यूनोथेरेपी पर कई सवाल खड़ा किए जा रहे हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इम्यूनोथेरेपी का चलन चंद साल से बढ़ गया है, ताहम बेशतर मरीजों के लिए ये किसी एतबार से मुफीद नहीं है, बल्कि इसके इस्तेमाल से मरीज दीगर परेशानियों में मुब्तला होकर मौत के करीब पहुंच जाते हैं। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ अकरमुल हसन।
2: कैंसर एक जानलेवा मर्ज है जिसके इलाज के लिए मरीज और इनके अहल खाना हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ऐसे में बैज निजी मराकज और अफराद मुख्तलिफ मुतबादल तरीका इलाज जिनमें इम्यूनोथेरेपी भी शामिल है को कैंसर के मौसर इलाज के तौर पर पेश करते हैं, जबकि बैज सेहत के माहरीन ने इस पर खर्चात का इजहार किया है। मुतअद्दिद मरीजों और उनके अलवाकीन का कहना है कि उन्हें इम्यूनोथेरेपी के जरिए कैंसर जैसे मुहल्लिक मर्ज में नुमाया یا بہتری کے دعوے کیے گئے، جس کے باعث انہوں نے لاکھوں روپے خرچ کیے، اتنا ہی نہیں بلکہ

0: कुछ मरीजों ने जमीन जायदाद सब कुछ फरोख्त किया। ताहम कई मामलात में मतलूबा नतायज हासिल न होने पर मुतलिका कुंबे शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो गए। सेहत के माहरीन के मुताबिक कैंसर इलाज के लिए मुस्तनद और साइंसी तौर पर साबित शुदा तरीका इलाज को तरजीह दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि मरीजों को ऐसे दावों से मोहतात रहना चाहिए। माहरीन की इन आरा को हाल ही में उस वक्त मजीद तकवीत हासिल हुई जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक तकरीब में यह बात बताई कि इम्यूनोथेरेपी लेने वाले मरीजों में से 80% हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। एलजी सिन्हा ने यह बात गुज़श्ता हफ्ते एसकेआईसीसी में मुनक्कदा इम्यूनोकॉन 2026 की सालाना तकरीब से खिताब करते हुए कही। इस मौके पर जम्मू कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों से आए तिब्बी माहरीन और स्कॉलर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। उन्होंने मजीद कहा कि यह पता लगाने के लिए कि इम्यूनोथेरेपी लगाने की वजह से मरीज आरजे क्लब के शिकार क्यों होते हैं मजीद तहकीकात की जरूरत है। कैंसर जैसे हसास मर्ज में मरीजों की मजबूरी और उम्मीदों का फायदा उठाना एक संगीन मसला है जिस पर तवज्जा देने की जरूरत है।
1: अकरम हसन की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर जनता दल यूनाइटेड के सदर बराए जम्मू कश्मीर जीएम शाहीन ने आज अपने एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने और आवाम के मयार जिंदगी को मजमू तौर पर बेहतर बनाने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही है। जीएम शाहीन के बकौल जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत बराए नाम है। समन चाडू के बड़गाम में वाक नीलनाग झील और इससे मुलिका इलाके को सियाहती एतबार से फरोग देने की अब तक कोई काबिल कदर कोशिश नहीं की गई है। यही वजह है कि इंतहाई खूबसूरत होने के बावजूद नीलनाग सियाहती नक्शे पर अपनी पूरी आबोताब के साथ उभर नहीं पाया है। याद रहे कि नीलनाग यूसमर्ग से लगभग 5 किलोमीटर के फासले पर है। ताहम इस इलाके में बुनियादी सहूलियात का खासा फुकदान पाया जाता है जिनमें सड़क राबिता बतौर खास शामिल है। एक रिपोर्ट के साथ यूनस पर्रे।
2: कुदरती खूबसूरती से मालामाल बस्ती कश्मीर के बड़गाम जिले से दूर तकरीबन 34 किलोमीटर मशहूर सियाती मकाम नीलनाग में बुनियादी सहूलियात का जबरदस्त फुकदान पाया जा रहा है जिस पर आवामी हलकों में हुकूमत के खिलाफ सख्त नाराजगी पाई जा रही है। इस सिलसिले में बजगू लेडन क्रिस्तवार गोगजी पथरी कोटबल ब्रिंजन लूरीपुरा वंगवास और नीलनाग इलाके से वाबस्ता लोगों ने शहरबीन के साथ बात करते हुए कहा कि सब डिवीजन चाडूरा के यूसमर के साथ नीलनाग के आबशारों सरसब्ज पहाड़ों और दिलफरेब आबहवा से राहत और सुकून महसूस होता है। मजकूरा सेहत अफजा मकाम को इस तरह सियाहती नक्शे पर नहीं लाया जा रहा है। बकौली लोग नीलनाग का शुमार इन झीलों में होता है जो अपनी दिलकशी और तारीखी हैसियत के लिए मशहूर है। इस झील का नीला पानी बर्फपोश पहाड़ों का हुसैन अक्स और इसके इर्द गिर्द मौजूद गमी जंगलात के साथ यहाँ की फिजा में एक खास किस्म की ताजगी और सुकून पाया जाता है जो हर आने वाले को महसूस कर देता है। लेकिन लोगों का मानना है कि नीलनाग को अगर बरवक्त तहफ्फुज न दिया गया तो ये कुदरती खजाना महज एक याद बनकर रह जाएगा। एक मकामी समाजी कारकुन रियाज अहमद के मुताबिक बदकस्मती से नीलनाग जैसे कुदरती मकामात हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से बर्बादी के दाहने पर है। सरकारी सतह पर इस झील को महफूज बनाने और सियाहती तरक्की देने के दावे तो किए जाते हैं मगर हकीकत में यहाँ बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है। वही यहाँ तक पहुंचने के लिए मुनासिब सड़कें नहीं बनाई गई और न ही सयाहों के लिए किसी किस्म की रिहाइश सफाई या गाइडलाइंस फराहम की गई है। बकौली बजगू के लोग झील के इर्द गिर्द बढ़ती आलूगी कचरे का ढेर और गैर मुलजिम सियाहती सरगर्मियां इस बात का सबूत है कि हुकूमत की दिलचस्पी सिर्फ जबानी दावों तक महदूद है और हुकाम की खामोशी इस कुदरती वर्षे को आहिस्ता आहिस्ता मिटाने की मुतरादिफ है। लोगों ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि महकमा टूरिज्म नीलनाग की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है जबकि सेहत अफजा मकाम एक मुनफरिद मकाम रखता है और वसी अराजी पर मुहित है। इधर तस्वीर के दूसरे पहलू की तरफ देखा जाए सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि आवाम भी इस बर्बादी के जिम्मेदार है। जो लोग यहाँ सब सैर तफरी के लिए आते हैं वो जगह को साफ रखने के बजाय अपने पीछे गंदगी के ढेर छोड़ जाते हैं और प्लास्टिक की बोतलें और दीगर फजा झील के किनारे पर डाल देते हैं जिसकी वजह से झील के माहौल को जबरदस्त नुकसान पहुंचता है। मकामी लोगों के मुताबिक नीलनाग को महफूज बनाने और इसके कुदरती हुसन को बहाल करने के लिए चंद जरूरी इकदाम की जरूरत है। झील में नीलनाग को एक बाकायदा सियाहती मकाम करार देकर इसके लिए बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। झील के अतराफ कचरा फैलाने वालों पर सख्त जुर्माना आयद किया जाए और मुनासिब कूड़ेदान नस्ब किए जाए।
1: यूनुस पर एक रिपोर्ट आपने सुनी। उधर कुलगाम से फारूक ट्रैफिक की बताया कि आज शाम तकरीबन 6 बजे इलाके के मुख्तलिफ देहात में लगभग 15 मिनट तक जालाबारी होती रही। जिन देहात में आज जालाबारी हुई उनमें बंगीवाड़ सीएस रातिर सीआरपुरा केबीपुरा

0: अविल, मजगाम, सोईपथरी, लिसरपुरा, चोगलपुरा और कई और देहात शामिल हैं, जहां बारिश के नतीजे में फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। इस सिलसिले में गांधी किंग फाउंडेशन के सदर बराए जम्मू कश्मीर डॉक्टर मोहम्मद अयूब मत्तू ने जाले बारिश पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुतासरा किसानों को फिलफौर मुआवजा अदा करने के लिए इकदाम किए जाएं। और प्रोग्राम के आखिर में एक खबर कि आज जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी की तरफ से अकेडमी के सेमिनार हॉल में एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें देहरादून में मुकीम कश्मीरी अदीब संजय पंडिता के अंग्रेजी शेरी मजमुए सैफ्रन विंड्स की रस्म रुनमाई अंजाम दी गई। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
1: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपने तामीरात दिल से बनाइए।
2: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर है फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तेहार और बढ़ाए अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000025।
3: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
4: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
5: अरे ये सेवाराम की दुकान बंद क्यों है?
6: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
7: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खानपान वस्तुओं की लैबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
8: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर।
9: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
10: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
11: सेहत चु हर एकिस इंसान सुन बुनियादी हक, मगर आज तिचु यो सफर वारियन लुकन खतर मुश्किल। दूर दराज इलाकन मज हॉस्पिटल तो सही मालूमातन हिस कमी, यम चीज चु रुकावट बनान तो जरूरी इलाज चु इत्थी रोजान। मगर वन चु अत हाल JK सेहत ऐप, ये चु तुहुंद डिजिटल साथी यु सेहतस मुताबिक कुनी तो जरूर तो ख्याल चु थावान। ये ऐप चु एंड्रॉइड तो आईफोन दोशवनी मज दस्तियाब। यात ऐप मज चु डॉक्टर सिंस अपॉइंटमेंट बुकिंग, नजदीकी हॉस्पिटल छांडुन, ऑनलाइन सलाह तो मेडिकल रिपोर्ट्स हाविन, AI सिम्टम चेकर चैटबॉट, एम्बुलेंस बुक करें, दवाहन इस अवेलेबिलिटी चेक करें, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स चेक करें, ब्लड बैंक कुछ मालूमात तो सरकारी हेल्थ स्कीम हिस जानकारी। बेचे आसित प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस तो अवेलेबल, चाहे तुम मरीज, डॉक्टर, स्टूडेंट या अख साध शहरी छो। JK सेहत चु सारनी सिंपल, सेफ तो सिर्फ तुहे खतर।
12: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन J&K।
13: आदाब, ये चे आकाशवाणी श्रीनगर खबरन हुन बुलेटिन है चुस्ब शेख तजम्मुल गड सरखेन पड़ाख नजर। G7 रहनुमाव चे आलमी सोत्रिस पर दरपेश चैलेंजन हुन मुकाबल करन बापत कहिया डिक्लरेशन एक्तियार करमच। वजीराला उमर अब्दुल्ला सुंद बंडपोरुक दौर, 7 करोड़ रुपये लागत वेल तरक्याती प्रोजेक्ट करेक लोकन वक्फ। बचाव वजीर राजनाथ सिंह चु मुल्क चे सलामती सहित कह समझौत न करने किस अजमस दुतमुत फ्यूर। तो सालान श्री अमरनाथ जी यात्रा जबर पेट मुनकद करने बापत चे इंतजामन दिन इवान हतमी शकल। खबर तफसील सान, G7 रहनुमाओ चे आलमी इस्तेकाम सलामती अथवास्त मुनज्जम बैन अलाक़वामी जुर्मन खिलाफ कदमन पर मबनी वारिया एलामिया मंजूर करमित। पन्नस मुश्तरक बयानस मंच यमो लीडरो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सिंदिस दौरस मंज अमरीकास्त ईरानस दरमियान सबद्याम ते मुहादु खैर मुकदम करमुत। لیڈرو یہ معاہدہ علاقائی شٹنیار کم کرنک اک موقع قرار دیتمت تمو آبنائی ہرمز کن

0: को दोहराते हुए कहा कि यह बिद्दत कौमी सलामती, सेहत आमा और इक्तसादी इस्तेकाम के लिए एक बड़ा खतरा है। लीडरों ने आलमी सतह पर दरपेश कई दीगर चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए मुनज्जम लाहे अमल इख्तियार करने पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एवियन फ्रांस में G7 इजलास के हाशिए पर जर्मन चांसलर के साथ मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने जर्मन चांसलर के साथ दोनों मुल्कों के माबैन मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर तबादले ख्याल किया। दरी असना वज़ीर-ए-आज़म ने G7 इजलास के दौरान एक अहम वर्किंग सेशन से भी खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक के माबैन इश्तराक को बढ़ावा देने के लिए मुनज्जम लाहे अमल इख्तियार करने की जरूरत है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से लेकर बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर, नई सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसी फैसलाकुन कार्रवाइयों से भारत ने पैगाम वाजह कर दिया है कि मुल्क की सलामती के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दिफा ने कहा कि भारत ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दानिशमंदाना क़यादत में कौमी सलामती के बुनियादी ढांचे में मुस्बत तब्दीली लाई। उन्होंने कहा कि दिफा के शोबे में आत्मनिर्भरता लाने के मुल्क के अज़्म से घरेलू सलाहियतों को तकवीत बख्शने के साथ साथ फौज की तमाम शाखों में जदीदकारी लाने में भी मदद मिली है। उन्होंने पिछले 12 बरसों के दौरान दिफा के शोबे में मुल्क के सफर के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बांडीपोरा का दौरा करके जिले में जारी तरक्याती सरगर्मियों और अवामी फलाह व बहबूद के लिए जारी इकदाम का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने 100 करोड़ रूपये लागत वाले प्रोजेक्टों का संघ बुनियाद रखा और कई एक का इफ्तिताह किया। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक सड़क राबितों, तिब्बी निगहदाश्त, तालीम, पानी और दीही तरक्की के शोबों से है। एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर के तमाम खितों की मसावी तरक्की को यकीनी बनाने की वादबंद है। वज़ीर आला के दौरे बांडीपोरा के हवाले से हमारे नुमाइंदे आदिल इस्माइल ने हमें ये रिपोर्ट दी।
1: वजीर आला ने अपने दौरे के दौरान तकरीबन 100 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का ई इब्तिदा अंजाम दिया। इन मनसूबों में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हाजन का एडिशनल ब्लॉक, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एजस, मरकुंडल हाजन सड़क, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कलूसा, कार पार्किंग बांडीपोरा, वाटर सप्लाई स्कीम ओनागाम समेत मुतअद्दिद अवामी फलाही मनसूबे शामिल है। वजीर आला ने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कायम करदा स्टालों का मायना किया और इनकी कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने मुस्तहिक अपराध में चेक, मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के मंजूरी नामे और जिस्मानी तौर पर खास अपराध में स्कूटीज की चाबियां भी तकसीम की। वजीर आला ने जिले में जारी तरक्याती मंसूबों और अवामी सहूलियात का तफसीली जायजा लेते हुए मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो मंसूबों की बर वक्त तकमील और अवाम को बेहतर खदमात की फराहमी को यकीनी बनाए। इस दौरान मुख्तलिफ अवामी वफूद ने भी वजीर आला से मुलाकात करके अपने इलाकों को दरपेश मसाइल और मुतालबात उनके सामने रखे। खबरनामे के लिए बांडीपोरा से मैं आदिल इस्माइल।
0: पहलगाम के नजदीक आड़ू सड़क पर आज एक सड़क हादसे में 2 अफराद जान बहक हुए हैं। हमारे नुमाइंदे तसदुक रशीद ने खबर दी है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक स्विफ्ट गाड़ी सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में इसमें सवार 2 अफराद मौके पर ही जान बहक हुए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में सड़क हादसे के दौरान 2 अफराद के जान बहक होने और कई दीगर के जख्मी होने पर दुख का इजहार किया है। एक बयान में उन्होंने सोगवार कुंबों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए जख्मी की फौरी सेहत याबी के लिए दुआ की। 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए सलामती समय तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। यात्रा की सलामती के लिए यात्रा के दोनों रास्तों पर कसी रुखी हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं और इंतजामिया यात्रियों को हर तरह की सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए लाजमी इकदाम कर रही है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने यात्रा के मुख्तलिफ अमूर की निगरानी करने के लिए मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक रखने वाले 63 अफसरों को तैनात किया है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि इस साल की यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के जरिए इस साल हज बैतुल्लाह पर रवाना हुए हुजाजे किराम की वापसी का सिलसिला इख्तिताम पजीर हुआ है। इस साल कमेटी के जरिए लगभग 4000 हुजाज ने फरीज हज अदा किया। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: हुजाज किराम के वापसी का सिलसिला श्रीनगर एम्बार्केशन से कल यानी 16 जून को कंप्लीट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भी आज श्रीनगर से रवाना हुए थे 3952 हुजाज किराम لداخ کے جو 322 تھے، تو الحمدللہ وہ سبھی اپنے گھروں

0: पहुंच गए हैं। हमारे दो हाजी अभी वहीं हैं, कुछ सेहत ठीक ना होने की वजह से अभी वहीं पे हैं। इंशाल्लाह वो भी चंद दिनों में आ जाएंगे। बाकी दिल्ली से और मुंबई से जो अभी गए हैं, जिन्हें वो एम्बार्केशन यूज किया है, वो अब उनके आने का सिलसिला अभी जारी है। वो 29 जून तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। तो 29 जून को हमारी लास्ट फ्लाइट होगी साउथ इंडिया, जो हमारे दो जज ग्राम लास्ट फ्लाइट में इंशाल्लाह आ जाएंगे।
1: आज से मुहर्रमुल हराम के मुकद्दस महीने की शुरुआत के साथ ही नए कमरी साल 1448 हिजरी का आगाज हो गया है। इसी मुकद्दस महीने के दौरान मैदान करबला के शहीदों ने इस्लाम की सरबलंदी और हक व सदाकत के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। इस महीने की मुनासिबत से आजादारी और हुसैनी मजालिस का सिलसिला भी शुरू हुआ, जिसके दौरान नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शहदा को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मुहर्रमुल हराम की फजीलत और बरकात बयान करते हुए मौलाना मियां आदिल नूरानी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: मुहर्रमुल हराम का महीना सिर्फ इस्लामी साल का पहला महीना ही नहीं बल्कि तारीख के अजीम शान हक व बातिल के मौके की निशानी भी है। यह महीना शहादत हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अनु के फलसफे को उजागर करता है। गम हुसैन और शहादत हुसैन रदी अल्लाह तआला अनु के मकसद व अहमियत का पैगाम भी आम करता है। दुनिया का हर मुसलमान नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का रंजो गम अपने दिल में रखता है, मगर कम ही ऐसे है जिन्होंने इस मौके का असल मफहूम मकसद समझा और फिर इस मकसद को जिंदा रखने की जदोजहद की। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अनु ने यजीद से जंग अपनी जाती मुफाद के लिए या खानदान की बका के लिए नहीं की थी, बल्कि इस्लामी हुकूमत में बदलते रुझानात को रोकने के लिए की थी।
1: नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पार्टी के नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुहर्रमुल हराम की शुरुआत पर लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने दुआ की कि मुकद्दस महीना आलमी इंसानियत की बका और जम्मू कश्मीर में मुकम्मल अमन अमान का बाइस बने। जमीयत हमदानिया के सरबरा मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने भी मुहर्रमुल हराम के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमद से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मुनशियात मुखालिफ प्रोग्रामों और इकदाम की निगरानी कर रहे हैं। मुनशियात के खिलाफ LG का पैगाम,
3: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदाम और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से वादी के एक सरकारी मुलाजिम गुलाम रसूल शाह ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
4: ये जो मनशियात की लात पड़ी है इसमें बेशुमार घराने तबाह हुए, यानी उनके जो अपने असाशे थे अटैचमेंट भी हुई, सजा भी हुई, खानदानों के खानदान तबाह बर्बाद हो गए। हमारी यही कोशिश रहती है कि नौजवान तबका पढ़ाई की तरफ रागिब हो जाए, कम से कम मानसियात से दूर रहे, अपने आप को भी, अपने खानदान को भी और अपने समाज को भी ये जो वबा है इससे बचाए।
1: पूरे जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान के तहत ड्रग स्मगलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ बेदारी प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। कुलगाम जिले में पिछले दो महीनों के दौरान 1 लाख से ज्यादा बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किए गए और 10 इन्हदामी कार्रवाइयां अमल में लाई गई। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे खुर्शीद पड्डू ने जिले के तरक्याती कमीशन के हवाले से खबर दी है कि जिले में कार्रवाई के दौरान 90 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सर शर्मा ने आज पार्टी के कई दीगर लीडरों के हमरा छन्नी हिम्मत जम्मू में डोगरा कल्चरल हार्मनी एंड एम्पावरमेंट इंस्टीट्यूशन का इफ्तिताह किया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने आज पंपोश कॉलोनी पलोरा जम्मू में खसूसी आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया। उन्होंने इस मौके पर मरकजी हुकूमत की 12 साल की कारकर्दगी को उजागर किया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज श्रीनगर में क्रॉप इंश्योरेंस से मुतालिक स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में अमलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और दीगर کراپ انشورنس اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے کھیت بچاؤ ابھیان کی مؤثر عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے کسانوں میں زیادہ سے زیادہ بیداری پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ کراپ انشورنس کی طرف کسانوں کو راغب کیا جانا چاہیے. میٹنگ میں بتایا گیا کہ اب تک

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12,89,000 किसानों को लाया गया है और 53,58,00,000 रुपए के क्लेम्स भी दाखिल की गई। डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर जम्मू की तरफ से आज डे केयर सेंटर टीआरसी जम्मू में मुआवजा शहरियों की इज्जत अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर समाजी बहबूद की वजीर सकीना इत्तू मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थी। वजीर मौसूफा ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि बुजुर्ग शहरी एक शमूलियाती और तामीरी समाज वजूद में लाने में कलीदी रोल अदा करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों की राहत रसानी के लिए तमाम वसाइल बर्रुए कार ला रही है। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो लोगों के मसाइल को उजागर करें। पार्टी के तर्जमान आला तनवीर सादिक ने हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के उर्स के सिलसिले में जायरीन के लिए हर तरह की सहूलियात दस्तियाब करने का मुतालबा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने मुतादिर सियाहती और मुहिम जोई मराकज मुसलसल बंद रखने पर तशवीश

0: तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा है कि आलमी रहनुमा दुनिया की फलाह बहबूद के लिए एक प्लेटफार्म पर जमा हुए हैं। काबिले जिक्र बात यह है कि हिंदुस्तान को मुसलसल 8वीं मरतबा G7 चौथी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है। फ्रांस पहुंचने पर वजीर आजम मोदी ने कहा कि वो आलमी रहनुमाओं के साथ अहम बैन अल-अक़वामी मसाइल पर तबादले ख्याल के लिए पुरजोश हैं। G7 एक सालाना इजलास है जिसमें दुनिया की 7 बड़ी तरक्की याफ्ता जमहूरी मईशतों के रहनुमा आलमी इक्तसादी, सियासी और सलामती के अमूर पर मशावरत करते हैं। फ्रांस के दौरे से कबल वजीर आजम मोदी स्लोवाकिया के दौरे पर भी गए, जहां उन्हें मुल्क के आला तरीन सरकारी एजाज से नवाजा गया। ये उनके करियर का 30वां बैन अल-अक़वामी एजाज है। इस दौरे की एक अहम खसूसियत मुश्तरक एलामिया था जिसमें दहशत पसंदी की सख्त मजम्मत की गई। स्लोवाकिया के सदर ने पहलगाम हमले समेत हर किस्म की दहशतगर्दी को आलमी इंसानियत के लिए नाकाबिले कबूल करार देते हुए इसके खिलाफ मुत्तहिद होकर कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आजम ने आलमी सतह पर ग्लोबल साउथ और तरक्की पजीर ममालिक को दरपेश मसाइल और खदशात को मुवसर अंदाज में पेश किया। उनकी क्यादत में मुल्क में अमन, तरक्की और नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए गए हैं जिनके मुस्बत नतीजे सामने आ रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक इस दौरे से न सिर्फ हिंदुस्तान के यूरोपीय ममालिक के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे बल्कि मुख्तलिफ शोबों में तआवुन के नए मौके भी पैदा होंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की दीगर रियासतों में तरक्याती सरगर्मियों को मजीद वसअत मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिनमें सियाहत का शोबा खास तौर पर काबिले जिक्र है। हालिया बरसों के दौरान बड़ी तादाद में गैर मुल्की सयाहों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया है, जिससे न सिर्फ मकामी मईशत को फरोग मिला है बल्कि खित्ते की खूबसूरती और सियाहती अहमियत भी आलमी सतह पर उजागर हुई है। तबसरा खत्म हुआ, शब बखैर।
1: वादी की आवाज लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर, तमाम सुनने वालों तक हमारा प्यार और खलूस भरा आदाब पहुंचे। सामईन, आज मुहर्रमुल हराम की यकुम तारीख है और मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है। यह महीना ऐसे गुनागों, पेचोखम, इशारे कुर्बानी, इश्क मोहब्बत और बेशुमार फजीलत की दौलत से मामूर और सर बुलंद है।

0: मुहर्रम अल-हराम वो महीना जो इस्लामी तकवियत का आगाज है, मगर अपने दामन में सबसे बड़ी कुर्बानी, सबसे बड़ा दुख और सबसे अजीम सबक लिए हुए है। ये वो महीना है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत और हुर्मत वाला महीना करार दिया और जिसकी 10वीं तारीख यानि यौम आशूर इंसानियत की तारीख का एक ऐसा बाब है जिसके बगैर न इंसाफ का तसव्वुर मुकम्मल होता है न हक के क़याम का फ़लसफ़ा। मुहर्रम हमें याद दिलाता है एक ऐसे काफ़िले की कहानी जो करबला की तपती ज़मीन पर न सल्तनत की तलाश में था न दुनियावी जाहो जलाल के पीछे। वो काफ़िला था हक का, सच्चाई का और इस्लाम की असल रूह को बचाने का। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नवासे रसूल, जिगरगोशा बतूल, जिन्होंने यजीदी निज़ाम के सामने झुकने से इनकार किया, जिन्होंने फरमाया कि जुल्म के सामने सर झुकाना मेरे नाना के दीन की तौहीन है और मैं ऐसी ज़िंदगी को नहीं चुनूंगा जिसमें जिल्लत हो। करबला सिर्फ एक जंग का नाम नहीं, ये एक नज़रिया है, एक तहरीक है, एक पैगाम है। जब यजीद ने खिलाफत को बादशाहत में बदलने की कोशिश की, जब इस्लाम को इक्तदार का हथियार बनाया जाने लगा, जब अदल और सदाकत की जगह जबर और खौफ ने लेना शुरू की, तब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला का रुख किया। उन्होंने सिर्फ एक पैगाम दिया, हक के लिए सर दे दो मगर बातिल के आगे सर न झुकाओ। करबला की सरजमीन पर जब प्यास ने बच्चों के होंठों को सुखा दिया, जब आसमान से धूप बरसती थी और ज़मीन तलवारों से दहक रही थी, तब भी हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान मुतजलजल न हुआ। उन्होंने अपने भाई, अपने जवान बेटे, अपने भांजे, अपने वफादार साथी और आखिरकार खुद को कुर्बान कर दिया, मगर दीन मोहम्मदी पर आँच न आने दी। मुहर्रम हमें ये सिखाता है कि हक के लिए खड़े होने के लिए बड़ी फौज नहीं, खालिस नीयत और मजबूत किरदार चाहिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 72 साथी अगरचे तादाद में कम थे, मगर उनका हौसला, उनका ईसार और उनकी वफा रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशलेरा बन गई। आज जब दुनिया जुल्म से भरी है, जहां ताकतवर कमज़ोर को रोनता है, जहां सच बोलने वाला मुजरिम बन जाता है और झूठ बकने वाला वजीर, वहां हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी हमें जगाती है। वो हमें कहती है कि सच कभी कमज़ोर नहीं होता, चाहे वो तन्हाई क्यों ना हो। मुहर्रम का पैगाम सिर्फ आंसू बहाना नहीं, सिर्फ सीना कूबी या मातम करना नहीं, बल्कि ये उस पैगाम को जिंदा रखना है जिसके लिए हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमें सोचना होगा कि क्या हम अपने माशरे में जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, क्या हम इंसाफ के साथ खड़े होते हैं, क्या हम अपने अंदर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी सदाकत, वफादारी और कुर्बानी का जज्बा रखते हैं। अगर नहीं तो फिर हमें मातम से पहले मुहासिबा करना होगा। यह महीना हमें अपनी रूह को झंझोड़ने, अपने किरदार को बेहतर बनाने और अपने रवैये को करबला की रोशनी में रखने का मौका देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हुसैनी बनना सिर्फ नाम लेने से नहीं होता, बल्कि बातिल के खिलाफ डटने से होता है, सच बोलने की हिम्मत रखने से होता है और हर उस निज़ाम को चैलेंज करने से होता है जो यजीदी सोच का आकाश हो। आइए सामईन, अब एक तकरीर सुनते हैं। उनवान है खुतबाए हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुकर्रर है डॉक्टर शबीब रिज़वी।
1: 28 रजब सन 60 हिजरी को इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने जद्दे ज़ीलत पनाह जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का मुक़द्दस शहर मदीना बाज़ नामुसाइद हालात और आशोब दहर के सबब छोड़कर मक्के की तरफ सफ़र इख्तियार करना पड़ा। यह सफ़र बड़ी खामोशी से तय हुआ, लेकिन मक्के मुकर्रमा में पहुँचने की शोहरत के सबब कभी कभी अकरबा और अहबाब के इसरार पर आपने चंद खुतबात इरशाद फरमाए, जिनमें उमूमन हमद इलाही, अहकाम इस्लामी और अदल वगैरह की तरफ तवज्जो दहानी कराई गई। लेकिन जब आगाज हज से सिर्फ एक दिन पहले आपको मक्के मुअज़्ज़मा से भी हुरमत खाने काबा बचाने के लिए नामालूम मंजिल की तरफ सफ़र करना

तू समझ भी नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ने तेरे कल्ब पर जलालत व जहालत की मोहर लगा दी है। इमाम आली मकाम ने आगे सिलसिले कलाम जारी रखते हुए मजीद फरमाया, ऐ लोगो, अगर तुमको मेरे इस कलाम में शक है तो क्या मेरे इस दावे में भी शक है कि मैं तुम्हारे पैगंबर की बेटी का बेटा हूँ और मशरक से मगरिब तक मेरे सिवा उनका कोई और बेटा है? अफसोस है तुम पर, क्या तुम कह सकते हो कि मैंने तुम्हारे किसी आदमी को मारा है जिसके खून का बदला तुम मुझसे लेना चाहते हो, या मैंने किसी को जख्मी किया है या तकलीफ पहुंचाई है या किसी का माल तलब किया है जिसके सबब तुम मुझसे क़िसास के तलबगार हो? इमाम अलैहिस्सलाम ने ज़रा सा तवक्कुफ किया कि शायद कोई जवाब दे, मगर जब खामोशी रही तो आपने ज़रा बुलंद आवाज़ में पुकार कर कहा, ए शीस बिन रुबई, ए हिजार बिन हुर, ए कैस बिन अशस, ए यजीद बिन हारिस, क्या तुम उन लोगों में से नहीं हो जिन्होंने मुझे मुतवातिर ख़त लिखकर बुलवाया कि हमारे दरख्तों के मेवे तैयार हो गए हैं और हमारे नखलिस्तान सरसब्द व शादाब हैं, आप जल्दी से तशरीफ़ ले आइए, हमारे लश्कर तैयार हैं। सब खामोश रहे, मगर शीस बिन रुबई बोला, आप जो भी कहें हम नहीं समझेंगे, मगर ये कि आप अपने इबन अम यजीद की दावत यानी बैत कबूल कर लें तो वो रिफाकत और मुदारात से पेश आएगा। इमाम ने फौरन फरमाया, खुदा की कसम, बतौर जिल्लत अपना हाथ किसी के हाथ पर न धरूंगा और न तुम लोगों के सामने गुलामों की सी जिल्लत व आर गवारा करूंगा। यकीनन मैंने तुम्हारे और अपने परवरदिगार से पनाह मांगी है कि तुम मुझे संसार कर सको, और मैं अपने और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ ऐसे लोगों के शर से महफूज रहने के लिए जो अपने गुरूर के सबब रोज़े क़यामत पर यकीन नहीं रखते। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम का दूसरा खुतबा ठीक जोहरे आशूर के वक्त का है। सबसे पहले हम्दोसना खुदा की, फिर अपने जद्दे मोहतरम पर दुरूद भेजा, फिर अपना और अपने ख़ानदान का तारुफ कराते हुए पूछा, क्या तुम्हें इस तारुफ में कुछ शक है? सब ने यकीन का इजहार किया तो आपने फरमाया, ये अमामा जो मैं बांधे हूँ ये मेरे जद आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और ये शमशीर जो मेरी कमर में है ये भी उन्हीं की है। मेरे वालिद बुजुर्गवार सबसे पहले ईमान लाए और बलिहाज़े इल्म व हिल्म मुसलमानों में सबसे अफजल हैं और तमाम मोमिनीन व मोमिनात के मौला हैं। सब ने इन बातों का इकबाल किया, तब फिर आपने ज़रा ज़ोर देकर सवाल किया, तो फिर जब ये सब तुमको मालूम है तो मेरे खून को क्यों मुबाह समझते हो, हालांकि तुम सब खूब जानते हो कि कल क़यामत में मेरे वालिद बुजुर्गवार तमाम तशनगाने उम्मत को हौज़े कौसर पर इस तरह ले जाएंगे जिस तरह शुतुरबान अपने ऊँटों को मंबए आप पर ले जाता है। वो बहुतों को वहाँ से हटा देंगे जिस तरह गैर ऊँटों को हटा दिया करते हैं। उस दिन लवाए हमद मेरे ही पेदर के हाथों में होगा। दुश्मनों ने इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का ये खुतबा सुनकर जवाब दिया कि हम लोग ये सब जानते हैं, मगर आपसे हाथ नहीं उठाएंगे जब तक के जामे मौत न पिला दें। इमाम का तीसरा खुतबा आखिरी खुतबा जोहरे आशूर के बाद का है और यही उनकी आखिरी गुफ्तगु भी है। फरमाते हैं, खुदा की तारीफ जिसने दुनिया को पैदा किया और उसे दारुल फना और जवाल पजीर करार दिया और बाशिंदों को हालत व सूरत के एतबार से तब्दीली के काबिल बनाया, बस मगरूर है वो जो दुनिया पर दीवाना हो और शकी है वो जो दुनिया का आशिक हो। दुनिया के मकरो फरेब में न आओ, क्योंकि दुनिया उन उस रगबत करने वाले शख्स की तमाम उम्मीदों को क़ता कर देती है और नाकाम बना देती है, और तुम लोगों ने जिस पर इत्तेफाक़ किया है वो खुदा की नाराज़गी का सबब है। खुदा तुमसे मुंह फेर लेगा और अपना अजाब नाजिल फरमाएगा और अपनी रहमत को तुमसे दूर रखेगा। देखो अल्लाह कितना अच्छा परवरदिगार और मालिक है और तुम उसके कितने बुरे बंदे हो कि तुमने उसकी रिसालत और शरीयत की तस्दीक की, ईमान लाए और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की तस्दीक की, फिर उसके अहले बैत पर फौजकशी करके कत्ल के दरपे हो। इसी वजह से शैतान तुम पर गालिब आ गया है और उसने जिक्र खुदा से तुमको बाज रखा है, बस तुमको हलाकत नसीब हो। आह।

0: ये क्या तुमने इरादा कर लिया है ईमान लाने के बाद कुफ्र, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम आली मकाम के इस आखिरी खुतबे और आखिरी गुफ्तगू के बाद दुनिया की वो अजीम शहादत पेश हुई जिसके मुकाबिल बकौले इमाम क़यामत तक के लिए दुश्मनों को हलाकत नसीब हुई और हक पर मर मिटने वालों को शहादत की ऐसी सआदत मिली कि उनकी मौत जिंदगी जावेद बन गई। गवाही दे रही हैं आज तक मजलूम की यादें, हलाकत और होती है, शहादत और ही कुछ है।
1: ये थी तकरीर, उनवान था खुतबाए हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, मुकर्रर थे डॉक्टर शबीब रिजवी। वादी की आवाज़ आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से। सामईन, हमें इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से फकत जुलूस नहीं बल्कि एक जद्दोजहद की शुरुआत करनी चाहिए। करबला हमें रोने के लिए नहीं जागने के लिए बुलाती है। ये हमें बताती है कि वक्त की यजीदियत किसी एक चेहरे या हुकूमत का नाम नहीं बल्कि हर वो अमल, हर वो रवैया और हर वो निज़ाम यजीदी है जो जुल्म को तकवीत दे, और हर वो फ़र्द, हर वो आवाज़, हर वो कदम हुसैनी है जो हक के साथ खड़ा हो, चाहे वो अकेला हो। लिहाजा मुहर्रम का असल मकसद सिर्फ याद मनाना नहीं बल्कि इस याद को अमल में बदलना है। अपने बच्चों को सिर्फ ये न बताइए कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे बल्कि ये भी सिखाइए कि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु क्यों लड़े और हमें आज किसके खिलाफ लड़ना है। जुबान से नारे लगाना आसान है मगर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का पैरोकार बनने के लिए अपनी ख्वाहिशात, अपनी अना और अपनी खुदगर्जी को करबला में कुर्बान करना होगा। आज अगर हमने करबला से जीना सीखा तो शायद हम सिर्फ तारीख दोहराते रहेंगे मगर कभी तारीख बन न पाएंगे। जब हम मुहर्रम का नाम लेते हैं तो हमारे दिल पर एक दर्द सा उतर आता है, आंखों में नमी आ जाती है और एक ऐसी फिजा कायम हो जाती है जिसमें सब्र, कुर्बानी, इस्तकामत और वफा की खुशबू रची बसी होती है। करबला सिर्फ एक मुकाम नहीं बल्कि एक अलामत है, एक ऐसा लम्हा है जो वक्त से बुलंद हो गया, जो आज भी हर बातिल के मुकाबले में खड़ा है, जो हर मजलूम को हौसला देता है कि वो तन्हा होकर भी दुनिया बदल सकता है। हज़रत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जवानी, हज़रत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु की मासूमियत, हज़रत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफादारी, हज़रत सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा की प्यास, ये सब सिर्फ रोने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने कम सिन अली असगर को लेकर मैदान में गए और दुश्मन से फकत इतनी दरख्वास्त की कि शीरख्वार बच्चे को पानी दे और जवाब में तीर चले तो ज़मीन ने मातम किया, आसमान लर्ज गया और इंसानियत के माथे पर एक सियाह दाग पड़ गया। वो लम्हा हमें बताता है कि जुल्म जब अंधा हो जाए तो शीरख्वार को भी माफ़ नहीं करता और हक जब बेदार हो जाए तो इसका जवाब खामोशी नहीं बल्कि कुर्बानी होता है। मुहर्रम हमें उन माओं की याद दिलाता है जिन्होंने अपने बेटों को खुद रुखसत किया। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमें सिखाती है कि गम की इंतहा में भी ज़ुबान से हर्फ शिकवा अदा न हो बल्कि पैगाम की हिफाजत की जाए, मिशन को मुकम्मल किया जाए। शाम का दरबार हो या कूफे के बाजार, ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम झुकने न दिया। ये बता दिया कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर तो कट सकता है मगर पैगाम नहीं मिट सकता। आज के दौर में जब दुनिया मादियत परस्ती की तरफ बढ़ रही है, जब दीन सिर्फ रस्म बन कर रह गया है, जब इबादत खाली खौल बन चुकी है, वहाँ मुहर्रम हमें याद दिलाता है कि दीन महज अल्फाज नहीं बल्कि अमल का तकाजा करता है। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जंग तलवार से नहीं किरदार से थी और यही जंग हमें आज भी लड़नी है। झूठ के खिलाफ सच का अलम बुलंद करना, नाइंसाफी के खिलाफ इंसाफ की सदा बनना और बादल के मुकाबले में डट जाना, यही आज का करबला है। जब हम घरों में सुकून से बैठे टीवी पर मजालिस सुन रहे होते हैं, क्या हम सोचते हैं कि आज भी कितने बच्चे दुनिया के करबला में भूखे हैं, कितनी सकीनाएं प्यासी हैं, कितने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु दरिया पर खड़े हैं मगर पानी नहीं है। अगर हम सिर्फ हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का मातम करें और उनके मकसद को ना अपनाएं तो ये वफा नहीं बल्कि गफलत है। हमें अपने दिल, अपनी सोच और अपने अमल को हुसैनी बनाना होगा। हमें अपने वादों में वफा, अपनी गुफ्तगू में सच्चाई और अपने फ़ैसलों में अदल लाना होगा। यही आज का पैगाम मुहर्रम है जो हमें सिर्फ तवज्जा नहीं बेदारी देता है।

जो हमें सिर्फ गम नहीं इनकलाब देता है, जो हमें सिर्फ सजदा नहीं सच के साथ खड़ा होना सिखाता है। यही वजह है कि आज भी दुनिया के हर कोने में मुहर्रम मनाया जाता है, हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को याद किया जाता है और करबला की सदा हर दिल को जगाती है, क्योंकि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का कारवां रुका नहीं, वो आज भी चल रहा है। अगर हम चाहें तो इस कारवां का हिस्सा बन सकते हैं, सिर्फ शर्त यह है कि हम सच के साथ खड़े हो जाएं, चाहे इसका मतलब हो कि हमें अपनी ख्वाहिशात, अपनी मसलहतें और अपनी खामोशियाँ कुर्बान करनी पड़े। करबला हर दौर में जिंदा है, क्योंकि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फकत जिस्म नहीं जज्बा दिया, और जज्बे कभी मरते नहीं।

0: हाउस का ऐड किया है। तीसरी बात यह इस साल एक और हैचरी हाउस बन रहा है, तो मुद्दा मकसद हमारा यही रहता है कि जो सीर है वो हमारा, जो हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है जिन्होंने अपनी यूनिट स्काई की है उनको वो सीड मिले, एक बात ये। दूसरी बात यह है कि जो हमारा इस साल जो हमें एक कंसाइनमेंट मिली है लगभग 3 लाख के करीब, जो सीड सीधा डेनमार्क से आया है, ब्राउन ट्राउट का सीड आया है, तो इसमें प्रोग्राम को फौकियत हासिल हो गई है कि हमने वो 3 के 3 ही लाख वहीं पे रखे जब हमारे पास हैचरी हाउस और उस वाटर पैरामीटर्स अवेलेबल है, तो हमने वो सीड वहीं पे कल्चर करना शुरू किया। तो वो अब जो सीड हमने वहां पर प्रोड्यूस किया है वो हमने इन्हीं नदी नालों के लिए, नॉट ओनली फॉर कुलगाम बट फॉर होल यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में जो नदी नाले हैं उसको हम ब्राउन ट्राउट स्ट्रीम्स डेवलप करना चाहते हैं, जो एंगलर्स आते हैं तो वो वहां पे वो फिशिंग करेंगे और टूरिज्म को उससे बढ़ावा मिलेगा। जहां तक सवाल हमारे बेरोजगार जो पढ़े लिखे नौजवान है, तो उन्होंने डिफरेंट स्कीम्स के तहत जैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है, तो पहले पहले हमें इनिशियली कम ही यूनिट मिलते थे, तो हमने अवेयरनेस की प्रोग्राम्स हो गए उसमें, जैसे जैसे पहले हमारे पास एक स्कीम थी PMMSY जिसने पूरी तरह से ब्लू रेवोल्यूशन ही लाया कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, सारे यूटी में तो और कुलगाम में इन पर्टिकुलर, जिसपे हमें अवार्ड से भी नवाजा गया एट नेशनल लेवल, जो नेशनल लेवल पे हमें इस साल बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला। तो इसका शेयर जो है वो जाता है हमारे प्रोडक्शन है और दूसरी बात हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट को
1: जी।
0: क्योंकि जो हम अगर हम इस मछली को बोलेंगे कि ये ऑर्गेनिक है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा, क्योंकि इसमें जो भी हम फीड देते हैं वो नेचुरल होती है, तो उसमें हम चाहे सोयाबीन देते हैं, फिश मील देते हैं या वीर देते हैं, उस ये सब सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये राइट फ्रॉम द बिगनिंग जब से अंडे से बच्चा निकलता है तो उस तरीके से हम उसको वो दे देते हैं जो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। जहाँ तक कि आज प्रेजेंट हमारा सिनेरियो है, चूँकि आपको मालूम ही होगा कि हमारे जो वर्दी चीफ सेक्रेटरी आज हैं डोडू साहब हैं, उसकी सदारत में जब ये उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, तो उस टाइम उन्होंने एक नॉवल कॉन्सेप्ट दे दिया हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें हमारा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स आ गए, तो उसको भी हमने अब यूज़ किया है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के, सब बड़े अच्छे यूनिट जो उसमें आ गए, तो टोटल हमने आज जो हमारे पास रिकॉर्ड है प्राइवेट में हमारे 165 करीब जो हमारे यूनिट्स है वो एस्टैब्लिश हमने डिफरेंट स्कीम्स में किए हैं। उसमें वो यूनिट शामिल नहीं है जो लोगों ने खुद बनाए, मैं बोलता हूँ वो यूनिट्स
1: जो आपके पास रजिस्टर
0: है और जिनको हमने सब्सिडाइज्ड कंपोनेंट दे दिया है।
1: अच्छा।
0: तो पिछले साल हमारी जो प्रोडक्शन थी वो मैं बाय मार्च की प्रोडक्शन बोल रहा हूँ, ये लगभग 180 मेट्रिक टन करीब है। तो इन लोगों को जो है एक छोटा सा रेसवे होता है, जैसा आपने देखा होगा कि 50 क्यूबिक मीटर का ज्यादा से ज्यादा इसमें 2 मरले जमीन आते हैं, पानी का अच्छा साधन है ही तो अवेलेबल है हमारे, इसमें 2 लाख से 2.5 लाख रुपए एक क्रॉप में इस फार्मर का बच जाता है।
1: अच्छा।
0: मेहनत के हिसाब से देखेंगे तो मेहनत के हिसाब से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ज्यादा मैनेजमेंट है नहीं उसमें, सुबह को आपने फीड दे दी, शाम को फीड दे दी, वो लाइफ स्टॉक को एक बार आपको हफ्ते में रेसवे साफ करते हैं। बिसाइड दैट अब तो ये तो हो गया जो रियरिंग करते हैं, अब हमारे पास वहाँ पे 4 हैचरीज बनी है
1: जी,
0: कि हम ये चाहते हैं कि ये हम पे ना डिपेंड रहे, खुद अपनी हैचरी बनाए। अब जो हमारे जो हैचरीज काम करते हैं अब वो सीड इस साल से उन्होंने प्रोडक्शन की स्टार्ट, तो अब जो हमारे एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स है जैसे डिस्ट्रिक्ट शुपयान है और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है, उनको अब नजदीक पड़ेगा, अब वो प्राइवेट सेक्टर में खुद अपना कुलगाम से
1: लेंगे,
0: पुलवामा भी है शुपयान भी है, अब उनको उससे उनको मावनत मिलेगी। तीसरी बात यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट है वो ज्यादा मार्केटिंग का रहेगा, तो मार्केटिंग में जो प्रोड्यूस होता है वो तो यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है, और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आगे से कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये बाहर के कम से कम बाहर के रियासतों को जाए।
1: अच्छा शबीर साहब, अगर हम बेरोजगार नौजवानों की बात करेंगे जो इस शोबे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, फिशरीज को अडॉप्ट करना चाहता है, उन्हें क्या करना चाहिए?
0: देखिए, 2 एस्पेक्ट्स हमारे पास है, एक एस्पेक्ट हमारा जो प्रेजेंटली चल रहा है हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें भी 2 कंपोनेंट है। मैं अपने अजीजों को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को जो चाहते हैं कि अपना अच्छी तरह से इज्जत से अपने रोजगार कमाए, क्यों वो इस पोर्टल को अच्छी तरह से सीखे। इसमें 2 हमारे कॉन्सेप्ट, मैं अपने फिशरीज की बात करूंगा, इसमें हमारे 2 है कि एक होता है हमारा दक्ष किसान, इसमें रजिस्टर करके पहले जब रजिस्ट्रेशन करता है उसको वहां से ट्रेनिंग मिले, क्योंकि जब भी आप कोई काम स्टार्ट करें तो कम से कम आपका उसका नो हाउ पता होना चाहिए।

0: उसमें वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। एक तो हो गया कि वीडियोस अपलोडेड है, उसको जो जब वो वीडियो देखता है तो उसमें थोड़ी फिर एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका माशाल्लाह ये अच्छी तरह से जवाब देते कि पढ़े लिखे हैं, तो उसके बाद उनकी रजिस्ट्रेशन किसान साथी पे होती है। एक तो दक्ष किसान में ये ट्रेंड हो गई, तो किसान साथी पे इसकी रजिस्ट्रेशन होती है। ये एप्लीकेशन डायरेक्टली मेरे पास पहुंचती है एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, एज ए DIO, तो मैं ये अपने तरीके से जो हमारे DC साहब देखते हैं
1: चेयरमैन,
0: तो ये वहाँ पे इसकी प्रॉपर एक मीटिंग होती है जो हमने फिजिबिलिटी साइटिस्ट उसको दे दी है, फिर हमारे वर्दी डायरेक्टर साहब के पास जो के चीफ इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर है, तो वहां से उसको जब जो भी उसको वो पास हो जाता है कि दैट दिस इज अ वेरी गुड यूनिट के सबसे फिजिबिलिटी वगैरह एसर्टेन की हुई होती है, जब उसके पास आता है तो वहां से उसको वो वहां से अप्रूव करके इस जो हमारा ये फार्मर है जो इंटेंडेड फार्मर है, इंटेंडेड बेनिफिशियरी है, इंटेंडेड नौजवान है, तो उसको मैसेज खुद ही आती है कि मेरा यूनिट मुझे सैंक्शन हो गया, उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पोर्टल है, वो हमारा सारा काम एक सिस्टम है, साइंटिफिकली इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली ये सिस्टम चलता रहता है। तो मैं उनको यही अर्ज करूंगा, उनके जिनके पास जमीन है, जिनके पास पानी का साधन है, वो ये अडॉप्ट करें।
2: समीन, फिशरीज या माही पालन का शोभा हमारे काफी तादाद में नौजवानों को रोजगार फराहम कर सकता है, क्योंकि पानी के हमारे कुदरती वसाइल वादी को माही पालन के ताल्लुक से एक बेहतरीन जगह बना सकते हैं। हमारा कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां से नदी नाले, दरिया या फिर पानी के कुदरती चश्मे न गुजरते हों। हौसला अफजा बात तो यह है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान भी अब माही पालन के शोबे की तरफ खास तवज्जो देने लगे हैं। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे ने ऐसे ही चंद नौजवानों के साथ बात की तो उन्होंने अपने तासुरात यूं बयान किए।
3: मेरा नाम मोहम्मद इकबाल नायक है, मैं कुलगाम का रहने वाला हूं। मैंने 2019 से मैंने स्टार्ट किया है फॉर्म अपना। डिपार्टमेंट ने मुझे इसमें बहुत सारी स्कीमें है, PMMSY है, HADP है, उनमें मैंने वो स्कीमें, इन स्कीमों में मैंने ये यूनिट्स बनाए हैं, तो आज मेरा इंशाल्लाह टर्नओवर मेरा बहुत अच्छा है। अभी मेरे पास 3-4 लड़के काम कर रहे हैं, लेकिन और सालाना आमदनी कम से कम 30-35 लाख पर ईयर।
4: तो बाकी बेरोजगार नौजवान है जो इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, इस फिश फार्मिंग को, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहते हैं?
3: मैं यही उनको सलाह देना चाहता हूँ कि आप भी आइए, आप भी इधर जो फिश डिपार्टमेंट कुलगाम है वहाँ पे जाइए, वहाँ से आप ये इन स्कीमों के फायदे उठाए।
5: बहुत रोजन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट मज मेव शाहनवाज अहमद कोल, मे कोर्मुत 10+2 सर, बहु बेरोजगार, बहुस प जमींदारी यी कारण बागस वागस कुन सर, पत मे ये फैसलटी आब मे वोन पारो तुकन कह रोजगार पन्न खत कम सर, पत गोस बहु फिशरीज दफ्तर 2017 मदहस मज मे दिख एप्लीकेशन, पत गो मे एप्रो ये ट्राउट फिश फार्म ब्लू रिल्यूशन तहत सर, मे गो ये 2018 मज आई फिशरीज योर, यमो कोर मे ये बॉन्ड सिलेक्ट, यमो दिन आबस नजर, मे फैसलटी बराबर सर, पत कर मे 2018 मज त्रो मे जनाब ये फिश फार्म, शुक्र रबस कुन मे चलो अस रोजगार अत पे मे वन अत पे बच्चे जो खानदार मे बुजर्ग मोज मे बन त मे वज अत पे बन त नख बे मे बच्चे जो पढ़ान बे मे बुजर्ग मोज सब पालन बे मे ये खानदारन ये मे सपोर्ट करान अत सनाब।
4: डिपार्टमेंट तरफ कूत मदद वोत
5: डिपार्टमेंटन कोर जबरदस्त मदद, डिपार्टमेंट से शुक्र गुजार, फिशरीज डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मे बो सारी खुद बेस्ट फिशरीज डिपार्टमेंट, यमो कूत मदद कर् मे सर, मे बह गोस खुश यमो कर् मे तूत मदद, ब्लू रिल्यूशन तहत कर् मे यमो सर मे ब्लू रिल्यूशन तम दिमो सीड ती फीड ती सर, शुक्र रबस कुन मे चलो पत असल पन रोजगार, मे कर् डेवलप, मे बनो पत ब्याख फार्म ती सर, शुक्र रबस कुन मे अत पे पकान जबरदस्त, फिशरीज डिपार्टमेंट शुक्र गुजार।
2: और अब पेश है प्रोग्राम का इदारिया। समीन, हमारी वादी को कुदरत ने बेपनाह आबी वसाइल से मालामाल किया है, इस बात में कोई शक शुबा नहीं है कि हमारी बेएतनाइयों और खुदगर्जियों की वजह से हमारे पानी के अक्सर बेशतर वसाइल अब आलूदा हो चुके हैं, तहम ये बात भी एक मुसल्लमा हकीकत है कि हम अगर लगन और मेहनत से काम करें तो हम एक तो पानी के इन वसाइल को आलूदगी से पाक कर सकते हैं और दूसरा इनसे हमारे नौजवान फिशरीज के शोबे के तहत रोजगार भी हासिल कर सकते हैं। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने माही परवरी के शोबे को फरोग देने के लिए HADP और मरकजी मावनत वाली स्कीमों का एक वसी दायरा शुरू किया है और इस ताल्लुक से अगर हम हुकूमत से यह गिला करें कि वो इस

0: की जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही है तो बेजा होगा। हाँ, इस ताल्लुक से अगर कोई कमी बेशी है तो वो हम में है। हमारे नौजवान हर वक्त सरकारी नौकरियों के पीछे लगे रहते हैं और सरकारी नौकरियों के इंतजार में न जाने कितने नौजवान अपना कीमती वक्त जाया करते हैं। मछली की तलब और खपत को देखते हुए हमारे दीही इलाकों के नौजवान अपने बल्कि पूरे कुंबे के लिए रोजगार का बंदोबस्त कर सकते हैं, मगर इसमें जरूरत इस अम्र की है कि हमारे नौजवान कमर हिम्मत कसें और मेहनत और लगन से ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबजात में रोजगार के मौके तलाश करने की कोशिश करें। सरकार को भी चाहिए कि वो ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबजात में चलाई जा रही फलाही स्कीमों के बारे में जिस कदर हो सके ज्यादा से ज्यादा बेदारी पैदा करें, और इसके लिए जरूरी है कि हमारे मुतल्लिका हुक्काम को अपने दफातर से निकलकर लोगों की दहलीज पर जाकर इन स्कीमों और प्रोग्रामों के ताल्लुक से बेदारी पैदा करनी चाहिए। यही माही परवरी के शोबे को फरोग देने और बेरोजगार नौजवानों की खातिर रोजगार के मौके पैदा करने का एक बेहतरीन वसीला हो सकता है। इसके साथ ही जिलानामा का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। निगरानी आला अशफाक अहमद शाह, तरतीब तहजीब कौशिकी कश्यप, तहरीर शेख तजम्मुल, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग नूरुलैन इशरत, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर।
1: शह ने कहा खुशी है बहरहाल खाकसार, तुमसे जो सौ पिसर हूं तो इस राह पे निसार, पर मैं न दूंगा रुखसते मैदान कारजार, इस अम्र में तुम्हारी पुफी को है इख्तियार, राजी हूं वो तो दाग उन्हें देके जाइए, पाला है जिसने उसकी रजा लेके जाइए, रोकूंगा मैं तुम्हें ये न कीजो कभी ख्याल, साबिर खुदा की राह में है फातिमा का लाल, सदके है नूर ऐन तसद्दुक है जानो माल, तिफलो जवानो पीर का हाफिज है जुलजलाल।
2: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, रात के 8:45 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन नष्ट होगा।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की, और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
4: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
3: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कीं। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ट्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में

0: चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tellylaw.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।

0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
1: अभी

0: भूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
1: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
2: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
5: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
3: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक

0: 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयीय समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ड्स, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। रात के 9 बज चुके हैं।

0: रुपए की सरमायाकारी से पुणे रेलवे स्टेशन की बड़े पैमाने पर तौसी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा 6 प्लेटफार्मों के साथ मजीद 6 नए प्लेटफार्म तामीर किए जाएंगे, जिसके बाद प्लेटफार्मों की कुल तादाद 12 हो जाएगी। इसके अलावा कामकाज की कारकर्दगी और मुसाफिरों की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम की जगह जदीद इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम नस्ब किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर अमल करते हुए भारत ने नुमाया तरक्की की है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के सकाफती विरसे के तहफ्फुज और फरोग के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत ने अपनी तहजीबी विरासत के तहफ्फुज, फरोग और उसका जश्न मनाने के लिए कई तारीखी इकदाम किए हैं, जिनसे लाखों शहरियों में फख्र का जज्बा पैदा हुआ है। अहम वाकयात में सबसे अहम वाकया जनवरी 2024 में पेश आया, जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में अजीमुशान श्री राम मंदिर में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को अंजाम दिया। ये सदियों पुरानी एक ख्वाहिश की तकमील थी। हाल ही में मंदिर का दौरा करने वाले एक अकीदतमंद पंकज जारिया ने आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अपने तजुर्बात बयान किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में महाकाल लोक प्रोजेक्ट का पहला मरहला अक्टूबर 2022 में कौम के नाम वक्फ किया गया। ये अजीम कॉरिडोर शानदार मुजस्मों, दीवारों पर बने फन पारों और तामीरात पर मुश्तमिल है, जो भगवान शिव की जिंदगी और उनसे मंसूब रिवायात की अक्कासी करते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और मस्नूई जहानत पर मबनी निगरानी के निजाम से आरास्ता महाकाल लोक विरासत और जिद्दत का हसीन इम्तिजाज पेश करता है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसका इफ्तिताह दिसंबर 2021 में किया गया था, ने यात्रियों के सफर के तजुर्बे को यकसर बदल कर रख दिया है। ये कॉरिडोर मंदिर को बराह रास्त दरियाए गंगा से जोड़ता है। 5.5 एकड़ पर मुहित इस प्रोजेक्ट ने लोगों की रसाई को बेहतर बनाया है और भारत के सबसे मौजिज रूहानी मराकज में से एक को नई जिंदगी बख्शी है। आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वाराणसी के रहने वाले प्रियांशु सिंह ने कहा कि ये कॉरिडोर यात्रियों की आमदोरफ्त में काफी आसानी फराहम कर रहा है।
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये इनकलाबी इकदामात इस बात की अक्कासी करते हैं कि मुल्क अपनी सकाफती जड़ों के तहफ्फुज के साथ साथ एतमाद के साथ मुस्तकबिल की जानिब गामजन है। सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: दिल्ली पुलिस के खसूसी सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मुबैना हैंडलर शहजाद भट्टी से वाबस्ता 8 रुकनी कसीर रियासती दहशतगर्दी मॉड्यूल के मजीद 5 मुलजमों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन गैंग बेस्ट 2.0 के दौरान मस्कुरा मॉड्यूल के 3 अरकान को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान को दिल्ली और पड़ोसी रियासतों में पुलिस एहलकारों को निशाना बनाने, पाकिस्तान में मौजूद राबताकारों की तशहीर करने और ISI की सरपरस्ती में मुबैना तौर पर कायम तंजीम तहरीक तालिबान हिन्दुस्तान को फरोग देने की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 हथियार, शहजाद भट्टी नेटवर्क से मुतालिक पोस्टर्स और दीगर काबिल एतराज मवाद भी बरामद किए, जिनमें पुलिस एहलकारों को धमकियां देने वाली वीडियोज भी शामिल हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने कल मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों और मगरबी बंगाल के जैली हिमालयाई खत्ते में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल बिहार, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराइकल के इलाकों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन के दौरान तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और बिहार के मजीद कुछ इलाकों, नीज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में जनूब मगरबी मानसून की पेशकदमी के लिए हालात साजगार हैं। महकमे मौसमी

0: जंगल के शेर बन गए थे खौफ से हिरन, एक शोर था कि आज पड़ेगा गजब का रन।
1: मीडियम वेव ज़्यादातर 8.8 मीटर तो FM 73.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी श्रीनगर पर तहत मुखातिब रात सन दहन बजनी वलू मुहर्रम हराम किस मौकस पे बोजो अक फीचर अब्द हयात रावी सजूद सिरानी।

أشهد أن لا

0: तो माध परस्ती उत्तिमन पच फिर करू तुम सितमगार गई ना के मोह
1: पूछने दो यानी सतने मुहर्रम को रुक हुसैनी कर्फ्यूलस पेट आओ बंद
2: ललि ललवान रूद बैरी आओ पुरा अहिले बैतन तुझ बन्यो खाब पुरा बकीलाक सपुत इंतखाब पुरा तश्मलब हुसैन दर इस्तिरा पुरा
3: सवाब पर ना तु बंदी मंज बाग अहले बैत तंदिन लछ बद सितमगार
1: मजलूमियत बड मिसाल
3: सवा पासे बेकसी हिंद आलम ताल पे ताप क्राय तो नूर जिन वहान तुलनार बुसर हिश सेख अल्लामा
4: हुसैनी कफिल
1: तेश दादी अल्लतश करा फुरातिश बेमुरवत व्यत कित मारा अमापुज खत्मुल मुरसलीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंह जूरी तश्न काम
5: लच बजला तम आबस्तनात बंदी साकी।

कुछ तश्न लक्ष मुस्तर उच्च पंजतन हाय हाय ना कई गजा जोगुन धरे लबन हाय हाय।

Et Zulfikar Bu çemiz mücahide Küt zabar celal çuz Afta

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमिया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6वां सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
2: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच

0: implemented.
1: Sure.
0: So on development front, all these major initiatives have made a huge impact, and people want to, like anywhere in the else in the country or the world, want to live a good life,
1: Absolutely.
0: and enjoy the fruits of development. And so they see, that there is no point in supporting, the separatist outfits or the extremist
1: Sure.
0: outfits, and the youth cannot be fooled into joining these people. Second, there has been engagement also
1: Exactly.
0: with
1: I've spoken
0: many
1: to
0: of
1: that.
0: these, even small or not so small outfits or
1: Outfits.
0: organizations. There has been a constant over outreach, dialogue with them. Many of them have been brought to the negotiating table. Agreements have been signed with them, and they have come into the mainstream.
1: Sure. One final question I just wanted to ask you on the amendment or the change in the Criminal Procedure Code and the IPC, the Indian Penal Code, which is a vast subject, I know. But again, the thought process behind that, if you can just highlight.
0: It's
1: BNS.
0: not a change, but the entire architecture of,
1: Law.
0: criminal laws
1: Jurisprudence.
0: has been changed.
1: Yes.
0: The Indian Penal Code, the Criminal Procedure Code, and the Indian Evidence Act, the three
1: Correct.
0: laws which formed the bedrock of criminal justice system, they
1: Correct.
0: have been completely overhauled and new laws have been put in place. This comes from, Prime Minister Modi's relentless drive that we have to rid our regulatory framework of the colonial legacy.
1: True.
0: The earlier, the repeal of archaic laws
1: Yes.
0: and the reform of various laws to make them people friendly, reduce compliances, etc., that is all part of the same concept
1: Yes.
0: or philosophy of changing the
1: True.
0: grammar of governance, right? People friendly.
1: What you have given us as an overview of what has been achieved in the internal security field in India is extraordinary. And I think you've been one of the major parts of that. So congratulations for that. And thank you for
0: Thank you.
1: sparing your time
0: Thank
1: for being here. So that was Mr. Rajiv Gauba, currently a member of the Niti Aayog, but former cabinet secretary and home secretary, who has lived through and implemented and been part of the success that the government has achieved over the past 12 years in internal security aspects of governance.
2: In the special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, you were listening to an interview with Rajiv Gauba, member of Niti Aayog and former cabinet secretary to Government of India, on India's decade of transformation. Interviewer was Nitin Gokhale, senior journalist. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
3: समीन, अभी आप मरकजी सरकार के 12 साल मुकम्मल होने पर यह खास प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। यह आकाशवाणी श्रीनगर है। शब के 11:33 हुए हैं। हमारी आज की नशरियात यहीं पर बर्खास्त होती है। आपसे इजाजत लेने से पहले एक नजर कल हमारे यहां से नशर होने वाले प्रोग्राम पर। रात 9:30 पर प्रोग्राम पेश खिदमत होगा बुजुर्गन हिंदी खतर। कल के हमारे बुजुर्ग मेहमान होंगे सूफी शायर अब्दुल रशीद पठान। साइंस सीरियल पेश होगा शब के 10 बजे। पंजाबी मैगजीन पेश होगा शब 10:30 पर। हमारी नशियात का आगाज सुबह 6:30 पर होगा। सुबुगाही पेश खिदमत होगा 6:35 पर। मॉर्निंग लाइव शो पैम सुबह समाप्त करें सुबह 7:10 पर। मुकामी रोजनामों की सुर्खियां पेश होंगी सुबह 9 बजे। शोभा खबर की पेश के शहर शहर मंजर समाप्त करें सुबह 9:30 पर। सूफी बुजुर्गों की जिंदगी उनकी तालीमात और कारनामों से मुतलिक सिलसिलेवार प्रोग्राम सूफी सदा पेश खिदमत होगा सुबह के 10 बजे। कल के प्रोग्राम में खुर्शीद अहमद जरगर और गुलाम रसूल आखुन के माबेन गुफ्तगू होगी। मौजू है तसव्वुफ़ आज जरगर सबिन गुलिसनोबर। शेख अब्दुल अजीज और साथियों की आवाजों में आप सूफियाना मौसीकी समाप्त करेंगे सुबह 11:30 पर और दिन में 2:30 पर। बजमी निस्वान रास्तों की दोपहर 12:40 पर। सपहर 3 बजे प्रोग्राम पेश होगा फौजी भाइयों के लिए। पहाड़ी प्रोग्राम 4 बजे नष्ट होगा। चलन समाप्त करें सपहर 4:45 पर। गोजरी प्रोग्राम शाम के 5 बजे नष्ट होगा। शाम 6:10 पर देहाती भाई अपना प्रोग्राम सुनेंगे। शहरबीन आप समाप्त करते हैं शाम के 7 बजे। प्रोग्राम वादी की आवाज रात के 8 बजे नष्ट होता है और रात 8:30 पर प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा स्पॉटलाइट। समय यह है कल हमारे यहाँ से नष्ट होने वाले प्रोग्राम। यह आकाशवाणी।

निकट है। शब के 11:34 हुए हैं। अब हमारी आज की नशियात ही पर बर्खास्त होती है। सुबह 6:30 पर कल की नशियात लेकर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर, जय हिंद।

0: दीवाना।
1: एक दीवाना शहर में,
0: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ अकेले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्ही ने बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्हें से आंखें चार होती हैं, है ना?
1: हटो चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगी। रात कली एक ख्वाब में आई का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वा। उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई,

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमिया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की तथा व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। श्री मोदी ने कहा कि भारत सदैव शांति के पक्ष में रहा है और मानवता के मूल्यों को सर्वोच्च मानता है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ भी बैठक की। इस बीच G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इन घोषणाओं में संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता आया है। भारत ने बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल से जुड़ी घोषणा का समर्थन किया है। पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडप का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एनेली हेनाफ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में आज शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
2: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 114 रन पर आउट हो गई। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और शुरुआत हमेशा की तरह कुछ अल्फाज के साथ। मेरी मोहब्बत की हद मत पूछो, मेरी मोहब्बत की हद मत पूछो, मैं अपनी सांसों से भी ज्यादा तुमको प्यार करती हूँ।

नींद आती है तो ख्वाबों का कारवा भी आता है, जाने क्यों हर रात सपनों में तेरा नाम आता है। ढूंढती हैं मेरी आंखें उस चेहरे को हर पल, जो सुबह होते ही सिर्फ यादों में रह जाता है।

जिंदगी भर का है तेरा मेरा साथ, अब कभी छूटे ना ये अपने हाथ। लाख रूठे जमाना, लाख बदले जहां, हर कसम से तेरा दामन नहीं छूटेगा।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है निशिगंधा और मैं हूँ आपके साथ अंजू, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। चली है बात फिजाओं में फिर महकने की, चली है बात फिजाओं में फिर महकने की, जरा सी देर ही सही तुम पास तो आ जाओ।

तेरे माथे की बिंदी चमकती है कुछ इस कदर, तेरे माथे की बिंदी चमकती है कुछ इस कदर, जैसे अंधेरी रात में कोई सितारा आसमां से उतर आया हो।

मेरी आंखों में छुपी मोहब्बत को कभी तो पढ़ लो, मेरी आंखों में छुपी मोहब्बत को कभी तो पढ़ लो। हर बात जुबां से कहना हर बार

0: क्या कहें इस चिलमन की रुसवाई को, क्या कहें इस चिलमन की रुसवाई को कि सामने महबूब है और दीदार की इजाजत नहीं।
1: ये जो चिलमन है

जो सरकने लगा, रुख से पर्दा जरा जो

दोस्तों ये समय हुआ है समाचारों का, 1:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1।

0: भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंस, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। श्री मोदी ने कहा कि भारत सदैव शांति के पक्ष में रहा है और मानवता के मूल्यों को सर्वोच्च मानता है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ मुलाकात की। पश्चिम एशिया की स्थिति और यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाओं के बारे में भी चर्चा की। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ भी बैठक की। G7 शिखर सम्मेलन के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सुरक्षित, समावेशी और उन्होंने कहा कि AI शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन बच्चों को गलत सूचना, डीप फेक और साइबर खतरों से बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय जरूरी हैं। इस बीच G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई हैं। इन घोषणाओं में संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडप का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एनेली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में आज शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 रेलवे स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देशभर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में होगा। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 114 रन पर आउट हो गई। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is the Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi held a bilateral meeting with US President Donald Trump on the sidelines of the G7 summit in Avignon, France. The two leaders reviewed the progress made under the India-US Compact Initiative, including cooperation in defense, trade, energy and people-to-people ties. Both sides reaffirmed their commitment to strengthening the India-US comprehensive global strategic partnership and promoting peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The Prime Minister reiterated his appreciation for President Trump's efforts in ensuring the restoration of peace and stability in West Asia. Mr. Modi also reiterated the importance of ensuring the safety and

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमिया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा

दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं जो एक बार फिर से आपके साथ, और कार्यक्रम है गीत सुहाने। और शुरुआत हमेशा की तरह कुछ अल्फाज के साथ। लफ्ज में कहां समाती है ये मोहब्बत हमारी, लफ्ज में कहां समाती है ये मोहब्बत हमारी, तेरी मेरी कहानी तो सांसों की रवानी है।

एक प्यारा सा आंगन हो और उसमें तेरा बसेरा हो, एक प्यारा सा आंगन हो और उसमें तेरा बसेरा हो, हर शाम तेरी बाहों में हो और तेरे ही नाम से सवेरा हो।

वक्त गुजर रहा है मगर यादें ठहर गई हैं। वक्त गुजर रहा है मगर यादें ठहर गई हैं। अब चले भी आओ कि सांसें आवाज देती हैं तुम्हें।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन

आज घटाओं ने आसमाओं को कुछ इस तरह घेरा है, आज घटाओं ने आसमाओं को कुछ इस तरह से घेरा है। तुम चलो मेरे संग वहां जहां सिर्फ तेरा और मेरा बसेरा है।

मेरी तो हर एक दुआ में बस तुम्हारा ही नाम है, मेरी तो हर एक दुआ में बस तुम्हारा ही नाम है, तुम्हें मिले हर वो खुशी, यही इस दिल का पैगाम है।

क्षमा भी जल उठी है और महफिल भी जगमगाई है। क्षमा भी जल उठी है और महफिल भी जगमगाई है। झूम उठो कि आज ये रात खुशी की रात लाई है।

कभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और 2:10 पर फिर से आपसे मिलूंगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पेरिस पहुंच गए हैं। दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया और कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता तथा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की तथा व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में वीवाटेक शिखर सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी है। गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। महाराष्ट्र की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी गई है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।

0: मुख्यमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए एआई और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास दिए जाने को प्राथमिकता दी जा रही है। एफआईएच प्रो लीग हॉकी मुकाबले में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। इस मैच में मनप्रीत सिंह ने अपना 413वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलकर भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल और डीआर कांगो के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। पुर्तगाल के लिए जोआओ नेवेस ने 6 मिनट में गोल किया, जबकि डीआर कांगो ने योआने विस्सा ने पहले हाफ के अंतिम मिनट में बराबरी का गोल दागा। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप मैच शुरू करने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए हैं। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड की टीम 114 रन पर आउट हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi has reached Paris after successfully concluding his highly significant 2-day visit to Evian, France, where he attended various summit and held bilateral meetings with several world leaders on the sidelines. In a social media post, Mr. Modi described his interactions at the summit as productive and said he held a series of meaningful meetings and exchanges with world leaders. The Prime Minister said that he presented India's positions and efforts in key areas of governance and policy making. He also emphasized the need to work closely with prosperity. The major highlight of the day was his crucial meeting with the US President Donald Trump. Mr. Modi expressed satisfaction that the India-US trade talks are progressing smoothly. The two leaders also reviewed the progress made under the India-US Compact Initiative, including cooperation in defense, trade, energy, and people-to-people ties. Both sides reaffirmed their commitment to strengthening the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and promoting peace, stability, and prosperity in the Indo-Pacific region and beyond. In Paris, Mr. Modi is scheduled to participate in a series of events including the Viva Tech Summit, one of Europe's leading technology and innovation platforms. He will also attend a community event to interact with members of the Indian diaspora. Prime Minister Narendra Modi has called for a safe, inclusive and human-centric approach to artificial intelligence, stressing that the true measure of AI lies not in the power of machines but in how effectively it empowers ordinary people. Addressing the session on ensuring a safe, rapid and efficient rollout of AI during the G7 summit in Evian, France, Mr. Modi said, artificial intelligence has the potential to transform every aspect of human life. However, he underlined that the technology must be guided by values, responsible design and effective governance. The G7 leaders adopted 3 key declarations aimed at promoting balanced, durable and resilient growth, securing critical mineral supply chains and creating a safer digital space for miners, with several partners giving support to the initiatives. During the G7 summit in Evian, France, the leaders issued a statement on balanced and resilient growth, stressing the need for stable energy markets, secure supply chains and reforms in global economic institutions. They emphasized the importance of restoring safe navigation through the Strait of Hormuz, avoiding arbitrary export restrictions, and addressing widening global economic imbalances.

समय हुआ है 2:11 और 2 सेकंड और ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू और चलेंगे इस सफर में बहुत ही खूबसूरत गीतों के साथ। रहिए इस घंटे मेरे साथ और पहला गीत बहुत ही खूबसूरत महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ में।

तो हवा की तरह आती है और जुल्फ बिखेर जाती है, तो हवा की तरह आती है और जुल्फ बिखेर जाती है, सोचता हूँ तुझे रोक लूँ पर तू हाथ कहाँ आती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

न कुछ उन्होंने कहा न कुछ हमने कहा, न कुछ उन्होंने कहा न कुछ हमने कहा, राहों में हुई हमारी मुलाकात कि हमारी आंखें सब कुछ कह गईं।

बरसात में खिड़की पर बैठकर जब हाथ बाहर फैलाती हूँ बरसात में खिड़की पर बैठकर जब हाथ बाहर फैलाती हूँ तो सब भूलकर मैं इन ठंडी बूंदों से बातें करती हूँ।

समय है समाचारों का, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। मुझे अनुमति दीजिए, जल्द ही आपसे मिलूंगी किसी न किसी मेज पर। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि। और अगला कार्यक्रम आपके साथ बढ़ाएंगी वंदना, कार्यक्रम हमराही 3:10 पर। आप सभी को नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पेरिस पहुंच गए हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया और कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो क्रोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की तथा व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री आज पेरिस में

0: युवा टेक शिखर सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद भी करेंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
1: दो प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। थर्ड प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर फोर्थ प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए एआई और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप एल के मुकाबले में इंग्लैंड क्रोएशिया से 3-2 से आगे है। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। वहीं ग्रुप के में पुर्तगाल और डीआर कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मुकाबले में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। इस मैच में मनप्रीत सिंह ने अपना 413वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलकर भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। चीन के गुयांग में चल रहे विश्व मुक्केबाजी कप में भारत के निखिल, दीपक और स्नेह ने अपने अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला टी20 विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has reached Paris after successfully concluding his highly significant 2-day visit to Evian, France, where he attended various sessions of the G7 summit and held bilateral meetings with several world leaders on the sidelines. In a social media post, Mr. Modi described his interactions at the summit as productive and said he held a series of meaningful meetings and exchanges with the world leaders. The Prime Minister said that he presented India's positions and efforts on key areas of governance and policy making. He also emphasized the need to work closely with the Global South for global prosperity. The major highlight of the day was his crucial meeting with US President Donald Trump. Mr. Modi expressed satisfaction that the India-US trade talks are progressing smoothly. The two leaders also reviewed the progress made under the India-US Compact Initiative, including cooperation in defense, trade, energy and people-to-people ties. Both sides reaffirmed their commitment to strengthening the India-US comprehensive global strategic partnership and promoting peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific region and beyond. In Paris, Mr. Modi is scheduled to participate in a series of events, including the Viva Tech Summit, one of Europe's leading technology and innovation platforms. He will also attend a community event to interact with members of the Indian diaspora. Prime Minister Narendra Modi has called for a safe, inclusive and human-centric approach to artificial intelligence, stressing that the true measure of AI lies not in the power of machines but in how effectively it empowers. Addressing the session on ensuring a safe, rapid and efficient rollout of AI during the G7 summit in Evian, France, Mr. Modi said,

हम रही कार्यक्रम में सब साथियों का स्वागत करते हुए गीतों के साथ और गीतों की हम सफर में आपकी दोस्त वंदना चुग नमस्कार।

साथी फिल्म से ये गीत आपने सुना, मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी की कलम से निकला गीत था और सुरों से सजाया नौशाद ने। अगला गीत परदेसी फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं। मजरू सुल्तानपुरी की रचना है और चित्रगुप्त का संकेत।

तुझसे मुलाकात का हर पल खास लगता है, तुझसे मुलाकात का हर पल खास लगता है, जैसे दिन को कोई नया एहसास लगता है।

0: महबूब की मेहंदी, इस फिल्म से भी आपने गीत सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी

0: चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हमारे दोस्त सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और गीतों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चुग।

शागिर्द फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। मचरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत था और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। बादल ने फिर से आसमान में ली है अंगड़ाई, ठंडी हवाओं के संग फुहारों की बारात है आई। मौसम की खुशखबरी ने दिल में जैसे कोई पुरानी दास्तान दोहराई।

दोस्तों, प्रकृति के संरक्षण में अगर आप खड़े हो और तेज हवाएं चल रही हो तो उस छटा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। मेरा गांव मेरा देश फिल्म से अभी आपने एक गीत सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा था और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। खुश नसीब होते हैं जिन्हें अपनों का प्यार मिलता है।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में ये गीत आपने सुना। फिल्म थी टावर हाउस। गीत की रचना की थी असद भोपाली ने और संगीत रवि का था। दोस्तों, पहले के गीत भी कितने गजब के हुआ करते थे। कोई बात भी पूछनी होती थी तो गीत का अंदाज ही अलग होता था और गीत में कहते थे,
1: इजाजत हो तो एक बात कहूँ।

101 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली से हम राही कार्यक्रम, और हम राही कार्यक्रम के अंतर्गत युगल गीतों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चुक। दोस्तों, दोस्ती में कोई भी आपका दोस्त ये बात बर्दाश्त नहीं करता कि आप उसे धोखा दें, क्योंकि बहुत ज्यादा जो विश्वास करने वाला होता है उसे कोई भी बात अपने दोस्त से गवारा नहीं होती। इसलिए जैसे आप बाहर से देखते हैं, दिल से भी और दिल में भी वैसे ही बने रहना चाहिए।

दोस्तों, दोस्ती ही एक ऐसा अनमोल रिश्ता होता है ना, जिसे हम खुद चुनते हैं और केवल साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि सुख दुख साझा करने के लिए, बिना कहे जज्बात समझने के लिए और एक दूसरे की खुशी में खुश होने का खूबसूरत एहसास भी होता है दोस्ती। आपको जरूर पसंद आया होगा, बता देती हूँ, बिन फिरे हम तेरे, इस फिल्म से ये गीत था मोहम्मद रफी और उषा खन्ना का गाया हुआ। असद भोपाली ने गीत को लिखा था और संगीत से संवारा था उषा खन्ना ने। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ अभिमान फिल्म से, लता मंगेशकर और मनहर उदास का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और सचिन देव बर्मन की बनाई हुई धुन है। दोस्तों, इन गीतों के लिए कहना पड़ेगा कि ओल्ड इज गोल्ड। जब ऐसे गीत बजते हैं ना, तो आज भी उस दौर की हमें याद तरोताजा हो जाती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पेरिस पहुंच गए हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया और कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की तथा व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री आज पेरिस में वीवा टैंक शिखर सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी संवाद करेंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली को आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज

0: खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। श्री वैष्णव ने पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही।
1: दो प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। थर्ड प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर फोर्थ प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री।
0: श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की भी घोषणा की। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए एआई और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने एजेंसियों को राज्यों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया ताकि प्रत्येक कॉल को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जा सके। फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप एल के मुकाबले में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया है। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। वहीं ग्रुप के में पुर्तगाल और डीआर कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मुकाबले में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। इस मैच में मनप्रीत सिंह ने अपना 413वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलकर भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड की टीम 114 रन पर आउट हो गई। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला 2-0 से अजय बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi has reached Paris after successfully concluding his highly significant two-day visit to Evian, France, where he attended various sessions of the G7 summit and held bilateral meetings with several world leaders on the sidelines. In a social media post, Mr. Modi described his interactions at the summit as productive and said he held a series of meaningful meetings and exchanges with the world leaders. The Prime Minister said that he presented India's positions and efforts on key areas of governance and policy making. He also emphasized the need to work closely with the Global South for global prosperity. The major highlight of the day was his crucial meeting with US President Donald Trump. Mr. Modi expressed satisfaction that the India-US trade talks are progressing smoothly. The two leaders also viewed the progress made under the India-US Compact Initiative, including cooperation in defense, trade, energy, and people-to-people ties. Both sides reaffirmed their commitment to strengthening the India-US comprehensive global strategic partnership and promoting peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific region and beyond. In Paris, Mr. Modi is scheduled to participate in a series of events including the Viva Tech Summit, one of Europe's leading technology and innovation platforms. He will also attend a community event to interact with members of the Indian diaspora. Prime Minister Narendra Modi has called for a safe, inclusive and human-centric approach to artificial intelligence, stressing that the true measure of AI lies not in the power of machines, but in how effectively it empowers ordinary people. Addressing the session on ensuring a safe, rapid and efficient rollout of AI during the G7 summit in Evian, France, Mr. Modi said, artificial intelligence has the potential to transform every aspect of human life. However, he underlined that the technology must be guided by values, responsible design, and effective governance.

अरुणिमा कार्यक्रम में दोस्तों के साथ गीतों का आनंद लेते हुए और आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आपकी दोस्त वंदना चुग सुप्रभात।

लाजवंती फिल्म से अभी आपने गीत सुना, मजरू सुल्तानपुर की रचना थी और सचिन देव बर्मन का संगीत। दोस्तों, अगले गीत को सुनकर आपको एहसास होगा कि आप किसी के लिए कितने अनमोल हैं।

दरअसल जिंदगी में खट्टी मीठी यादें तो सब रिश्तों में चलती रहती हैं, लेकिन अगर रिश्ता बरकरार रहता है तो फिर सही है। मेरे सनम फिल्म से अभी आपने गीत सुना, मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत था मचो सुल्तानपुरी का, और संगीत ओपी नैयर का। दोस्तों, हमारी जिंदगी में खुशियां आए अच्छा लगता है, तब लगता है कि किसी की दी हुई दुआओं का असर ही है। इसलिए हम दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें और उन्हें दिल से दुआएं दें।

आई मिलन की बेला। इस फिल्म से ये गीत था लता मंगेशकर का गाया हुआ, हसरत जयपुरी की रचना थी और संगीत शंकर जयकिशन का। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ, लेकिन दोस्तों एक बात कहनी पड़ेगी कि अगर आपको जीत किसी भी फील्ड में मिल जाए या आपको चाहिए तो पहले खिलाड़ी बनना पड़ेगा, फिर मुकद्दर आजमा कर देख लेना।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत था दूर की आवाज फिल्म से। शकील बदायूं के बोल थे और रवि का संगीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंत

हजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधान तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ गीत आपने सुना छोटी सी मुलाकात फिल्म से। गीत हसरत जयपुरी का था और संगीत शंकर जयकिशन का। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं नीला आकाश फिल्म से, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। राजा मेहती अली खान की रचना है और धुन बनाई है मदन मोहन ने।

दोस्तों, आपके कुछ रिश्ते या कुछ दोस्त बहुत खास होते हैं और उनके ना होने पर आपको उनकी कमी खलती है और होने पर पूरी दुनिया का एहसास होता है ना। आपके साथ भी ऐसा

इज्जत फिल्म से गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर लुधियानवी ने अपनी कलम से शब्दों में पिरोया था और संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। नीलकमल इस फिल्म से अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। साहिर लुधियानवी की शब्द रचना है और रवि का संगीत।

दोस्तों अरुणिमा कार्यक्रम के अंतर्गत गीत आप सुन रहे हैं अपने दोस्त वंदना चुग के साथ। अगला गीत मल्हार फिल्म से आपको सुनवा रही हूँ, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। इंदिवर ने गीत को लिखा है और रोशन का संगीत।